एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये अलबेली प्यार की राहें। कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर। कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर। बेड़ियां पैरों में हो तो कोई भी तोड़ दे, बंधन दिलो दिमाग के तोड़ना इतना आसान नहीं होता। 5:42 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

5:50 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। वंदे मातरम।

1948 के वैशाख मास की 15वीं तिथि के तदानुसार 5 मई सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 52 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। आइए आपको आगे आने वाले प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 6:10 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण मुक्ता के साथ।

6:44 का समय रहता है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का। 6:55 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। ठीक 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 7:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात।

7:30 का समय रहेगा, आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम समाचार प्रभात का, और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुच्चेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही।
1: 5

0: प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala over victory in assembly elections. Addressing the party workers at the BJP headquarters in Delhi yesterday, Mr. Modi said the day heralds a new dawn for the nation.
0: Jai Parajay, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
2: The Prime Minister said that the BJP-NDA governments are in power in more than 20 states of the country. History has been created on 2 fronts in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal for the first time, while debutante Tamilaga Vithri Karagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, in other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected their sitting governments, whereas Kerala has voted for a new dispensation. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than a 2/3 majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule, while the TMC trailed far behind, managing to win 80 leading in 1 seat in the first election after special intensive revision of electoral roll. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Congress and Aam Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each. CPIM clinched 1 seat. Chief Minister Mamata Banerjee lost in the prestigious Bhavanipur seat to BJP Suvendu Adhikari by more than 15,000 votes. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vithri Karagam, TVK, has created history emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. TVK chief C. Joseph Vijay won both Perambur and Tiruchi East seats. In the 234-member assembly, the ruling DMK secured 59 seats, while its main rival, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, won 47 seats. Chief Minister M.K. Stalin lost to TVK candidate V.S. Babu at Kolathur in Chennai. In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 100.

निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जिसने पूरे विश्वास और प्रेम के साथ हनुमान जी की विनय की, ऐसे भक्त के सभी शुभ कार्य श्री हनुमान ने सफल कर दिए। मंगलवार के दिन अर्पण का भाव और भक्ति मन में लिए मुक्ता है आपके साथ। आइए प्रभात की इस बेला में प्रथम नमन श्री हनुमान को।

राम सो बड़ो है कौन, मौसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मौसो कौन खोटो। संतों ने हमेशा भक्त को समर्पण और दैन्य भाव अपनाने की प्रेरणा दी है। भक्त कवि कहते हैं कि जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं है। प्रभु जैसा चलाए, एक भक्त समर्पण भाव से वैसा ही चलता है।

परिस्थितियां और अवस्थाएं ये बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो मूल तत्व है वो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। और एक दिन इसी आत्मा ने परमात्मा में विलीन हो जाना है। कबीरदास जी लिखते हैं, पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहां न जाए। इस संसार की नश्वरता को समझते हुए जिसने जीवन जी लिया वही इस सत्य परम पिता को जान पाया है।

अर्पण में शांति है, अर्पण से जीवन में आनंद है। अगर पाना चाहते हैं तो करते रहिए अर्पण। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मुक्ता है आपके साथ। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ऐ मन मेरे, भक्ति से ही जीवन में रस आएगा, अगर नहीं है भक्ति तो फिर नीरस ही रह जाएगा। जोड़े जो भगवान भगत को, ऐसी कड़ी ये भक्ति है। शांत स्वरूपा, आनंद रूपा, सुखद बड़ी ये भक्ति है। अगर मगर क्यों किंतु से तो भक्ति न कर पाएगा। भक्ति सफल होगी तेरी जो पल पल शुक्र मनाएगा। बिना समर्पण के भक्ति में और न चलती युक्ति है। भक्ति कर, भक्ति के लिए तू

ये वो सिमरन है जो मन को शांति देता है, ये वो प्रेम है जो दिव्यता की तरफ ले जाता है। प्रेम मानवीय आकर्षण मात्र नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा है जो सूफी परंपरा में ईश्वर के मिलन तक ले जाती है।

प्रेम में कुछ पाया नहीं जाता, बल्कि खुद को मिटाकर एकाकार कर लिया जाता है। एक भक्त जब वलय अर्थात स्वयं के लोभ की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो अपना अहंकार मिटाकर केवल प्रभु के अस्तित्व में एकाकार हो जाता है।

भक्ति हम सब के जीवन का हिस्सा बनी रहे, मानवीय गुणों से हम सब भरपूर होते रहें, इसी कामना के साथ फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। अब समय हो चला है श्री रामचरितमानस के पाठ का। 6:44 और ठीक 39 सेकंड हुए हैं। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

अभी आप श्री रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे। 6:54 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचण्डं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपादलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि भाजपादलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलम राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन ऊनशतम् आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रिय प्रजातांत्रिक गठबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000+ मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन षडुत्तर 200, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चन्द्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहास विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपादलस्य वरिष्ठनेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिमबंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलम् राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20+ राज्येष् भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति, तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मल कुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन

अनुमोदितम् आसीत्। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालूकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गए। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुद्दुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुद्दुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुद्दुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने

कभी कभी धीरे चलना भी प्रगति होती है। जरूरी बस यही है कि हम रुके नहीं और चलते रहें। जी हाँ, गोल्ड सुप्रभात है ये मंगल की बुकता के साथ। गुड मॉर्निंग, 7:11 और ठीक 12 सेकंड पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हैं आप। और अब कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं, उठ जाना है, जाग के वापस नहीं सोना है।

मुझे मान लिया मौसम इतना सुहावना है, बादल हैं, धूप नहीं निकली है और अगर इस वक्त पंखे के नीचे भी आप सो रहे हैं तो आपको बहुत मस्त नींद आ रही होगी। लेकिन लेकिन मौसम ये भी कह रहा है, सूर्य ये भी कह रहा है कि मैं आ गया हूँ। प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप है ये जो प्रभात की बेला है, इसे कम से कम अपनी आंखों से दूर ना करें। उठिए, बाहर जाइए और देखिए ये ताजी हवा कितनी सेहतमंद कर देगी आपको। आज के तापमान की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सूर्योदय हो चुका है सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:58 का। मौसम अच्छा है, हवा बेहतर है, जीवन को निश्चिंत करना है और मन को शांत करना है तो इस वक्त उठिए और योग कीजिए।

हम खुद को आपको भूलने ही नहीं देंगे। जी हाँ, आप जब भी रेडियो ट्यून इन करेंगे तो FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर पहुंच ही जाएंगे। खूबसूरत बातें, बेहद दिलकश गाने आपके लिए 7:21 और ठीक 17 सेकंड पर। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए गोल्ड सुप्रभात।

जी हाँ जनाब, न खफा होना है न एक दूसरे से जुदा होना है। मौसम के साथ साथ जो खूबसूरती है वो अपने दिल में भी लेकर आनी है। आप जानते हैं, सुबह का वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है मुलाकात का। जी हाँ, मुलाकात खुद से। आप जानते हैं, अगर आप मॉर्निंग में उठकर 5-10 मिनट मेडिटेट करते हैं और कुछ नहीं तो 2-5 मिनट ही गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं, तो आप मानसिक शांति पा सकते हैं। मेंटल पीस के लिए, तनाव को कम करने के लिए मेडिटेट करना, गहरी सांस को लेना और छोड़ना, खास तौर पर सुबह के वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप इसे अपना रूटीन बना लेंगे तो आपके मन में तो शांति और सुकून आएगा ही, आपके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी। और जब ये रौनक आ जाएगी ना, तो उम्र चाहे कोई भी हो जनाब, आपका चेहरा खिला ही रहेगा।

आप बाहर से ही नहीं भीतर से भी खूबसूरत बने रहें। इसी कामना के साथ फिलहाल गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम करते हैं यहीं पर समाप्त। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: दोस्तों, लगातार आगे बढ़ती पल पल रंग बदलती जिंदगी की सुहानी सुबह को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक आपके लिए FM गोल्ड पर। मनोरंजन और जानकारियों भरे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, इस मुलाकात में आप सुनेंगे देश और दुनिया के कुछ समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, बात होगी मौसम के मिजाज की और इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का भी जिक्र होगा है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से। और फिर याद करेंगे हम कुछ ऐसी हस्तियों को है जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। आज आपके हम सफर हैं हम, यानी मैं मुनीश शर्मा और मेरी सहयोगी नीना अरकल। नीना, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मुनीश। यस मुनीश, मॉर्निंग इज इंडीड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर, अ फ्रेश पेज टू राइट एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लोर। एम्ब्रेस योर मॉर्निंग विद पर्पस एंड पॉजिटिविटी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 5th of May। सो लेट्स बिगिन विद हेडलाइंस मनीष।
0: जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जबकि पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है।
1: In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. On the other hand, the BJP, which had no representation in the assembly, has secured 3 seats this time. BJP State President Rajiv Chandrasekhar secured a stunning victory from Nemom in Thiruvananthapuram. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Karagam, TVK, has created history emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election.

0: at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m.
1: और दोस्तों अब रुख करते हैं हम महानगरों की खबरों की ओर। पहले बात दिल्ली की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पश्चिमी दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से लगभग 3 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का पहले भी एक आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले आईपीएल मैच के चलते राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। इन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और स्टेडियम के आसपास सिर्फ अधिकृत लेबल वाले वाहनों को पार्किंग मिलेगी, जिसमें वाहन संख्या और चालक का मोबाइल नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
0: एंड मनीष फ्रॉम दिल्ली, लेट्स मूव टू न्यूज फ्रॉम चेन्नई। तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशंस कमेटी ओपन्ड एप्लीकेशंस फॉर इंजीनियरिंग एडमिशंस काउंसलिंग। Class 12 students can apply for counselling till 2nd June. According to the admissions scheduled, the engineering rank list will be released on 29th June. Online engineering counselling is likely to be conducted in July. TNEA said that the counselling dates will be updated after getting approval from All India Council for Technical Education. Candidates will be assigned a random number on 5th June. Certificate verification will be done from 8th to 20th June. State Board Class 12 exam results are scheduled to be released on 8th May, while the CBSE results are likely in the third week of May.
1: और रुख करते हैं मुंबई का। नव नियुक्त जापानी वाणिज्य दूताधिकारी सातो हितोमी ने सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। हितोमी ने कहा कि 2027 में भारत जापान राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने मेट्रो और हाई स्पीड रेल समेत बुनियादी ढांचे में सहयोग पर भी जोर दिया है और शिक्षा, कौशल और संस्कृति के क्षेत्र में संबंधों को विस्तार देने पर चर्चा की है। राज्यपाल ने शैक्षणिक सहयोग और भाषा विनिमय पहलों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि तीव्र तकनीकी प्रगति शासन व्यवस्था को बदल रही है। उन्होंने एआई और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन को कायम रखने की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बदलती दुनिया में डिजिटल शासन विषय पर आयोजित टेकवारी 2.0 कार्यक्रम में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि भविष्य की प्रणालियों में मनुष्य और मशीन का एकीकरण बढ़ जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि प्रौद्योगिकी जन केंद्रित बनी रहे।
0: Moving on to Bengaluru now, the Karnataka Chitrakala Parishad in Bengaluru will host the second edition of Namma Art Bengaluru from May 6th to 10th. The National Art Fair, envisioned as a platform for contemporary and traditional works, will transform this premier fine art campus into a hub for artists and enthusiasts. The chairperson and MD of Kirloskar Systems, Gitanjali Vikram Kirloskar, chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, K.G. Raghavan, art historian Ashrafi S. Bhagat and art collector Rahul Baswani will inaugurate Namma Art Bengaluru program on May 6th evening. Over 150 artists from across India will exhibit their works in dedicated booths spread across the campus. A centerpiece of the fair is a specially curated exhibition by art historian Lena Vincent titled Mapping Periphery and Center, a Pan-India Dialogue. She has curated the works of over 70 senior master artists. The theme explores the complex relationships between geographical and cultural centers and peripheries through personal mapping, memory and landscape. News from Hyderabad.

0: 35 paddy procurement centres are fully operational across the state. Heavy rains and strong winds have damaged paddy stocks in several districts, including Nalgonda, Mehboobnagar and Khammam. The minister directed officials to protect farmers' produce by immediately covering stocks with tarpaulins. Wet paddy will be shifted to parboiled rice mills to prevent total loss. The government has arranged intermediate storage capacity of 16 lakh metric tons as a backup.
1: दोस्तों, ये थी महानगर की खबरें और हम चाहते हैं कि जब आप बाहर कदम रखें, आप यात्रा कर रहे हो, तो मौसम के मिजाज की रहे आपको जानकारी। तो अब बात कर लेते हैं महानगरों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। यहां राजधानी दिल्ली में आज बारिश के साथ आंधी का पूर्वानुमान है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जबकि मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जा सकता है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश या गरज के साथ कुछ तूफान की भी संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रह सकता है 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
0: टाइम फॉर वेदर न्यूज फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्री। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड विद थंडरस्टॉर्म विद रेन। The minimum temperature is expected to be 23 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover between minimum of 26 degrees and a maximum of 41 degrees Celsius.
1: आज 5 मई है दोस्तों, तो अब चलते हैं जरा इतिहास के पन्नों में और जानते हैं कि क्या है वो खास बातें जो इस तारीख को बना देती हैं कुछ और खास।
0: In 1789, the Estates General convened at Versailles, which marked the first such meeting in 175 years and served as a primary spark for the French Revolution. In 1809, Mary Keyes became the first woman to receive a U.S. patent for a straw and silk weaving technique. 1821 is Napoleon Bonaparte died at Longwood on the Atlantic island of St. Helena, where he had been exiled following his defeat at the Battle of Waterloo.
1: और दोस्तों, सन 1835 में यही थी वो तारीख, यानी 5 मई, जब महाद्वीपीय यूरोप में पहली रेलवे लाइन बेल्जियम में ब्रसल्स और मैटलेन के बीच शुरू की गई। जबकि 1930 में इसी तारीख को ब्रिटिश पायलट एमी जॉनसन ने लंदन के क्राइडन से उड़ान भरी और इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक अकेले उड़ान भरने वाली बन गई वो पहली महिला।
0: In 1945, the Prague Uprising began as the Czech resistance made a final attempt to liberate the city of Prague from German occupation during World War II.
1: 1955 में 5 मई की तारीख को संघीय गणराज्य जर्मनी ने पूर्ण संप्रभुता प्राप्त की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों का कब्जा आधिकारिक रूप से तब समाप्त हो गया।
0: In 1961, Alan Shepard performed the first American human space flight as he piloted the Freedom 7 capsule during a 15-minute suborbital mission.
1: और 2010 में आप या ब्रेन मैपिंग परीक्षण करना असंवैधानिक।
0: In 2017, ISRO successfully launched the South Asia satellite GSAT-9 using the GSLV-FO-9 rocket to provide communication services to SAARC member nations.
1: और दोस्तों, आइए अब याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। तो शुरुआत किन से कर रहे हैं?
0: We are beginning with Karl Marx. Today is his birthday. He He's a revolutionary thinker. He was a German philosopher, social and political theorist, economist, historian, journalist, and revolutionary socialist. He developed the theory of historical materialism, analyzing class struggle under capitalism and predicting the system's

0: और दोस्तों आज जयंती है बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार की। वो एक प्रतिभावान छात्रा थी। प्रीतिलता वादेदार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के दल की सदस्यता ली और फिर 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता वादेदार ने ही सूर्य सेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था।
1: Christopher Brown is an American singer, songwriter and actor. Born in Virginia, he was involved in his church choir and several local talent shows from a young age. Having signed with Jive Records in 2004, Brown released his self-titled debut studio album following year, with his first single, Run It, peaking atop the

और दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार नौशाद को, नौशाद अली, हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने सिर्फ 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता दरअसल संख्या बल से कहीं आगे होती है। नौशाद के संगीत का यह जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन और संजोग जैसी कई फिल्मों को न केवल उनके संगीत ने हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। फिल्म बैजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फाल्के अवार्ड, लता अलंकरण तथा 1992 में पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। आइए सुनते हैं कुछ उनके ऐसे ही महान गीतों की एक छोटी सी झलक।

0: blogging kijiye hamari website newsonair.gov.in.
1: Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar. Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल, और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
2: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: डीएनए 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने एक एक सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम

0: को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्धविराम वार्ता ठप्प पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI, मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर कयादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजे अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरान पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि 1 सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआईएम 1 सीट पर कामयाब हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 45.84% वोटों के साथ 206 सीटें जीती हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का वोट तकरीबन 8% कम होकर 40.8% रह गया, जबकि उसने 2021 के इंतखाबात में 48.5% वोट हासिल किए थे। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े रहनुमाओं को हार का सामना करना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने न सिर्फ शिमाली बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की, बल्कि तकरीबन पूरे जनूबी बंगाल में भी अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। ममता बनर्जी को अपने भवानीपुर हलके में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अधिकारी ने नंदीग्राम सीट भी जीती है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवीके ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसफ विजय पिरम्बूर और तिरुची ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि टीवी के पार्टी के सरबराह जोसफ विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए वजीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने का होगा, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
0: आसाम में हुक्मरान बीजेपी के जेर कयादत

0: एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और राइजोर दल ने 2-2 सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। इधर हुक्मरा एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। बीजेपी को इस मरतबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हल्के से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इक्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आजाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इकतदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
1: पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है।
1: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: इधर बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तहत तशक्कुर का इजहार किया। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में पार्टी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। जनाब अमित शाह ने मगरबी बंगाल में पार्टी की जीत को डर, खौफ, खुशनूदी और दरअंदाजों को पनाह देने वालों के खिलाफ अवाम के जवाब से ताबीर किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार पार्टी में एतमाद का इजहार करने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तिजारती अंजुमनों ने बीजेपी की शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया है। कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार रियासत की मईशत में नई जान डालने के लिए सनतकारी बुनियादी ढांचे के फरोग और सरमायाकारों के लिए साजगार पॉलिसियों के एक नए दौर का आगाज करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में यह इस तरह का पहला हमला है, जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुकाम ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में तीन भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबूजबी में भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि वो मुतासरा अफराद की खैर आफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि कल वहां आने वाले चार ड्रोन और तीन क्रूज मिसाइलों का पता लगाया गया और उन्हें बीच में ही मार गिराया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: कल के हमलों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद से कायम निस्बतन पुरसकून माहौल का सिलसिला टूट गया है। 8 अप्रैल को ये जंगबंदी नाफिज हुई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुरमुज से फंसे हुए कमर्शियल बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने यह वार्निंग दी है कि इस आबी गुजरगाह में दाखिल होने वाले गैर मुल्की फौजी फोर्सेज पर हमला किया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर ने जमैका के अपने हम मनसब कामिना जॉनसन और उनकी काबीना के दीगर वजरा के साथ एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने तालीम, सेहत, जरात, डिजिटल सियाहत, खेल, तफरी, बुनियादी ढांचे, सलाहियत साजी और कसीर जहती उमूर के सिलसिले में ताल्लुकात को आगे ले जाने के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सनती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासत में पीने के पानी की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हर जिले के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी ताकि पानी की फराहमी के निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। कल सेक्रेटरिएट में एक जायजा मीटिंग के दौरान जनाब नायडू ने गाड़ियों के इंदराज के अमल को आसान बनाने के लिए इकदामात को भी मंजूरी दी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मुल्क के कई हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम के साथ साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। इधर शिमाली रियासतों के बाद हिस्सों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई भी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से दिए गए 229 रन के निशाने को मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज से मुतल्लिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस सिलसिले में शहसुर्खी है, बंगाल में बीजेपी की तारीखी जीत, आसाम में भी वापसी। अखबार प्रताप की सुर्खी है, बंगाल, तमिलनाडु और केरला में इकतदार के किले ढह गए। अखबारात ने नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में वजीर आजम के कारकुनों से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बंगाल की जीत के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल की हुक्मरानी। अखबारात ने भारत और कनाडा के दरमियान एफटीए मुजाकरात का दूसरा दौर शुरू होने की खबर को भी अहमियत दी है। तकनीकी दौर में मुस्तकबिल के लिए तहकीक और सरप्राइज इंतहाई जरूरी, अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफे पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस की जेर क्यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजह अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमलों में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ

विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि विश्वास ही ऐसा है जिससे उम्मीद का दिया जलता रहता है। जनाब, आप जानते हैं हम सब में एक जादू है। जी हाँ, सेल्फ मोटिवेशन का जादू, हमारे भीतर की ये शक्ति जिससे हम किसी भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। और इस बात का तो इतिहास गवाह है कि जिसने खुद पर विश्वास किया उसने कला फतेह कर लिया। जी हाँ, आप जानते हैं एक रिसर्च कहती है कि जो लोग आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं वो औरों की अपेक्षा अपने लक्ष्य को पाने में 32% अधिक सफल होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग अपने दिमाग के मालिक हैं, माने जिनके ऊपर उनका खुद का कंट्रोल है, अपना नियंत्रण है, वो तनावपूर्ण परिस्थिति में भी बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड लोग जीवन की चुनौतियों को भी अवसर की तरह देखते हैं और उनके पास सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एक आधार बनना शुरू हो जाता है। तो जनाब, फिर से करा दूं आपको याद, रोजाना खुद से कहिए कि बेहद खास हैं आप।

जी हाँ, अपने मन की आंखें खोल के आसपास देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी खुशियां हैं और बहुत सारी सुंदरता फैली है इस दुनिया में। और इन चीजों को देखने में आपकी मदद लगातार हम करते रहेंगे म्यूजिकल दिल लगी के माध्यम से। फिलहाल मंगल की मुक्ता लेगी आपसे इजाजत। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के बाद इंदु होंगी आपके साथ बेहतर संगीत खूबसूरत गीत के साथ। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वामदल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

0: की। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार किया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने संघर्ष विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबूधाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि कल देश की ओर आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
2: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
1: आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Neena Rakel. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, debutant Tamilaga Vetri Karagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Keralam. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than 2/3 majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule. Out of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Karagam TVK, has created history, emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 126-member assembly. In Keralam, the Congress-led UDF has

प्यारे तो सब आगे बढ़ ही गए हैं, लेकिन हमारी प्यारी सी घड़ी भी बढ़ गई है आगे। 9:15 और ठीक 36 सेकंड हो गए हैं। यह है म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। कभी कभी ना हमें बस तुरंत इंस्टेंट कुछ चीजें पता चलती हैं, जैसे कि अभी अभी मुझे पता चला कि जब हम किसी भी चीज से बोर नहीं होते तो असल में वही होता है जिसे हम आई लव यू कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्यार दोस्ती हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है, या फिर वो आन बान शान भी हो सकती है, नहीं तो फिर ये वाला गाना भी तो हो सकता है ना जिसे हम आई लव यू बोलते हैं। तो कुल जमा बात यही रही कि जहां हम बोर नहीं होते वहीं पे आई लव यू हो जाता है।

ये इनविटेशन आपके लिए भी है, आ जाइए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे और बातें कीजिए। वैसे बातें करना एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है जिसे कभी कभी हम प्यार का नाम दे देते हैं। वैसे ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन कहानी आगे बढ़े इसके लिए बात तो करनी पड़ेगी ना। और बात करना कई बार रिस्पेक्ट हो सकती है, कई बार काम की बात होती है, कई बार बात हमें अपनापन भी महसूस कराती है और कई बार हमारी मजबूरी भी होती है किसी से बात करना। तो प्यार का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं, सम्मान और एक दूसरे की परवाह करने से है। और केयर है तो प्यार है, आप क्या कहते हैं?

इस दिल को एक छोटा सा शक और हो गया है कि कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं, क्योंकि मौसम हमें बार बार सरप्राइज कर रहा है। कई लोगों को एलर्जी भी हो रही है, कभी सूरज चमकता है तो कभी बादल गरजते हैं। ऐसे में कई सारे लोगों को ही फीवर हो रहा है, मतलब गला खराब है, खांसी है, आंखों में पानी आता है या बार बार गले में खराश होती है। तो फिर आप चुपचाप मत बैठिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए और पूछिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। तो आज है वो दिन, और जो हमें अस्थमा यानी कि दमा के प्रति जागरूकता फैलाना है, इसका सही इलाज करना है, इनहेलर के उपयोग के बारे में शिक्षित करना और अस्थमा से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। और इस साल की हमारी थीम है सभी के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स तक पहुंच, अभी भी एक जरूरी आवश्यकता बनी हुई है। ये सारे के सारे दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हमें एक लर्निंग होती है हमारे लिए, ताकि हम जान सकें और आगे हमें क्या प्लान बनाना है वो समझ सकें। और ये जो बार बार आप खांसी करते हैं, इसके लिए चले जाइए अपने डॉक्टर के पास।

ठंडी हवा, काली घटा, गानों में जितनी अच्छी लगती है ना, कई लोगों को अपनी जिंदगी में भी उतनी अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसे लगता है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि कुछ फिल्में जब 50 साल की हो जाएं, यानी कि उनकी रिलीज डेट ये हो कि भाई 50 साल पहले रिलीज हुई थी या फिर 60 साल पहले रिलीज हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक सेलिब्रेशन बनता है। तो इसी सेलिब्रेशन की लिस्ट में एक नाम है तीसरी मंजिल का। आशा भोसले ने आरडी बर्मन के साथ मिलकर गानों का एक पूरा संसार रचा। आशा जी और पंचम का आमना सामना पहली बार तब हुआ जब आरडी अपने पिता एसडी बर्मन के सहायक थे। आशा भोसले तब 23 साल की थीं और पंचम 17 साल के। तब आरडी बर्मन ने आशा जी का, पता है, ऑटोग्राफ लिया था। और पहली फिल्म थी 1966 की तीसरी मंजिल, जब दोनों साथ आए, और वो गाना था हे कांचा मलाई सुनको तारा। इसी से प्रेरित था ये वाला गाना आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज में।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: दिए कि शर्मा न जाए।
1: 9:39 हो गया है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है म्यूजिकल दिल लगी। ग्रेट ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी, महामानव समुद्र भारत के लिए, कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। विविधता में एकता, जहां हर तरह के लोग रहते हैं, समावेशी कल्चर है, सबको अपनाया। एक कविता है उनकी, भारत तीर्थ, वहां से ये विचार आया। भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महामानव समुद्र था, है। याद है ना कहानी कावली वाला? जी हाँ, तो ये है कहानी एक ऐसे देश की, जहाँ पे सब, हम सब एक साथ मिलके चलते हैं और अपने भारत से प्यार करते हैं।

और अब इस ढूंढने से मुझे याद आया कि जब हम मेट्रो में होते हैं तो अपने लिए सीट ढूंढते हैं। सीट एक होती है और दावेदार वहां पे बैठने के लिए कम से कम 10 तो होते ही हैं। जो पहले जाएगा उसको पहले मिलेगी सीट, ये तो आप जानते ही हैं। वैसे हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। जैसे कि मुझे याद आया कि मैंने एक आंटी को देखा कि उनके हाथ में एक स्टूल जैसा था और जब उनको सीट नहीं मिली तो उन्होंने अपना स्टूल बिछाया और बड़े आराम से स्टूल के ऊपर बैठी और उनकी जो यात्रा है कितनी शानदार रही होगी आई एम श्योर। और उसके बाद उन्होंने फिर से अपना स्टूल मोड़ा लिया और चल दी। तो मतलब ये कि हम अपनी कुर्सी साथ ले लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि कोई तकलीफ हो, लेकिन हर जगह का जो कल्चर होता है वो हमें जरूर याद दिलाता है कोई ना कोई ऐसी बात जो दिन भर याद रहती है।

0: अब सब कुछ शबा खैर हो तो फिर आपको जान लेना चाहिए सुगम्य भारत अभियान के बारे में। एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों के लिए भौतिक, पर्यावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को आसान बनाना। यह अभियान सुगम्य भारत, सशक्त भारत के दृष्टिकोण के साथ एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम करता है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को

मन की कहानी बड़ी अलग होती है, इसके बारे में तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज, जैसा कि आप जानते हैं, 5 मई है। नौशाद अली हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपनी सास का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में संगीत दिया और उनके इस संगीत से सजी हुए जितने भी गाने हैं, एक से बढ़कर एक, वो सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा कलाकार बेमिसाल में आज 1:10 पे। तो फिर सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रही बात हमारी यानी कि म्यूजिकल दिल्ली गी की, जो इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे, हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा। लिखो तो लफ्ज हो तुम, कई बार ऐसा भी ख्याल आता है, सोचो तो ख्याल हो, मांगो तो दुआ हो, अब सच सच हम बताएं, ये FM गोल्ड है और कुछ नहीं। क्योंकि जो यहाँ पे हम गाने प्ले करते हैं, हमारी जो प्लेलिस्ट है, कई बार आपकी प्लेलिस्ट से मैच कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी जरूर कि आप सरप्राइज तो जरूर होते होंगे कि अरे ये वाला गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कहा है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने संघर्ष विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कल देश की ओर आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arikel. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state, for the first time, debutant Tamilaga Vetri Karagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the

0: अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल वे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले महीने वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जमैका के समकक्ष कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबूधाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की खबरों के बाद आई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने जलडमरू मध्य में 7 ईरानी नौकाओं पर हमला किया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि जहाजों को नष्ट करने के अभियान में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम कहे जाने वाले अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य फंसे हुए जहाजों की सहायता करना और रणनीतिक जलमार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कराना है। सेंटकॉम के प्रमुख ब्रैड कपूर ने कहा कि 87 देशों के जहाज मौजूदा तनाव में निर्दोष दर्शक बनकर फंसे हुए हैं। इस बीच ईरान का कहना है कि जल डमरू मध्य बंद है और उसने अमेरिका के विध्वंसक जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: अमेरिका ने पिछले महीने रोके गए ईरान के मालवाहक जहाज के 22 चालक दल के सदस्यों में से 15 को छोड़ दिया है। अमरीकी सेना ने ईरानी ध्वज वाले जहाज तोस्का को 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में ईरान के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह चाबहार के तट पर नौसैनिक नाकाबंदी के तहत रोक दिया था। अर्धसरकारी समाचार एजेंसी तस्मीन ने भी छोड़े गए चालक दल के सदस्यों की ईरान पहुंचने की पुष्टि की है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा की बंगाल में जीत भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत और 61 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। ये विस्फोट कल शाम लियुयांग स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ। बचाव कार्य के लिए 5 टीमों में से 480 से अधिक बचावकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 3 बचाव रोबोट भी शामिल हैं। विस्फोट स्थल बारूद के 2 गोदामों के पास स्थित होने के कारण बचाव दल ने आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बचाव प्रयासों के लिए विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजा है। 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप के चलते ऑस्ट्रिया से निष्कासित कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट मैनेल रिसिंगर ने कहा कि पहले ही देश छोड़ चुके ये राजनयिक भवनों की छतों पर लगे कई सारे एंटीना का इस्तेमाल कर जानकारी जुटाने के लिए प्रयास कर रहे थे। रूसी दूतावास ने कहा कि ऑस्ट्रियाई अधिकारियों की यह नवीनतम कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित और रसासर अस्वीकार्य है। ये उन घटनाओं की श्रृंखला में ताजा घटना है जिनमें व्यक्तियों पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रिया ने 14 रूसी दूतावास कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। माली के सैन्य प्रमुख जनरल असीमी गोइता ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले इस पद पर रहे जनरल की हत्या कर दी गई थी। देश में जिहादियों और अलगाववादियों विद्रोहियों के हमलों के कारण सुरक्षा संकट बना हुआ है। अलगाववादी अजवाद लिबरेशन फ्रंट और अलकायदा से जुड़े JNIM ने पिछले महीने की 25 तारीख को माली के शहरों और कस्बों में हमले किए। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नाइजर और बुर्की फासो की सशस्त्र सेनाओं के साथ संयुक्त कार्रवाई कर जिहादियों और अलगाववादियों पर हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की पराजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 और 9 मई को यूक्रेन में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि कीव विजय दिवस समारोह में बाधा डालने का प्रयास करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कल आधी रात से युद्ध विराम का पालन करेगा और रूस की कार्रवाई का उसी तरह जवाब देगा। हालांकि युद्ध विराम की समाप्ति तिथि अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है। मैक्सिको आज फ्रांसीसी साम्राज्य पर अपनी अप्रत्याशित विजय की याद में सिंको डी मायो उत्सव मनाएगा। वर्ष 1862 में जनरल इग्नासियो जराजोआ गोजा के नेतृत्व में प्यूबला के युद्ध में एक छोटी और कमजोर हथियारों से लैस मैक्सिकन सेना ने नेपोलियन तृतीय की श्रेष्ठ फ्रांसीसी सेना को परास्त किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज के 22 चालक दल सदस्यों में से 15 को छोड़ा। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 61 अन्य घायल। और ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोपों को चलते निष्कासित किया। रूस ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स है ये। 10:30 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। आपकी चॉइसेस हमारे सामने हैं। फिलहाल ये गाना भी आपकी चॉइस का है।

भूला सखाब जैसे सच हो के मुस्कुराई, कितनी अच्छी लाइनें हैं ना। मतलब ये जो शब्द होते हैं ना, जादू होते हैं, बिल्कुल जादू। जैसे कि आपने लिखा है, जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रितेश और पूरा संघई परिवार है, और टोरोवाल नवाशहर पंजाब से हैं, गगनदीप, चित्रा कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और माणी धांती। इसके अलावा कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा है, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार। वाह, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, और अपनी फरमाइश हमें बताते हैं, हमारी चॉइस भी आपकी फरमाइश बन जाती है, मुझे मालूम है। इन सब के लिए हम सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं और वो है शुक्रिया।

0: रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हेना हर्षित खुशी गोस्वामी कहते हैं, कैसी हो दीदी?
1: हाय,
0: मैं बहुत प्यारी हूँ, थैंक यू वेरी मच। और तुलसी मस्कीन है, ये भी कहते हैं कि हमसे कोई नाराजगी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष खुराना, किशु हैं। और मतलब नाराजगी कैसी भाई, कितना अच्छा है हमारा काम कि आप सॉन्ग्स की फरमाइश करते हैं और हम वो सारे के सारे सॉन्ग्स लेकर के आ जाते हैं। अब इसमें नाराजगी की तो कोई जगह है ही नहीं, है ना? और ये हैं परवीन सोनी, पूजा पायल और जगदीश जी हैं, और ये भी कहते हैं कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये है दिल का मेल बॉक्स एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, और सामने हैं आपके मैसेजेस प्यारे प्यारे से। एफएम गोल्ड को नमस्ते करते हुए कहते हैं कि देखिए, पानी बचाइए, जिंदगी बचाइए। बिल्कुल सही कहा, गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। कौशल्या हैं, बोधिराज खोरवाल हैं उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश हैं इनके साथ। और पता है, जब आप बहुत सारे हमें मैसेज भेजते हैं एक ही नाम से तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो एक मैसेज हमारे लिए काफी है। हो सकता है कि आप एक मैसेज में अपनी दो तीन च्वाइसेस भी दे सकते हैं तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या, रोशनलाल देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, इन सब में एक पसंद है ये वाली आशा भोसले जी का गाया हुआ गाना। फिल्म का नाम है वक्त, और इस वक्त हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:42।

दिल का मेल बॉक्स आया आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे और साथ में आपकी मेल भी आई है हमारे पास fmgoldairdelhi@gmail.com पे जो आपने हमें भेजी हैं। और ये है महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल, बहादुरगढ़ हरियाणा से, भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। मैडम जी गुड मॉर्निंग। आहा, तो सुपर हिट प्रोग्राम में सुपर हिट आपकी मेल हमारे पास शामिल है। थैंक यू वेरी मच कहते हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल पपी सोनू भाटिया, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी और तौसीफ हाशमी, कलीम अंसारी, बेगम हाशमी भी हैं इनके साथ साथ, छोटी बलिया सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जोही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और सारे के सारे समस्त फूलवाली फैमिली, थैंक यू वेरी मच आपकी इस मेल के लिए। और कहते हैं एनी सॉन्ग एनी फिल्म। आहा, इनका नाम है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और इनके बेटे फराज खान का आज, मतलब फराज खान के बेटे का बर्थडे है। तो कहते हैं कि एक गीत तो बनता है, एक गीत नहीं, अभी तक जितने गीत थे सब यूं मान लीजिए कि आपके लिए थे। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरियान, फारिया और ताहिरा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमारे पास भी लिस्ट आई है नौशाद जी के गानों को लेकर के, तो मैंने आपको बताया था ना, जैसा कि बताऊंगी अभी इस गाने के बाद भी, और ये चॉइस है आपकी ही।

किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम मेरी जीवन साथी। और एक मतलब बात है, कुछ मेल ऐसी जो बिल्कुल सेम टू सेम है, और वो है नौशाद साहब के बारे में। भारतीय सिनेमा इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली संगीत निर्देशकों में से एक थे, जिन्हें मसीकर ए आजम यानी कि संगीत का राजा के रूप में भी जाना जाता है। तो नौशाद साहब ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके गीतों को लेकर के कलाकार बेमिसाल में हाजिर होंगी शबनम, तो उनके गीतों को सुनिएगा। और हमारे पास उनकी, नौशाद साहब की बहुत सारी फरमाइश आई है उनके गीतों को लेकर के, तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल तो आपके लिए एक गीत है, और ये है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, धन्यवाद करते हुए, नमस्कार करते हुए। और हमेशा की तरह बस, जैसे कि जब गाड़ी छूटने वाली होती है ना, तब इनकी मेल आती है जनकपुरी सहारनपुर से। जॉन डिकास्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकास्ट्रो, तहे दिल से शुक्रिया करते हुए, थैंक यू वेरी मच। महेश अग्रवाल जी हैं, संदीप मक्कर हैं, अनिल मोहन हैं। अनिल मोहन जी कहते हैं कि आपकी जो गीत हैं, जो भी आपने प्ले किए, उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, ओशा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। और हमारा नंबर कब आएगा ये पूछते हैं जयराम खोरवा, सचिन, अमन, दीपांशु, और इनकी जो चॉइस है वो हमारे पास है, बस आप भारत भूषण जी की भी चॉइस थोड़ा सा सुन लीजिए। ये हैं बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दीपेंशु भूषण, संस्कृति और पौरुष, इन्होंने भी अपनी चॉइस हमें बताई है। मोहम्मद कलीम अंसारी साहब हैं, अग्रसेन यादव हैं, इनके साथ साथ कहते हैं कि इंदुजी बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली आपकी जो म्यूजिकल दिल्ली शो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी यही कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें मैसेज करते हैं, अपनी चॉइस बताते हैं और अपनी बात भी बताएं तो और अच्छा लगेगा। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, ये नाम मैं फिर से ले चुकी हूं, है ना। ऐसे ही होता है जब एक मेल हमारे पास बहुत सारी आती है। फिलहाल तो आपके लिए 1955 की फिल्म उड़न खड़ी।

टोला, उसी का गाना है ये। नौशाद साहब का संगीत है, शकील बदायूनी का ये लिरिक्स है और लता मंगेशकर के साथ ही ये है। लता मंगेशकर जी की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए।

0: वडिंग खेड़ा है, पंजाब से मिंटू थॉमस है, पिंकी है, लवली आरती अरोड़ा है और इसके साथ साथ हमें आदाब करते हुए सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम, गांव कुमार हेड़ा से इनका मैसेज आया है और जैसा कि मैंने कहा इन्होंने भी नौशाद साहब के संगीत में कोई गीत की फरमाइश की है तो गीत तो आपको सुनाने ही पड़ेंगे, हम सुनाएंगे आपको, बस आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे और सुनिए बताइए आपको कैसा लगा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, महाराजा दरवाजा से एटा से नबी हसन और उनका पूरा परिवार है इस वक्त हमारे साथ दिल का मेल बॉक्स में। कितना अच्छा लगता है ना, आप इसी तरह से हमारे साथ शामिल रहिए, अपनी चॉइसेस हमें बताते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नवेद हैं, सुहेल हैं, रसीद वारसी, यनम अनम और यशफ हैं, भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्णा कुमारी गुप्ता, कमला देवी गुप्ता भी हमारे साथ शामिल हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब वक्त है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरूपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वित्रिकशगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली आएंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 77,103 पर और निफ्टी 67 अंक गिरकर 24,053 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

ये तस्वीर है जहां की वादियां एकदम ठंडी हवाओं में खुली हुई हैं, जिसमें चाय की भीनी सी खुशबू भी है। ये वादियां प्रकृति का एक राग सुनाती हैं, पुलों के नीचे बहती नदियों का जो मीठा शोर है, नीलगिरी की चोटी पर बादलों का जो रैन बसेरा है, सुबह की धुंध में हम और आप जो खोए हैं, ये तस्वीर है मुन्नार की। स्वागत है आपका तस्वीर में, तो चलें मुन्नार चलते हैं।

चांद तारों का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा जरूर आपको लगेगा मुन्नार जाके कि बादलों में उड़ने की जो आशा है वो पूरी हो गई है, क्योंकि सपनों का शहर लगता है मुन्नार। नील कुरंजी के नीले फूल, फूलों की चादर ओढ़े कुदरत को देख के ऐसा लगता है कि जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आकर इकट्ठी हो गई हैं। मतलब मुन्नार का जो नजारा है ना, स्वर्ग तो मैंने नहीं देखा लेकिन कहते हैं कि स्वर्ग से भी प्यारा है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है तस्वीर मुन्नार की। तो मुन्नार जाइए, यहाँ पे चाय के बागान देखिए और चाय बागान घुमावदार रास्तों के साथ चलते चले जाइए। टॉप स्टेशन यहाँ से बादल बड़े करीब दिखेंगे आपको। नील कुरंजी फूल कहते हैं कि 12 साल में एक बार खिलते हैं, जो मुन्नार को बिल्कुल नीला बना देते हैं। अगली बार जब आप जाने का प्लान करेंगे तो ऐसे समय में जाइए जब ये फूल खिलते हों, सच में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। मुन्नार केरल के इडुक्की जिले में स्थित दक्षिण भारत का बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जिसे वहां पे दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं। इसके नाम का अर्थ है संगम। मलयालम में मुन्नार का अर्थ तीन नदियां हैं और उनका संगम है। ये तीन नदियां मथिरा पुझा, नालथन्नी और कुंडला के संगम पर स्थित है मुन्नार। तो फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इसको इतना, मतलब कश्मीर की तरह इसकी तुलना क्यों की जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे पाएंगे जो यहाँ के बागान है वो एकदम अंतहीन है। घुमावदार चाय के बागानों में ये बहुत ही फेमस है। जब आप घूमेंगे ना तो पहाड़ियों पे आपको ऐसा लगेगा कि ये हरे रंग का कोई कालीन बिछा हुआ है और उसके बीच में आप नजर आएंगे। मतलब फोटोग्राफ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो नज़ारा जब आपकी आंखों में बस जाएगा और दिल में हमेशा रहेगा, जब चाहे तब आप फोटो देखते रहिए और मुन्नार के बारे में सोचते रहिए।

जब आप मुन्नार आएंगे ना तो आप यही कहेंगे कि हमें मुन्नार से प्यार हो गया है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा चाय बागान है कोलू कुमलाई, टाटा का यहाँ पे टी म्यूजियम है, आप वो देखिए। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे दिखाई देगी। धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, शांत घाटियाँ, घने जंगल और बहुत सारे सुंदर झरने जैसे कि अट्टुकट फॉल्स, ये सब कुछ आपको मुन्नार में मिलेगा। एरीविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे आप जाके देखिए। और इसके साथ साथ नीलगिरी तहर के लिए भी ये बहुत फेमस है। मट्टुपेटी बांध भी आप जाइए, इको पॉइंट पे आप जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा फेमस है बोटिंग के लिए। 1902 में यानी कि 1902 में मुन्नार में एक मोनो रेल का निर्माण हुआ। ये मुन्नार और कनान देवल हिल्स प्लांटेशन के टॉप स्टेशन के बीच में चलती थी और इसके निर्माण का कारण था सिर्फ एक, और वो था चाय। इससे ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है कि चाय का इतिहास मुन्नार के इतिहास के साथ साथ चलता है। बहुत सारे लोग तमिलनाडु से केरल तक चाय बागानों में काम करने के लिए पैदल चलकर आए थे। चाय और दूसरे सामानों से बेहतर परिवहन के लिए रेलवे निर्माण किया गया था और आधुनिक मुन्नार चाय के असाधारण इतिहास से गढ़ा हुआ है। तो आप यहां जाएं, चाय न पिए ये कैसे हो सकता है।

मुन्नार जाने का जब भी आप प्लान बनाएं तो उसको उस लिस्ट में बिल्कुल मत डालिएगा जिसके लिए कहा जाता है रहने तो। यस, मतलब मुन्नार आपको जाना है, नील कुरंजी के फूल देखने हैं। और इसके बारे में आपको बताऊं कि एक बैगनी नीले रंग का फूल है जो नीलगिरी में 12 साल में केवल एक बार खिलता है। नील कुरंजी का जीवन चक्र ऐसा है कि पूरी तरह से इसको डेवलप होने में पूरा एक दशक लग जाता है और इसी की वजह से इसको कहते हैं दुर्लभ दृश्य। तब पहाड़ नीले हो जाते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा नीलगिरी। नीलगिरी के टोडा और मुन्नार के मुथवास नामक जनजातियों ने इस फूल को बहुत शुभ माना है और इसकी भी एक कहानी है जो मैं नहीं बताऊंगी। ये आपको अपने आप जानना है कि आखिर वो कौन सी कहानी है, तभी तो वो पूरा का पूरा आपका जो एंथो है वो बना रहेगा। और इसके साथ साथ मधुवर जनजाति के लोग नील कुरंजी के खिलने के आधार पर अपनी उम्र का अनुमान लगाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये फूल 2030 में खिलेगा। थोड़ा सा लंबा इंतजार है लेकिन अद्भुत है। जब आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि भाई यहां तो जाना बनता है। मुन्नार जहां पे जाके आप एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वहां भी जाइए क्योंकि जंगल में शायद ही कोई शोर सुनाई देता है। यहां पे आपको बिल्कुल सन्नाटा दिखेगा और कहते हैं कि मतलब मैंने देखा है, मैंने ये महसूस किया है कि जो मुन्नार की दिन होते हैं वो भी बहुत ही प्यारे, एकदम जिसको कहते हैं कि

जब हम एक जहां पे हम रह रहे होते हैं ना, उस लूप को जब तोड़ते हैं, क्योंकि हमें आदत बन चुकी होती है, तो इसीलिए कहते हैं कि घूमना बहुत जरूरी है। तो आज हम घूम रहे हैं मुन्नार, जो है आज हमारे साथ तस्वीर में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। तो मुन्नार जाएं तो अपने साथ छाता जरूर लेकर के जाएं, बार बार मौसम देखते रहें कि कैसा होने वाला है, क्योंकि तेज धूप, धूप के साथ थोड़े से बादल और उसके बाद हल्की सी बारिश, ऐसा होता रहेगा और आपको लगेगा कि ये तो बारिश से भरी हुई जादुई दुनिया जैसा लग रहा है। जब आप कुल्लू लुक्कुमलाई घूमने जाएंगे तो फिर चाय पीना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब डिफरेंट लगेगा। इसके साथ साथ एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जाइए, इसके आसपास आपको कुछ पहाड़ियां भी देखेंगी, देवीकुलम है। अनामोडी चोटी जाइए, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि भाई जाना कैसे है, तो हम आपको बता दें, फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नजदीक है, लगभग 120 किलोमीटर, और नजदीकी रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम, लगभग 130 किलोमीटर। और सुबह जल्दी निकले ताकि भीड़ से बच सके। चाय के बागानों में टहलने के लिए आपके पास हमेशा की तरह, जैसे कि मैं कहती हूं, आरामदायक जूते होने चाहिए। और एराविकुलम पार्क में नीलगिरी तहर को देखने का मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर फरवरी मार्च में ये बंद रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुन्नार जाने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई केरल का मुन्नार कितना प्यारा है।

तरसने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, सोच के देखिए, थोड़ा सा और गहरे में सोच के देखिए कि आपके हाथ में मुनार की प्यारी सी चाय की प्याली हो और आप आसमान में बड़े आराम से सारे के सारे तारे गिन रहे हों और कितने सारे ख्याल आते और जाते रहेंगे, है ना। ये होती है खूबसूरती।

घूमने से कहिए आई लव यू, और वो जो सुबह उठ के जागना, जाना, फिर आना, फिर सो जाना, फिर से उठना, इस लूप को तोड़िए। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप खुद में देखेंगे कि यार ये जिंदगी जो है कितनी खूबसूरत है, और ये दुनिया उससे भी ज्यादा। केरल को नेचर ने अपने सभी खूबसूरत विधाओं से नवाजा है। यहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं, हरियाली से भरे चाय के बागान हैं, समुद्र है, और क्या क्या नहीं है। लेकिन इन सब में सबसे खूबसूरत नगीना है मुन्नार का, जिसका जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक मलयाली शब्द है जिसका अर्थ है तीन नदियों का संगम। चिया परा वाटरफॉल्स ये आप जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आसपास आपको ऐसी दुकानें नजर आएंगी जहां पे अनानास और आम की पतली पतली टुकड़ियों का आनंद आप उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और उसके बाद आगे बढ़िए, चिप्पारा वाटरफॉल्स आपको नजर आ जाएगा।

और जाने पे ना सब कुछ सुलझ जाता है। ये आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात और गहरे से। अगर आप जाएंगे अनाईमुदी पीक, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है हाथी का मस्तक। ये देखने में बिल्कुल वैसी लगता है, और ये चोटी एराविकुलम नेशनल पार्क की बाउंड्री बनाता है। बहुत अच्छा लगेगा। और हाथी से मुझे याद आया कि यहां पर ना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा एलिफेंट सफारी। और केरल की यात्रा पर हो और हाथी की सवारी न करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके साथ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर चाहें तो हाथी को कुछ खिला सकते हैं। ऊंची ऊंची पेड़ों में के बीच में से जब आप गुजरेंगे हाथी के साथ, तो आपको अच्छा लगेगा। ये वेल ट्रेन्ड होते हैं, इनके साथ जो इनके महावत हैं वो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। तो आप ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मुझे याद है कि आप अगर वहां पे ऐसी जगह भी हैं जहां पे आप हाथी के साथ और पानी के साथ, मतलब उसको नहला भी सकते हैं। ये सब चीजें हैं कि नहीं अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे गए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन ये सब कुछ वहां पे आपको मिल सकता है। और साथ ही पास में मुन्नार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे रोज गार्डन है, यहां तो आप जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर लगता है। केवल गुलाब ही नहीं बल्कि दूसरे पौधे भी आपको ये मिलेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। और इको पॉइंट तो मैंने आपको बताया, वहां जाना है, ये पिकनिक स्पॉट है, झील के किनारे है, जहां बोटिंग भी कर सकते हैं। झील के उस पार आप देखेंगे तो एक घना जंगल है, और दूसरी तरफ आप बैठे होंगे, और हाँ, नारियल पानी वो पीना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि चाय के साथ साथ एक ये चीज है जो आपको अच्छी लगेगी।

ये है मुन्नार, केरल का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और ये तस्वीर मुन्नार की कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। वैसे घूमने के लिए सितंबर से मार्च का जो समय है सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप सितंबर से मार्च के बीच में जाइए और देखिए, तब आपको अच्छा लगेगा। मानसून के दौरान बहुत सुंदर लगता है अट्टुकल वाटरफॉल जो है, और इसके अलावा बोटिंग और प्राकृतिक नज़ारे तो हैं ही। चाय बनाने की और पीने के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर ही ली, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमारी बड़ी पर्सनल होती हैं। मतलब आपने आंखें बंद की और पूरी की पूरी तस्वीर आपकी आंखों में नजर आने लगती है। मतलब कैमरे से या अपने फोन से फोटोग्राफ्स लेने की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश कीजिए वो नेचुरल चीजें सारी की सारी आपकी आंखों में भर जाए।

अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मुन्नार की आखिर हमने इतनी तारीफ क्यों की, क्योंकि मुन्नार है ही ऐसा। मुन्नार की वादियां में जब आप पहुंचेंगे, वहां की वादियों में और ढलानों पे चाय के बागान जो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे अगर हम यहाँ पहले नहीं आए तो आखिर क्यों नहीं आए। तभी नहीं कहते कि ठंडी हवाओं में जब आप गरम गरम चाय की भीनी खुशबू को महसूस करेंगे, मुन्नार की वादियों में बैठ के आराम से चाय पियेंगे, तब आपको लगेगा कि मुन्नार सिर्फ एक छोटी सी जगह नहीं है, बल्कि ये एक छोटी सी कविता है। जब आपको बगल में से पानी की कलकल एक आवाज सुनाई देगी, नदियों का मीठा शोर समझ में आएगा, नीलगिरी की चोटी पे बादलों का रैन बसेरा दिखेगा, सुबह की धुंध में जब आप खो जाएंगे सनसेट देखेंगे और सनराइज देखेंगे, और पूरा जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ी देर के लिए, चाहे हम दो चार दिन रहें चाहे कितने भी दिन रहे, थोड़ा सा बदल जाएगा। सपनों के शहर में मुन्नार की हर सुबह बहुत शानदार होती है। मुन्नार ग्रिड जाइए, कुल्लू कुमलाई जाइए, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जैविक चाय का बागान है। यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करके देख सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय देखने का नजारा बहुत स्पेशल होता है। अनिरंगल भी जा सकते हैं, जहाँ पे एक अंतहीन झील है। और अब भी बताइए कि क्या इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है? नहीं ना, तो बस आप प्लान बनाइए और होके आइए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर से मिलने के लिए हैप्पी जर्नी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए।

0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस लियो कैगडैक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ. अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has said the attack on the Fujairah Petroleum Industries zone in the UAE, which resulted in injuries to 3 Indian nationals, is unacceptable. 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries zone yesterday following a drone attack from Iran. In a statement, the External Affairs Ministry called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of

हर आंगन। घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। दोस्तों जैसे आपका हमारा रिश्ता जुड़ा है प्रेम से, उसी तरह यूं ही प्रेम से चलता रहे और आप हमें भेजते रहें अपने ढेर सारे मैसेजेस और हम आपका पूरा ख्याल रख सकें, यानी आपकी पसंद के कार्यक्रम सुनवा सकें और आपके पसंद के गीत पेश कर सकें। दोस्तों प्रेम की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। ये खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर रहता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा प्यार वही होता है जो सभी हालातों में साथ हो, यानी दुख और सुख दोनों में। कहते हैं कि प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं ये इंसान पर निर्भर करता है, पर प्यार इंसान को जरूर बदल देता है।

0: दोस्तों आज है विश्व अस्थमा दिवस। इस वर्ष की थीम है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता अभी भी एक तत्काल आवश्यकता। इस बात पर जोर देना है कि अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों को सांस के माध्यम से ली जाने वाली दवाएं मिल सकें जो इस बीमारी को नियंत्रित करने और हमलों का इलाज करने के लिए आवश्यक हैं। इस दिन का उद्देश्य है अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके प्रबंधन में सुधार करना और प्रारंभिक निदान को बढ़ावा देना। आइए सुनते हैं आज एक विशेष कार्यक्रम अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज विषय पर डॉक्टर प्रियंका पांडे से रश्मि कुकरेति की बातचीत।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेति। दोस्तों अस्थमा एक ऐसी समस्या है जो कि जब पोल्यूशन होता है, जब प्रदूषण होता है तो बहुत बढ़ जाती है और अगर बढ़ती उम्र हो और ये समस्या घेर ले तो बहुत ही जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बहुत ही स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं और यदि सांस ना आए तो फिर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तो अस्थमा रोग है, उसको किस प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं, उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं, ये सारी बातों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज गोल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका पांडे। डॉक्टर प्रियंका पांडे, आपका गोल्ड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, रेडियो सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सारे रोगियों को रोज ही परामर्श देती हैं, कितने केसेस आते हैं जिनको अस्थमा की समस्या रहती है?
2: अस्थमा के मरीज तो बहुत मिल ही रहे हैं, साथ ही खांसी जुकाम, मैं कहूंगी ज्यादा है खांसी जुकाम के मरीज।
1: अच्छा,
2: तो वो ज्यादा मिलते हैं अगर उनका से उपचार ना करें तो। अगर वो एलर्जिक हैं या उनमें कोई और डिजीज है तो उन्हें अस्थमा के लक्षण है या उन्हें पहले से अस्थमा है तो उनके लक्षण बढ़ने की संभावना भी अभी होती है।
1: यानी कि अगर खांसी जुकाम हो रहा है और मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता
2: हाँ,
1: तो है,
2: तो जरूरी ही है। वैसे तो अस्थमा एलर्जिक है कि अधिकतर मतलब 60-70% लोगों में एलर्जी की वजह से अस्थमा मिलता है, लेकिन कुछ लोगों में विदाउट इसके भी अस्थमा मिल सकता है। टेम्परेचर वेरिएशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो बहुत सारे कारण है, लेकिन इस समय सीजन वेरिएशन जब भी होगा तो अस्थमा के मरीज ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, कब आप ये तय करती हैं कि ये अस्थमा का रोग हो गया है, यानी कि एलर्जी

0: तो भी आजकल बहुत ही हर किसी व्यक्ति को कुछ ना किसी चीज से एलर्जी होती ही है, तो वो कौन सी स्टेज होती है कि जब आप कहते हैं कि अस्थमा हो गया है? अब
1: देखिए, अस्थमा क्या है? अस्थमा जो है हमारी श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है
0: जी।
1: तो अस्थमा में बेसिकली क्या है कि जो जो एयरवेज हैं जिनके थ्रू एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है उनमें या तो सूजन आ जाए या फिर वो जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आ जाए, जिसकी वजह से एयरवेज जो है वो जितने अच्छे से एयर को पास करते हैं वो ना कर पाए और सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना मुश्किल हो जाए, तो इस स्टेज को हम कहेंगे अस्थमा। इसके अलावा इसमें टेस्ट भी होते हैं जैसे लंग कैपेसिटी, जिसे हम नाप सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इससे हम पूरी तरह पता लगा सकते हैं कि ये अस्थमा है या नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, जब आपके साथ पास मरीज आता है तो किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है दमा रोग का?
1: देखिए, दमा रोग का, देखिए अगर वो उसे अस्थमा का अटैक है तो उसके लिए तो फिर देखिए दवाइयां ही आपको देनी पड़ेंगी। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, आप उनको देंगे तो उनका जो अटैक है वो धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगी प्रिवेंशन है जो सबसे बड़ा चीज है। इसके जितने भी प्रिवेंटिव कारण हैं, पहले तो ये है कि अगर एलर्जी की वजह से अस्थमा है तो ये कारण हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज उस व्यक्ति को एलर्जी कर रही है। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक है हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स है। कई बार हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो नॉर्मल चीज है, जो मतलब जो हार्मफुल नहीं होती है उसको भी डेंजरस मानता है। इसकी वजह से वो उसके प्रति इम्यून रिस्पांस पैदा करके सूजन और ये सब जकड़ाहट पैदा करता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर एलर्जी हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है। उसके अलावा मान लीजिए खांसी जुकाम है, दूसरा कारण ये हो सकता है, या फिर मान लो दर्द की दवाई आ रहा है, कई बार उसके साइड इफेक्ट से भी अस्थमा के अटैक आ सकता है।
0: अच्छा।
1: कई बार स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो वो सब कारण से भी दूर है। और उसके अलावा लाइफस्टाइल,
0: यानी कि सिर्फ बदलता मौसम ही नहीं है और भी कोई कारण हो सकते हैं जो उसको ट्रिगर कर सकते हैं।
1: जो ट्रिगर कर सकते हैं, देखिए
0: पहचानना जरूरी है
1: कि किस चीज से आपको एलर्जी है, वो पहचानना बहुत जरूरी है।
0: तो अब एलर्जी हो गई हमें और ये समस्या पैदा हो ही गई, तो आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है और खाने पीने में किस प्रकार का ध्यान मरीजों को रखना चाहिए?
1: देखिए, खाने पीने में तो मैं कहूंगी खाना हल्का खाना चाहिए।
0: अच्छा।
1: एक गर्म खाना खाएं। इसमें कफ, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो इसमें कफ और वात का हम इन्वॉल्वमेंट मानते हैं कि म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर रहा है, सूजन आ रही है, इसलिए इस वजह से भी म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो खाना ऐसा होना चाहिए जो कफ को भी ना बढ़ाए और वात को भी ना बढ़ाए। तो खाना जो है हल्का हो, मतलब तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, बहुत मीठी चीजें नहीं खानी है। खाना ऐसा खाए जिससे पेट वगैरह अच्छे से साफ हो। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने से भी इवन लंग्स की कैपेसिटी में भी
0: फर्क
1: पड़ जाता है। तो इन सब चीजों का स्पेशली ख्याल रखना है।
0: मतलब खाने पीने में जो आप कह रही हैं कि सादा खाना होना चाहिए।
1: हाँ, सादा खाना खाना। रात को जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ऑफिस से जाते हैं, 8-9 बजे खाया और उसके बाद आधा पौन घंटे बाद ही लेट गए, तो खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें, जिससे खाने का डाइजेशन अच्छा हो, खाना पचे अच्छा, पेट अच्छे साफ हो और कहीं ना कहीं वातानुलोम हो। हमारे यहाँ वातानुलोम चिकित्सा कहते हैं, पेट साफ होगा, हमारा जो जितने भी मतलब बॉडी वात के काम है वो सही से होंगे तो अस्थमा का अटैक होने की संभावना भी सबसे।
0: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपको सांस की समस्या है तो दही का प्रयोग ना करें, कुछ कहते हैं सफेद चीजें ना खाएं, कुछ कहते हैं चावल ना खाओ भाई, इससे सांस की समस्या हो सकती है, ये बातें कहां तक सच है?
1: देखिए, सफेद चीजें तो मैं नहीं खाऊंगी। दही और चावल की जहां तक बात है, दही और चावल ना कफ वर्धक होता है
0: जी,
1: ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। हर किसी को नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जो थोड़ा सा कफ प्रकृति है उनको प्रॉब्लम करेगा। हमारे यहाँ प्रकृति के अकॉर्डिंग चिकित्सा होती है, तो जो कफ प्रकृति व्यक्ति हैं उनको ये करेगा, दही और चावल से प्रॉब्लम होगी।
0: रात को ही दही चावल ना खाए, दिन में खा सकते?
1: उनके लिए तो देखिए दिन में भी प्रॉब्लम करेगी जो कफ प्रकृति है।
0: तो यानी कि अगर खांसी जुकाम की समस्या हो रही है और इस प्रकार की सांस की समस्या है तो दही चावल थोड़ा सा कम करके खाएं।
1: हाँ, बल्कि चावल तो एक बार ले ले, देखिए उसका भी संस्कार हम कर सकते हैं। जैसे चावल है तो अगर आप उसे पकाएं तो उसमें थोड़ा सा लौंग और दालचीनी डाल के पकाएं, तो जिससे उसमें कुछ गर्माहट आए। और दही को देखिए थिक तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, उसे पतला करें और उसमें थोड़ा सा काला नमक है, जीरे का पाउडर डाल के
0: काली मिर्च
1: तब खा सकते हैं, वो भी दिन में। मतलब थिक दही तो नहीं खाना चाहिए अस्थमा के पेशेंट को,
0: और रात को भी नहीं खाना चाहिए हम।
1: हाँ, रात को तो बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं खाना
1: रात को चाहिए। बिल्कुल नहीं।
0: तो डॉक्टर साहब, और किस प्रकार का उनको ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सांस की समस्या है, अब खाना तो है ही, लेकिन किस प्रकार से क्या क्या खाएं हम लोग?
1: देखिए, हल्का जो भी भोजन हो, मतलब स्पेशली मैंने कहा कि रात को तो बिल्कुल ही हल्का भोजन लें, जैसे बिल्कुल हल्की सब्जियां जैसे लौकी है, तुरई, टिंडा, जो सिंपल है, मतलब भारी चीजें आप छोले, राजमा, उड़द, ये दाल, ये सब रात को बिल्कुल नहीं।
0: दूध वगैरह पीना उचित रहेगा रात को?
1: दूध ले सकते हैं, लेकिन हल्दी डाल के,
0: हल्दी डाल के,
1: क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हल्दी डाला दूध अच्छा रहेगा।
0: तो इनको दवाइयां वगैरह डॉक्टर साहब आप कैसे देते हैं, और अगर किसी को अटैक पड़ जाए तो उसका भी इलाज आयुर्वेद में होता है?
1: देखिए, बिल्कुल ही एक्यूट स्टेज में तो मैं नहीं कहूंगी कि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, सीवियर अटैक में नहीं देते हैं, लेकिन अभी उसे परेशानी शुरू ही हुई है तब आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने से वो
0: फायदा होगा।
1: हाँ, फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगी डिजीज, तो एक्यूट स्टेज में बिल्कुल सीवियर अटैक है तो उसमें हम नहीं देते, लेकिन शुरुआत में ही पेशेंट आ जाए तो उसमें उसका प्रोग्रेशन नहीं होता डिजीज का।
0: डॉक्टर साहब, अगर भाप वगैरह की जो कहते हैं भाप लीजिए वगैरह, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होती है?
1: हाँ नहीं, भाप जैसे अगर अस्थमा के ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अगर जिसको कफ बनना हो तो उसको सबसे पहले जो सरसों का तेल है
0: जी,
1: इसमें थोड़ा गर्म करें, इसमें सेंधा नमक डालें, उससे चेस्ट की मालिश करें, चेस्ट अच्छा। की भी और बैक की भी
0: अच्छा।
1: उसके बाद उसे थोड़ी सिकाई करनी चाहिए, उससे जो है कफ क्या है पिघलता है और जो एयरवेज है वो खुलते हैं,
0: खुल जाते हैं
1: और अस्थमा प्रोग्रेस नहीं होता है आगे, तो रोज ये सिकाई वगैरह करें, और इसके अलावा दवाइयां भी हैं।
0: आपने कहा डॉक्टर साहब की श्वसन नली खुल जाती है सिकाई वगैरह करने से, डॉक्टर साहब क्या और भी कोई तरीके हैं जो कि सूजन वगैरह कम करने में काम आती है? जैसे हमें पता है कि हमारा काम तो चल रहा है थोड़ा बहुत, अगर बहुत कम स्तर का अगर तकलीफ है तो काम तो चलता है, लेकिन सूजन अभी है मान लीजिए, तो कुछ और भी तरीके हैं कि खाने पीने में कोई ऐसी चीजें हैं जिससे अंदर की इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह कम हो?
1: हाँ, देखिए इसके लिए दवाइयां हैं, लेकिन मैं कहूंगी दवाइयां हमेशा चिकित्सीय परामर्श से ही लें।
0: जी, जी, जी।
1: इसके अलावा तो देखिए घर में क्या ले सकते हैं, तो हल्दी का दूध लें, जिससे प्रिवेंशन एक्सपेक्ट में कह रही हूँ, थोड़ा सौंठ होती है घर में, काली मिर्च होती है और पिपली होती है, इन सबको ना लगभग तीनों को मिला के आधा चम्मच के करीब शहद के साथ चाटें, इससे अच्छा। भी जो कफ पिघलने में और एयरवेज क्लियर होने में बहुत सहायता मिलती है।
0: बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि अगर वाकई ये समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है या लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो खुद का इलाज खुद ना करें,
1: हाँ।
0: और डॉक्टर के पास जरूर जाएं, हाँ। अगर आयुर्वेद की भी शरण में जाते हैं तो जो शुरुआत में ही वो रोग को जरूर पकड़ लेगा,
1: हाँ।
0: और वो भी चिकित्सक के परामर्श के अलावा कोई दवाई ना लें। डॉक्टर साहब, बहुत लोग तरह तरह के जो हम कहेंगे इम्यूनिटी बूस्टर्स का प्रयोग शुरू कर देते हैं,
1: आपकी इम्यूनिटी ही सब कुछ है, तो ये फायदेमंद तो है, लेकिन मैं कहूंगी पूरी प्रकृति के अकॉर्डिंग, हर कोई हर चीज नहीं खा सकता है, तो प्रकृति के अकॉर्डिंग खाए जा सकते हैं फिर भी, लेकिन गिलोय है और आंवला है, विटामिन सी से भरपूर है, ये सारी चीजें लगभग सभी को सूट करती हैं।
0: तो अगर घर में भी जैसे आंवला तो उबाल कर एक आंवला हम लोग ले सकते,
1: हाँ, ले सकते हैं।
0: तो हम जो रोजमर्रा के जो हमारे खाने हैं उसमें भी ये ध्यान रखें कि गला वगैरह ठीक रहे, खाने का ताजा रहे और उसका तापमान भी ठंडा ना हो,
1: ठंडा ना हो, वो खाना तो गर्म, देखिए डाइजेशन भी अच्छा रहता है उससे, और जहां आपका डाइजेशन अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छा,
0: और भरपूर नींद ले जो,
1: हाँ वो तो खैर जरूरी,
0: वो भी बहुत जरूरी है, अगर हमारी दिनचर्या अगर ठीक रहेगी तो मुझे लगता है काफी हद तक इस रोग पर हम काबू पा सकते हैं।
1: प्राणायाम में ध्यान दें, इससे जो है लंग कैपेसिटी बढ़ती है, सूजन जो है एयरवेज की वो कम होती है, तो प्राणायाम
0: बहुत जरूरी है। ये तो हम कहेंगे कि एक तरह से ये दिनचर्या का इसको रूप दें कि जैसा कि डॉक्टर प्रियंका पांडे कह रही हैं कि योग और प्राणायाम जरूर कुछ समय दें,
1: रनिंग, मतलब थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर रखें, क्योंकि बॉडी के साथ साथ आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी मदद करेंगे।
0: जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर प्रियंका पांडे आपने, और मुझे लगता है कि अगर हम एक संतुलित भोजन लें, भरपूर नींद लें, और जैसा कि आपने कहा योग को भी अपने जीवन में स्वीकारें, अंगीकार करें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग के प्रचार प्रसार के लिए बहुत, उनका विशेष एक वो रहा है कि भाई हमारे पूरे देशवासी योग योग को अपनाएं और अपनी साथ में जो कैपेसिटी है वो भी योग से बहुत अच्छी होती है।
1: योग तो शरीर मन सबके लिए ही बहुत ही मतलब फायदेमंद चीज है,
0: हर तरह से फायदेमंद है। डॉक्टर प्रियंका पांडे, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी, आपका

अभी आप सुन रहे थे बातचीत अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज विषय पर डॉक्टर प्रियंका पांडे से बात कर रही थी रश्मि कुकरेती। और आज है दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्मदिवस। 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संधवान में जन्मे श्री ज्ञानी जैल सिंह का जीवन महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान और जनता की सेवा के प्रति समर्पण था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह अपनी विनम्रता और गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। भारतीय राजनीति में उनके योगदान और जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा हमें सबको मिलती रहेगी।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गीत, फिल्म है सवेरे वाली गाड़ी।

गर्मियों का मौसम भी लोगों को पसंद आ सकता है, क्यों? अब आपको बताते हैं। और कुछ लोगों को इसको पसंद करना बात आपको चौंकाने वाली जरूर लग सकती है, पर जब आप जान जाएंगे इसकी खूबियां तो शायद आप भी पसंद करने लगेंगे इसे। इस मौसम के दिन लंबे होते हैं, जिसमें समय की कमी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अपने मनपसंद काम करने, खेलने, दोस्तों से मिलने जुलने और घूमने के लिए जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। और शरीर के लिए पानी जरूरी होता है, तो ये केवल सौंदर्य विशेषज्ञ नहीं बल्कि फिजिशियन भी मानते हैं। योग सेंटर जाकर योग करने का जिनके पास टाइम नहीं होता, इसके लिए मौसम बहुत ही अच्छा है। वे घर पर ही रहकर सूरज की गर्मी को महसूस करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं, और खास तौर पर पेय पदार्थ के लिए बेहतरीन मौसम है ये गर्मी। जी भर के चाहे जितना पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, लस्सी और जूस पीजिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है और शरीर में जितना पानी जा सके उतना अच्छा है। तो इस मौसम की खास बात यह है कि मानव शरीर को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विटामिन डी इसी मौसम में मिलता है, और विटामिन डी से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को भी तेज करता है। सूरज की किरणें हमारे दिमाग पर पॉजिटिव असर डालती हैं, इससे जो है सेरोटोनिन फील गुड फैक्टर रसायन मिलता है, जिससे अच्छी नींद आती है और शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। शरीर का पसीना बाहर आना बहुत जरूरी होता है, इससे शरीर के बहुत सारे खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं। किसी और मौसम में ये नहीं हो सकता, लेकिन गर्मी में ये बिना कोशिश के हो जाता है। तो जाना आपने कि कितनी सारी खूबियां हैं और आपको भी गर्मी का मौसम पसंद आ सकता है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गीत, फिल्म है फासले।

और अब बात करते हैं कुछ तारीफ करने की, यानी प्रशंसा थेरेपी भी खुशी देती है। तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं, ऐसा कोई नहीं जो तारीफ सुनकर खुश ना हो। बल्कि चलिए इस बहाने किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इससे ये प्रतीत होता है कि आपके जीवन में उसकी कितनी अहमियत है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की तारीफ करे तो दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दूसरे के काम की तारीफ करना भी कला है। आपका काम काबिले तारीफ, या अगर आप ये किसी से कहते हैं कि उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। किसी की होशियारी और उसके तेज दिमाग को देखकर आप ये बात कर सकते हैं। तारीफ का मतलब है दूसरों की खासियतों को उसके सामने या दूसरों के सामने कहना या उन्हें खास महसूस कराना। ये एक प्राकृतिक स्वभाव है कि हम सभी दूसरों से प्रशंसा पाना चाहते हैं। तारीफ के दो बोल रिश्तों को भी मधुर बनाते हैं। चाहे वे आपका साथी हो, परिवार हो, ऑफिस हो या रिश्तेदार, सभी की समय समय पर प्रशंसा कीजिए। इससे उनको खुशी का एहसास तो होगा ही और रिश्ते संवरने में भी मदद मिलेगी। और इसीलिए प्रशंसा करने में कंजूसी ना करें, दिल खोल कर करें।

दोस्तों, कपड़ों की जब बात करते हैं, अगर हम भारतीय सोच को देखें तो पश्चिमी सभ्यता को हम अक्सर आधुनिक समझते हैं, लेकिन वहां की आधुनिकता उनके वातावरण पर निर्भर करती है। तो दिखावे के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना या पहनने का तरीका सिर्फ बाहरी दिखावा होता है, असली तस्वीर तो आपके मन में छिपी होती है। अच्छी सोच के साथ बेहद खूबसूरत बना सकते हैं आपके कपड़े, और हाँ, उसे ऐसे ही स्वीकार करें जैसा कि आप फिर किसी को देखकर करते हैं, यानी बदलाव आपको खुद नजर आएगा, क्योंकि विचार बदलेंगे तो नजरिया भी बदल जाएगा।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए। इसी वादे के साथ आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के

0: तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरों मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़ककर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to 3 Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. Mr. Modi underlined that ensuring safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability and global energy security. Yesterday, 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industry Zone in the UAE following a drone attack from Iran. Earlier, the Ministry of External Affairs also condemned the attack in the UAE, calling it unacceptable. In Tamil Nadu, political activity has intensified following the completion of vote counting for the assembly elections. The TVK has emerged as the single largest party in

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम जिनकी बातें करने वाले हैं वो एक बेहतरीन संगीतकार हैं। बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। वो एक ऐसे कंपोजर रहे हैं जिन्होंने संगीत के नए आयाम गढ़े हैं। आज हम नौशाद साहब को याद करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि नौशाद साहब एक बेहतरीन संगीतकार तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने कुछ बहुत ही जबरदस्त गजलें भी लिखी हैं, शायरी भी किया करते थे नौशाद। अब जैसे कि आपको सुनाती हूं, खुद मिट के मोहब्बत की तस्वीर बनाई है, खुद मिट के मोहब्बत की तस्वीर बनाई है, एक शम्मा जलाई है, एक शम्मा बुझाई है, आगाज शब गम है क्यों सोने लगे तारे, आगाज़े शबे गम है क्यों सोने लगे तारे, शायद मेरी आंखों से कुछ नींद चुराई है। वैसे मैं आपको बताऊं, आज कुछ अलग गाने लेकर आई हूं नौशाद साहब के, वो नहीं जो अक्सर आप सुना करते हैं, आज कुछ अलग गाने सुनाऊंगी।

तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको नौशाद साहब के आज वो गाने नहीं सुनाई देंगे जिन गानों की आप उम्मीद करते हैं अक्सर उनको सुनाया करते हैं। आज मैंने सोचा कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट वाले गाने उनके निकाल कर लेकर आऊं मैं आपके लिए। उम्मीद करती हूं कि धर्म काटा फिल्म का ये गाना जो आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, ये आपको पसंद आया होगा। अगले गाने को भी आप बहुत मोहब्बत देने वाले हैं। दोस्तों, इस गाने को कंपोज किया था नौशाद साहब ने, जैसा कि आप जान ही गए होंगे। नौशाद अली, जिन्हें हिंदी सिनेमा के महानतम संगीतकारों में से एक माना जाता है, उनका ताल्लुक तहजीब के शहर लखनऊ से था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1919 को हुआ था। नौशाद के परिवार में गाने बजाने की सख्त मनाही थी, लेकिन उनका दिल बचपन से ही संगीत में रम गया था। नौशाद के पिता वाहिद अली लखनऊ के कोर्ट में क्लर्क थे और उनकी चाहत भी वही थी जो आमतौर पर एक भारतीय परिवार के पिता को होती है, कि उनका बेटा पढ़े लिखे, नौकरी व्यापार करे। लेकिन किस्मत नौशाद को वहीं ले गई जहां उन्हें जाना था, लेकिन कैसे बताऊंगी आपको, उससे पहले ये गाना, कहीं ना जाना।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में आपने सुना संघर्ष फिल्म का ये गाना जिसका संगीत तैयार किया था नौशाद साहब ने। दोस्तों, बाराबंकी में एक बहुत ही मशहूर दरगाह है देवा शरीफ, शायद आपने नाम सुना होगा। नौशाद अपने परिवार के साथ अक्सर यहां जाया करते थे। यहां हर साल एक मेला लगा करता है जिसमें देश के बड़े बड़े कव्वाल और उस्ताद आया करते हैं। नौशाद भी घंटों तक उस जमाने के जो उस्ताद थे, कव्वाल थे, उनके साथ बैठा करते और धीरे धीरे इन्हीं उस्तादों से उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत सीखना शुरू कर दिया। हारमोनियम में तो नौशाद खुद मास्टर हो गए और हारमोनियम को रिपेयर करना भी वो सीख गए। आगे चलकर नौशाद ने एक थिएटर क्लब ज्वाइन कर लिया और वहां संगीत पेश करने लगे। इसी तरह संगीत के साथ उनका रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता चला गया। दोस्तों, साल 1937 में फिल्मों से जुड़ने के लिए नौशाद पहुंच गए मुंबई, लेकिन क्या वाकई में जाते ही उन्हें काम मिल गया? इतना आसान है वहां जाकर पहचान बनाना? नहीं, ऐसा नहीं है। बताऊंगी आपको किस तरह की परेशानियां पेश आई उनके सामने, लेकिन उससे पहले बहुत ही प्यारा सा गाना।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, बिल्कुल अभी आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में साथ ही फिल्म का गाना, संगीतकार नौशाद की एक और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। दोस्तों, नौशाद मुंबई तो पहुंच गए थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वहां जाकर इतनी आसानी से कहां करियर बन जाता है। आंखों में ख्वाब जो होते हैं ना, उन्हें पूरा करने के लिए रातों की नींद और दिन का जो सुकून है वो भी खोना पड़ता है। नौशाद के साथ यही हुआ। उन्होंने कई साल जी जान लगाकर मेहनत की। कहा जाता है कि काम पाने के लिए नौशाद एक मशहूर थिएटर कंपनी के सामने फुटपाथ पर सोया करते थे। फिर उन्हें उस्ताद झंडे खान के पास नौकरी मिली असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर की। तनख्वाह थी 40 रुपए महीना, उस दौर के हिसाब से काफी थी। इसके बाद उस्ताद मुश्ताक हुसैन और फिर खेमचंद प्रकाश के साथ भी उन्होंने काम किया। खेमचंद प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि नौशाद उन्हें अपना गुरु मानते थे और ताउम्र उन्हें हमेशा सम्मान देते रहे। दोस्तों, फिलहाल तो बहुत ही सम्मान के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गाना मैं आपकी तरफ भेज रही हूं। इसे पसंद करते हैं आप, मुझे मालूम है। सुनिएगा जरा। वैसे तो अक्सर रात में इस गाने को सुना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे गानों को आप कभी भी सुन सकते हैं।

0: कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चुनौतियां आती हैं जिनका वो सामना करते हैं वो आप पूछ सकते हैं, या हम बहुत सारी जानकारी लेकर रहे हैं आप उसे भी सुन सकते हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए, साझा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हाइड्रोपोनिक्स की बात है, और हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रो से ही थोड़ा जो हमें समझ में आता है वो पानी की बात होती है, तो लेकिन ये कृषि के अंदर ये जो हाइड्रोपोनिक्स है, इसे कैसे पौधे बनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
1: हाइड्रोपोनिक्स तकनीक एक आधुनिक तकनीक है जिसका बेसिकली अर्थ होता है मिट्टी रहित खेती।
0: जी।
1: तो मिट्टी के बगैर खेती कर सकते हैं इसमें, तो इसमें बहुत तरह तरह की इसमें खेती होती है। मिट्टी का जो सब्स्टिट्यूट है उसमें बहुत तरह तरह का मीडिया आ गया है, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, नारियल का भूसा है, इत्यादि का इस्तेमाल होता है। प्योर वाटर में जो ग्रो करने की तकनीक होती है इसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर और पोनिक्स मतलब टू ग्रो। तो प्योर वाटर में कैसे ग्रो करें, तो इसके लिए हम वाटर को फ्लो कराते हैं चैनल्स में, और इसमें इसको हम प्योर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। इसके और भी जो बहुत सारे प्रकार हैं जो कि हम कार्यक्रम में अपने बात करेंगे, लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत ही उपयोगी है, इसलिए कि एक तो इसमें बहुत ही कम पानी का खर्चा होता है, क्योंकि जितने में जो पानी का जो खर्चा होता है वो वाष्पीकरण से होता है। इस पद्धति में वाष्पीकरण लगभग खत्म हो जाता है, तो इसलिए इस पद्धति की जो सिंचाई दक्षता है वो लगभग 100% होती है, तो पानी की काफी बचत होती है। और इस पद्धति द्वारा खास करके बड़े शहर के आसपास में, चाहे आप अपने बालकोनी में कर रहे हो, रूफ टॉप पर कर रहे हो, आप अपने ड्राइंग रूम में भी खेती कर सकते हैं। इस तकनीक का यह फायदा है, खास करके बड़े शहरों में जगह नहीं है, कम सीमित जगह में एक आम आदमी कैसे खेती करे, तो उसकी एक हाइड्रोपोनिक्स बहुत ही सटीक तकनीक है।
0: जी, और साथ ही आपको बता दें कि आप इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं। अगर इस आज के विषय से जुड़ा कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप कार्यक्रम सुनना लेकिन प्रश्न सिर्फ इस विषय से जुड़ा हुआ ही करना। नंबर नोट कर सकते हैं आप, 01 दिल्ली का सिटी कोड, इसके बाद नंबर डायल करें 2342108। एक और फोन नंबर आपके लिए उपलब्ध है 2342108। सर, आपने जैसे कहा कि हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना मिट्टी के खेती जो की जाती है, अभी परंपरागत रूप से देखें तो भाई खेत ध्यान में आते हैं, मिट्टी होती है, उसको ठीक करना होता है सब कुछ, लेकिन पानी के माध्यम से खेती, अभी क्या ये चीज पिछले कुछ समय से कहीं देखी जा रही कि चलन में है, इसकी जो इसका रिजल्ट है वो कैसा देखने में आ रहा है?
1: जैसा कि मैंने कहा कि एक आधुनिक पद्धति है और इसके ऊपर काम भारत सरकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सभी इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी इसमें काम हो रहा है इसके ऊपर। और चूंकि जैसा मैंने बताया कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत उपयोगी है इसके लिए, कि शहरीकरण बढ़ रहा है और जगह नहीं है, तो ऐसे में हर आदमी चाहता है खास करके कि हम अपने घर में कुछ ग्रो करें। तो अगर आप अपने घर में, अगर आप किसी गमले में मिट्टी में कुछ ग्रो करते हैं तो उसका काफी लोड होता है, तो वो मकान के लिए आपका लाइव लोड, डेड लोड को बढ़ा देता है। तो आपको एक आम सिटीजन को ग्रो करने के लिए एक ऐसा माध्यम जो होता है जिसमें कि कम पानी खर्चा, हर आदमी चाहता है पानी ज्यादा खर्चा नहीं हो और उसका लोड भी असर नहीं हो, तो उसके लिए जो तकनीक होती है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं।
0: लेकिन सर, इसे हम किचन गार्डनिंग तो नहीं कहेंगे? अगर हम व्यावसायिक तौर पर देखें तो इसके क्या है कि देखा जा रहा है व्यावसायिक तौर पर इसको कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, व्यावसायिक तौर पर एक आम आदमी अगर करना चाहे, जिसके पास अगर किचन गार्डन है, किचन गार्डन में भी इसके छोटे छोटे मॉडल्स लगाए जाते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं वो किस तरह से करते हैं आपको बताते हैं। किसान भाई हमारे देश में एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड खेती, से हम संरक्षित खेती कहते हैं, जिस खेती के तहत किसान भाई बहुत तरह के प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रीन हाउस, नेट हाउस, शेड नेट इत्यादि लगा कर करके इसमें उद्यानिक फसलों का ग्रो करते हैं। ये बहुत ही प्रचलित पद्धति पिछले 10 सालों से करीब चला आ रहा है। इसी पद्धति, उसी जो सेम स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में किसान भाई अब मिट्टी रहित खेती, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स हो, चाहे वो एरोपोनिक्स हो, एक्वापोनिक्स हो, सब करने लगे हैं और किसान काफी अच्छे करने लगे हैं। बहुत सारी सरकार की स्कीमें इसमें आ गई है और हम लोग काफी ऊपर इसके ऊपर शोध करने के अलावा आजकल हम इसके ऊपर प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ये सारी तकनीक अवेलेबल है। और जैसा मैंने कहा कि कॉमर्स, आपने बताया कॉमर्शियल स्तर पर भी अगर कोई किसान इसे करना चाहे तो उसके लिए उपलब्ध है। और भी कोई आम आदमी अगर इसको कॉमर्शियल स्तर पर करना चाहे तो कॉमर्शियल स्तर पर इसको करने के लिए किसी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसे हम ग्रीन हाउस नेट हाउस कहते हैं। अगर कोई आम आदमी अपने घर में करना चाहे तो उसके लिए

0: स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो आपने बालकोनी में, छत पे, किचन गार्डन में या टोटली इंडोर कंडीशन में हाइड्रोपोनिक्स के बहुत सारे मॉडल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उसको लगा करके इसमें खेती कर सकते हैं।
1: डॉक्टर मुर्तजा, ये एक बड़ा अहम सवाल कि आपने कहा कि हम इसको नए तरीके से कर सकते हैं, तो पहली बात तो कि शौकिया तौर पर हम इसमें क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, और जब अगर हम व्यावसायिक तरीके से बात करें, जो ट्रेडिशनल की बड़े लेवल पे बात करनी है, तो क्या क्या चीजें हम उगा सकते हैं? सब कुछ उगा सकते हैं, कुछ विशेष चीजें हैं दोनों तरह में, शौकिया तौर पर और व्यावसायिक तौर पर?
0: देखिए, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक जब आप बेसिक मॉडल बना लेते हैं तो उस मॉडल में आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो राइस, वीट हो, कुछ भी हो आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन शोध के द्वारा हम लोगों ने पाया गया है कि खास करके उद्यानिक फसलें, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां हैं, टमाटर है, खीरा है जो कि आम आदमी अपने घर में इस्तेमाल करता है, मिर्ची है, ये जो उद्यानिक फसलें हैं जो कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है आदमी के स्वास्थ्य के लिए और हम लोगों सभी के लिए, उद्यानिक फसलें खास करके हाइड्रोपोनिक्स पद्धति में बहुत अच्छे से उगाई जा सकती
2: है। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी कि हाइड्रोपोनिक्स जो फसलें जो हम इसका यूज करना शुरू करते हैं विधि का, तो पानी की खपत कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स तो अपने आप में लगता है कि पानी से ही खेती हो रही है, तो ये दोनों जो कहें कि इनमें बिल्कुल अपोजिट बातें चल रही, तो ये कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको?
0: जी, अगर प्योर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती है तो उसमें हम एक विभिन्न प्रकार के चैनलों द्वारा एक प्रेशर क्रिएट करके पानी का फ्लो कराते हैं और इसी जगह जगह पर उसमें पौधे को एंकर करके ग्रो करते हैं। तो एक बार तो पानी को, उस पौधे को चलने के लिए, करने के लिए वो पानी का फ्लो चाहिए, लेकिन इस पद्धति में जो पानी की खपत होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि इस पद्धति में जो वाष्पीकरण है, एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन है, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो एक बार हम लोगों ने पाया कि 100 प्लांट्स का हमारा एक मॉडल होता है और अगर हम एक 100 लीटर का टैंक उसमें लगा देते हैं अपने उसमें हाइड्रोपोनिक्स करने के लिए, तो वो कभी कभी 3 से 4 महीने भी आराम से चल जाता है। तो आप सोचिए कि आप कितने कम पानी में आप काफी अधिक फसलों का इस्तेमाल ले सकते हैं। तो ये इस तरह का मॉडल खास करके बड़े शहरों में जहां के पानी पर काफी प्रेशर है और एक फैमिली ग्रो करना चाहती है, तो उस तरह का मॉडल हम लोगों ने बनाया है, फैमिली हाइड्रोपोनिक्स किट टाइप का, कि उसमें आप 100 प्लांट्स ले लीजिए, अलग अलग प्लांट्स आप ले सकते हैं, आप मिर्ची ग्रो कर सकते हैं, सलाद का पत्ता ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, और भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो लेकर करके बहुत ही कम पानी में इस तकनीक के द्वारा एक आम आदमी इसमें से हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो कर सकता है।
1: और यदि हम व्यावसायिक तौर पर बात करें, अगर लार्ज कमर्शियल लेवल पे करना है तो क्या उगाना चाहिए, क्या फायदेमंद है?
0: व्यावसायिक तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि किसान भाई हमारे संरक्षित खेती कर रहे हैं, संरक्षित खेती में किसान भाई अगेन ज्यादातर उद्यानिक फसलें लेते हैं, उसमें तरह तरह की सब्जियां हैं, फूल हैं, कुछ फल हैं और कुछ सीडलिंग्स पौध का होता है। इन सभियों का व्यावसायिक स्तर पर, बड़े स्तर पर उत्पादन में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पाया गया कि वो आजकल काफी अच्छी तकनीक है और इसे हमारे किसान भाई इसमें करना भी शुरू कर दिया है।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बात की थी कि अभी एक्वापोनिक्स भी एक इसकी तकनीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स जैसी कितनी और क्या क्या तकनीक है, इनको थोड़ा विस्तार से आप समझाएं ताकि हमारे किसान मित्र को ये भी समझ में आए कि किसको कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए।
0: जी, हाइड्रोपोनिक्स का एक और भी अर्थ होता है कि मिट्टी रहित खेती। अब मिट्टी के बगैर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एक चीज होता है सबसे पहला कि बहुत ज्यादा मिट्टी रहित माध्यम होता है, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, नारियल का भूसा है, इसे किसी भी गमला या कंटेनर में जब आप रख देते हैं तो आप इसमें कोई भी सीड उगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इस तरह का जो मटेरियल है ये बहुत लाइट वेट होता है, कोई लोड नहीं पड़ता, आप इसे अपने मकान के छत पर कहीं पर भी रख सकते हैं तो वो जो लोड होता है मकान पर वो नहीं आएगा। दूसरी, मैंने आपको प्योर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक बताया, इसकी और विकसित रूप है, एक रूप इसे हम बोलते हैं एरोपोनिक तकनीक, जिसमें हम लगभग हवा में पौध का ग्रो करते हैं। अब हवा में पौध कैसे ग्रो करें, उसके लिए हम एरोपोनिक्स चैम्बर बनाते हैं और उसमें ग्रो करते हैं। इसका एक और आधुनिक रूप है और यह बहुत ही सटीक है, इसको हम बोलते हैं एक्वापोनिक्स, जिसमें मछली और फसल जो सब्जी है इसका उत्पादन साथ साथ किया जाता है। तो जो भी ग्रोअर है, जो भी आम है, उसे दो चीज साथ मिल रहा है, उसे मछली भी मिल रही है और उसे एक सब्जी भी मिल रही है, तो दो चीज इकोनॉमी का सोर्स हो गया है। लेकिन इस तरह का कैसे ग्रो करना है, उसके लिए हमें एक एक्वापोनिक्स का मॉडल बनाना पड़ता है। लेकिन कंसेप्ट यह है कि हम उसमें फिश और पौध का उत्पादन साथ साथ करते हैं, और जो फिश का एक्सक्रीटा है उसको हम एज ए न्यूट्रिएंट प्लांट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने तरह तरह के मॉडल बनाए हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में काफी अच्छा काम हो रहा है और हम लोग के पास सारा मॉडल्स है, कोई भी आकर के इसको देख सकते हैं और उसमें उसके बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: डॉक्टर मुर्तजा, ये एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि जब हम ट्रेडिशनल खेती की बात करते हैं, जैसे जब पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो हम उर्वरकों को मिट्टी में डाल देते हैं, लेकिन जब यहां पानी में पौध लग रही है तो उसमें हम पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करते हैं, ये जिज्ञासा मेरे मन में।
0: ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि पौधों को पानी के अलावा पौधे का न्यूट्रिएंट चाहिए, उसमें मेजर न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये जितने भी मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसका सोर्स होता है वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स। ज्यादातर जो किसान हमारे उर्वरक इस्तेमाल करते हैं वाटर सोल्युबल होते हैं, चाहे वो यूरिया है और 1744 है, इसी तरह से SOP है, पोटेशियम सल्फेट है, ये जो किसान भाई हमारे इस्तेमाल, ये सभी पानी में घुलनशील है। तो इस सब खाद की नियंत्रित मात्रा हम उस टैंक में डाल देते हैं, वो पानी में घुल जाता है और उसे जो जिसे हम बोलते हैं फर्टिगेशन हो जाता है, पौधे को न्यूट्रिएंट भी मिल गया और पानी भी मिल गया। तो आपने कहा ये हमें बात ध्यान रखना है, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, उसमें समय समय पर पौधे के अनुसार हमें वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है। आजकल ऑर्गेनिक वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, प्योर ऑर्गेनिक वो नेचर है और केमिकल भी दोनों अवेलेबल है उसकी, लेकिन नियंत्रित मात्रा समय समय पर डालना है। अब एक दूसरा प्रश्न है कि कितनी मात्रा डाला जाए, तो हम लोगों ने उसका यूजर फ्रेंडली चार्ट बनाया हुआ है, उसको वो लगभग फ्री है डोमेन में, गूगल में अवेलेबल है। ये एक आम आदमी को पता हो कि उसे 100 लीटर टैंक में कितना चीज डालना है, तो उससे आपका काम।
1: जैसे हम पारंपरिक खेती में मिट्टी की जांच करते हैं, तो यहाँ क्या पानी की जांच करनी होगी?
0: जी जी जी, अगेन ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे जब हम इस तरह की खेती करते हैं तो इसमें कुछ चीज जरूरी होता है, जो पानी है इसमें न्यूट्रिएंट मिलाया गया, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी पीएच, इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी नियंत्रित मॉनिटरिंग जरूरत होती है। और ये बड़े आसान है, आजकल इसके उपकरण उपलब्ध है, एक आम आदमी भी इसे आराम से कर सकता है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि इस चीज की जरूरत, जैसे अभी आजकल है, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो आपके टैंक का तापमान अगर बहुत ज्यादा हो गया वाटर कटे में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसे हम बोरा से कवर कर देते हैं, थोड़ा सा जमीन के अंदर दबा देते हैं टैंक को। इसी तरह से जब बहुत अधिक ठंड हो गई तो हम अगेन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि पानी का टेम्परेचर सही लिमिट में हो। तो इस तरह का चीज, फिर पानी में लवण की मात्रा क्या है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच अगेन आपको बताता है। ये सब जैसे हम लोग अपने घर में जब आप आरओ लगाते हैं तो ये तीनों चीज जरूरत होती है, उसी तरह से यहां भी जरूरत होती है।
2: जी, और डॉक्टर साहब एक चीज है कि जब हम परंपरागत खेती कर रहे हैं मिट्टी के साथ कर रहे हैं, तो हमें लगभग पता चल चुका है ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं, इसमें क्या किस और विशेष तरह की चीजें हैं जिनकी हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, जिनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देती
0: है? जी, जैसे मैंने बताया, चूंकि ये एक आधुनिक तकनीक है, इसको लगाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, पहले उसे आप देखिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर सिस्टम कैसे रन किया जाता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट डालना है, कैसे मॉनिटरिंग करना है, ये एक आम आदमी कर सकता है आराम से। लेकिन इसके बारे में जैसा आपने कहा कि थोड़ी सी इसको देखना, इसकी जानकारी प्राप्त करना, ये थोड़ी सी जरूरत है।
2: जी, तो आज साथियों बात हो रही है कि किस तरह से हाइड्रोपोनिक्स विधि जो है इसके द्वारा हम पौध फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, क्या क्या तकनीक ऐसी हो सकती है जिससे बहुत फायदा हो सकता है, और एक अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर जो फसल है उसको लगाया जा सकता है पौध को, ताकि वो व्यावसायिक स्तर पर भी काम कर सके। आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं और कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी पहुंचाते हैं, कुछ कुछ नहीं सारी लगभग पहुंचाते, लेकिन एक चीज और आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो पूसा हमारा जो राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है, यहां पर समर वेजिटेबल फील्ड डे चल रहा है, जिसमें शाक के विज्ञान विभाग की तरफ से ये मनाया जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी, जो कि डायरेक्टर हैं IARI के, तो ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं, हमसे साझा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
3: समर वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर क्राप्स का ये फील्ड डे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें हमारा काफी वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स हैं, जन प्रोड्यूसर्स हैं, एंड हमारा साथी वैज्ञानिक हैं, इसके साथ साथ हमारा विद्यार्थी, सभी लोग हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अभी देख रहे हैं ये मस्कमिलन का जो क्रॉप है, जो प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन से कैसा है, दिस इज ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर फीट एरिया का है एंड हाउ टू इसका यूज है बेसिकली सीड प्रोडक्शन के लिए, लेकिन छोटे किसान कई गांव में भी इस तरफ का करके 365 डेज लगातार पूरे साल में इस तरफ का प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन कर सकता है। एंड सब्जी और फल ये भारत के लिए काफी मुख्य भूमिका है एंड आगे समय में और ज्यादा होगा।

0: का हमारा जो चावल हम लोग खा रहे हैं, जो गेहूं खा रहे हैं, तो काफी न्यूट्रिशन इश्यूज हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं बिकॉज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सभी ध्यान ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे आए। तो जब हॉर्टिकल्चर का डिमांड भी देखिए, जब भारत 2047 जो विकसित भारत का हमारा ये 100 ईयर्स का इंडियन इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेट करेंगे, आगे हम लोग डिमांड देखने से जो चावल का गेहूं का डिमांड जो अभी इस वक्त हम लोग ले रहे हैं उसके इतना ज्यादा वृद्धि करने के लिए जरूरत नहीं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। लेकिन सब्जी आप लोग देखने से 3 गुना अभी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, 350 मिलियन टन प्रोडक्शन है सब्जी फुल। लेकिन हमारा भारत का रिक्वायरमेंट है कम से कम 1000 मिलियन टन, 3 गुना जरूरत है। तो भारत अभी काफी फूड प्रोडक्शन है, फूड सिक्योरिटी हम लोग हासिल किया, लेकिन अभी न्यूट्रिशन के बारे में जाना चाहिए। तो इस मामले में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फ्रूट्स हैं, ये सब्जी है, देन फल भी है एंड फ्लावर, सभी का हम लोग आगे लेके जाना चाहिए। देन इसकी तरफ से हम लोग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है। तो आज समर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का इसलिए फील्ड डे कर रहे हैं। भारत में अभी भी 40% 50% सूखी खेत है, एक ही क्रॉप करते हैं एंड बाकी टाइम में क्या करेंगे। तो अगर सरकारी सपोर्ट भी सिस्टम है, ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए भारत सरकार बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मिट्टी का ताकत बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ड्रिप इरिगेशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बिंदु सेजन के लिए कर रहे हैं, सभी का जब सरकारी स्कीम्स हैं इतना है वो यूज करके मुख्य रूप में युवा करके ये कोई भी छोटा एरिया में 365 डेज लगा पूरी साल में सब्जी बढ़ाने के लिए ये इस फैसिलिटी में हम लोग इधर प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये तो मस्क मिलन का है एंड अभी बगल में देखा था चेरी टमाटो एंड टमाटो, इसके बाद करेला अलग अलग सब्जी भी दिखाएंगे। मुख्य उद्देश्य यही है सब स्टेक होल्डर्स को कुछ लेके हाउ ये फैसिलिटीज उनको दिखाए। उसके साथ साथ हमारा IRI पूसा संस्थान में अच्छा अच्छा वेराइटीज हैं, हाइब्रिड्स हैं, उनको आगे लेके जाना, देन सब्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसके एक एक पौधा में हम लोग देखा है उधर टमाटर में एक पौधा में कम से कम 20 किलो टमाटर हार्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरफ का आगे प्रोडक्टिविटी एक एक प्लांट के लिए भी ज्यादा बढ़ाइए, देन क्वालिटी भी बढ़ाइए, देन पूरा डोमेस्टिक मार्केट भी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम किसान के लिए ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये फ्रेश टमाटर फ्रेश ये एक्सपोर्ट के अलावा इसको वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, अचार कैसे बनाना चाहिए, ये तो जूस कैसे बनाना चाहिए, वैल्यू एडिशन करके जो एक्सपोर्ट है डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है विदेश में भेजने के लिए ये भी साथ साथ होना चाहिए प्रोडक्शन के साथ। धन्यवाद।
1: साथियों भी आपने सुना डायरेक्टर AIARI के CEO डॉक्टर CEO श्रीनिवास राव जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से शाकीय विज्ञान विभाग में जो फील्ड समर वेजिटेबल फील्ड डे मनाया जा रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया क्या कुछ हो रहा है वहाँ। ऐसी कई चीजें जो हैं वहाँ होती रहती हैं, जो निरंतर हमारे वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च करते रहते हैं किस तरह से जो हमारी जनता है, हम जनता है, हम तक एक अच्छी उत्पादक गुणवत्ता की चीजें पहुंची रहे और हमारे किसान मित्रों को भी सुविधा होती रहे। वापस आते हैं अपने कार्यक्रम किसान की बात में, जो टॉपिक चल रहा है हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा पौध फसलों का उत्पादन। साथियों अगर आप भी कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01, दिल्ली का स्टेटी कोड है 2342108, एक फोन नंबर है, एक और फोन नंबर है 2342108।
2: तो इन फोन नंबर्स पे आप जो भी आपकी जिज्ञासा इस विषय से जुड़ी वो पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे कि हम बात कर रहे थे हाइड्रोपोनिक्स की, तो क्योंकि नई टेक्निक है, नई चीजें हैं, तो इसके बारे में हमें कहीं से प्रशिक्षण भी मिलता है कि लोग उसको उस टेक्निक को अच्छे से सीख जाएं और फिर उसको अडॉप्ट कर पाएं।
3: जी, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में हम लोग इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड। निरंतरन आज भी हमारे पास करीब 100 से ज्यादा स्कूल बच्चे उसे देखने के लिए आए थे। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने CBSE के टीचरों के लिए, दिल्ली के जितनी भी स्कूल के टीचरों के लिए स्पेशली हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर भी और एग्रीकल्चर के ऊपर वर्कशॉप किया था और हम इसके ऊपर स्किल डेवलप

0: कोर्स वगैरह भी कर रहे हैं, जिसकी की पूरा अनाउंसमेंट भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के वेबसाइट में आता रहता है। तो कोई भी आदमी इसे मॉडल को देखना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है, इसके लिए हमें चाहे वो आ सकते हैं आकर के पूसा संस्थान में आकर अभी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी सर, का कोई फोन नंबर आप बताना चाहें?
0: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वेबसाइट में अगर आप जाइएगा तो आपको बहुत सारे फोन नंबर, ईमेल सभी कुछ मिल जाएगा और उसके द्वारा आप तक हमारे पास पहुंच सकते हैं।
1: जी, और इसी बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनसे भी बात हम कर लेते हैं। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून मैम।
1: जी गुड आफ्टरनून सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
1: जी फहीम जी,
2: जी मैं आज मेरा सवाल कोई नहीं है क्योंकि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी हमारे सभी सवालों के जवाब दिए हैं जब हम प्रोग्राम सुन रहे थे। क्योंकि डॉक्टर साहब को मैं आज अपना तरीका बताता हूँ। जैसे हम सब्जियाँ यहाँ पे उगाते हैं, मैं अभी डल झील के अंदर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे एक फ्लोटिंग लैंड नाम की एक जमीन है, वो चलती रहती है, उसमें ज्यादातर 85% ग्रास रूट रहते हैं। उसी के ऊपर हम ये पानी के अंदर जो एल्गी है उसको निकाल के रखते हैं, उन्हीं के ऊपर वो सब्जियां लगाते हैं जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे टमाटर, खीरा, कद्दू है। तो ये हमारा एक तरीका है सब्जियां उगाने का। डॉक्टर साहब अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत शुक्रगुजार रहेंगे उनको।
0: फ्लोटिंग लैंड, यस यस फहीम, धन्यवाद फहीम सर। ये भी जो आप कर रहे हैं ये भी एक तरह का हाइड्रोपोनिक्स तकनीक ही है। आप ये है कि आप इसे एक अपने बोट में या एक अपने ऐसे जगह पर कर रहे हैं जहां पर, जी तो जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी जो आप मिट्टी का जो सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, और एक आम आदमी चाहे वो उसको अपने घर के ऊपर देख रहा है, एक डल झील का ग्रोअर को के पास जगह नहीं है तो उसके पास कोई उसके आइसोलेटेड प्लेस मिल गया, अब वो किस तरह से कर रहे हैं, ये तकनीक थोड़ी अलग अलग है। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक एक फ्लेक्सिबल तकनीक है। पर्पस ये है कि एक आम आदमी को समझना है कि मिट्टी के बगैर भी खेती किया जा सकता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है उसमें कहीं पर मिट्टी नहीं आती है। पौधे को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? पौधे को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए, ठीक है, और पौधे को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें पौधे ग्रो हो जाता है। तो ये चीज आप जैसे भी जहां भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसे हम पौधे ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। इससे एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि जिस जो जगह होती है वहां पे जैसा परिवेश होता है, जैसी सुविधाएं होती हैं, उसके हिसाब से लोग ढल भी जाते हैं, करने भी लगते हैं। शायद उन्हें तकनीक का नाम ना भी पता हो लेकिन परंपरागत रूप से उनके यहाँ पे चलती आ रही होती हैं चीजें, तो उस चीज का बेशक नाम वो कुछ और रख देते हैं लेकिन चीजें खेती में उसमें चल रही होती हैं सारी।
0: जी जैसे मैंने बताया कि खेती हाइड्रोपोनिक्स तकनीक भी की, इसका नाम नया है लेकिन ये सदियों से होता आ रहा है, हमारे देश में भी सदियों से होता आ रहा है। और बहुत सारे जैसे बेबीलोन का जो गार्डन है, वर्टिकल गार्डन, वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था, तो वो काफी पुराना है वो चीज। तो या जैसा आपने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है और मॉडर्न आजकल के हिसाब से जो क्या चाहिए उसके हिसाब से इसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक काफी पॉपुलर है। जैसे मैंने बार बार बताया कि आजकल जगह कम हो गया है, हर आदमी चाहते हैं कि अपने कम से कम जगह में कुछ ग्रो करें, तो उसके लिए ये तकनीक एक आपको एक सारा चीज प्रोवाइड करता है कि आप एक आम आदमी इसको अडॉप्ट कर सके, इसे इसमें कुछ चीज फसलें, खास करके उद्यानिक फसलों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब एक सवाल, जो अभी आपने एक वर्ड यूज किया वर्टिकल, कि जैसे हॉरिजेंटल में जब हम मिट्टी की परंपरागत खेती करते हैं हॉरिजेंटल स्पेस चाहिए होता है, यहाँ पे अगर आपके पास वर्टिकल स्पेस है तो भी संभावनाएं हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक नई तकनीक है जिसे हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। वर्टिकल फार्मिंग टोटली हाइड्रोपोनिक्स पर बेस्ड है, क्योंकि उसमें आपको लेयर बाय लेयर खेती करना है, उस लेयर बाय लेयर में आप मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग वर्टिकल फार्मिंग का भी बहुत सारा मॉडल बनाए हुए हैं जो कि प्योर हाइड्रोपोनिक्स पर है या मीडिया रहित खेती पर है, तो उसमें भी इसका बहुत ही है कि उसमें क्या आप आजकल स्पेस कम है तो आप वर्टिकल स्पेस को इस्तेमाल कर करके कम से कम जगह में ज्यादा ज्यादा फसलें ले सकते हैं। यहां पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का एक विशेष रोल होता है।
1: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और है कि कोई भी चीज हम करते हैं तो अगर कुछ नया शुरू करना होता है सबसे पहले अनुमान लगाने लग जाते हैं कितना खर्चा आ जाएगा, तो अगर किसी को देखे हम किचन गार्डनिंग के तौर पर व्यवसायिक स्तर पर भी शहरी क्षेत्रों में या हमारे किसान करना चाहते हैं तो कितना अनुमानित खर्चा लग सकता है?
0: जी, एक हम लोगों ने पूसा में एक हाइड्रोपोनिक्स होम किट बनाया है जिसमें 100 प्लांट का मॉडल है। ये 100 प्लांट का मॉडल है, वाटर टैंक है, इसमें सारे कुछ चीज है। ये मॉडल लगभग 25,000 से 30,000 रुपये में का एक खर्चा आया था, एक एक पूरे परिवार के लिए है। तो इसमें वन टाइम कॉस्ट है और ये काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल। दूसरा है, जब हमारे

0: किसान व्यवसायिक स्तर पर इसे करते हैं तो इसमें खर्चा होता है, तो किसान के पास जैसे मैंने बताया इसको करने के लिए एक ग्रीन हाउस चाहिए और उसके अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इन सभी में किसानों को मदद करने के लिए आजकल भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसी तरह से उद्यानिक मिशन सब है और भी बहुत सारे मिशन हैं जहां पर कि वर्टिकल फार्मिंग हाइड्रोपोनिक बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है कि किसान भाई इसे कैसे अडॉप्ट कर सके। तो इसमें तो इनिशियली लागत लगता है लेकिन ये काफी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे।
1: जी बिल्कुल सर, हमने बहुत सारे फायदों की बात कर ली, बहुत चीजों की बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो बहुत चुनौतियों का सामना जब हमारे किसानों को करना पड़ सकता है या जो भी इस तकनीक को अपना रहे हैं, तो ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर वो इस खेती को शुरू करें, ताकि उसका भी उनको थोड़ा सा दिमाग में रहे कि ये भी हमें देखना है।
0: जी जी जी, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा प्रशिक्षण मॉडल के बारे में जानकारी, और इसमें दो तीन चीज होती है, खास करके जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है, किस न्यूट्रिएंट को किस समय डालना है, तो इसकी जानकारी थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करना थोड़ा जरूरी होती है।
2: जी जी, जी। और एक चलते चलते छोटा सा सवाल संक्षेप में आंसर चाहिएगा, जैसे हम बाकी चीजों में जो तोड़ते वक्त की किस तरह से जब उत्पादन हो जो फल लगे तो उसको किस तरह से तोड़ाई करनी है, तो यहाँ पे भी कुछ विशेष हिदायतें देना चाहेंगे आप?
0: नहीं, इसमें जो हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक वो बहुत ही सरल है, क्योंकि एक आम आदमी बिल्कुल इसे अडॉप्ट कर सकता है आराम से, वो बहुत ही सरल तकनीक है इस हिसाब से।
1: जी जी, तो इन तकनीकों के बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं, एक बार पूसा से आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, वेबसाइट पे आप जरूर सर्च कीजिएगा। फिलहाल आज का कार्यक्रम किसान की बात यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है, हाइड्रोपोनिक्स विधि इसको जरूर अपनाइएगा, हमारे किसान मित्रों से हम यही कहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मुर्तजा हसन जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
0: धन्यवाद।
1: साथ ही आपसे फिर मिलेंगे, फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती,
2: और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए,
1: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री

कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। तमिलनाडु में टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी नेता जोसेफ विजय ने द्रविड़ राजनीति के संस्थापक सीएन अन्नादुरई को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवनिर्वाचित टीवीके विधायक चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय को अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए एकत्रित हुए। पार्टी राज्यपाल से संपर्क कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रही है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने कैरिबियाई सागर में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक और संदिग्ध नौका को निशाना बनाया है, जिसमें 2 लोग मारे गए। अमरीकी प्रशासन ने पिछले वर्ष सितंबर में अभियान शुरू किया था, जिसके तहत लैटिन अमरीकी जलमार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी वाले संदिग्ध जहाजों को लगातार निशाना बनाया गया। इसमें कुल 188 लोग मारे जा चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में आज तेज बारिश होगी। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कल तक और गुजरात क्षेत्र, गोवा तथा कोंकण में शुक्रवार तक गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है, जिससे टूर्नामेंट में उसकी उम्मीदें बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बारिश की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है। बारिश की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है। जिंदगी की बारिश में हर पल निखरना भी जरूरी है। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां ये समय है मन भावन का। मन भावन यानी वो प्रोग्राम जिसमें हम आप ही की पसंद के गीत, आपकी फेवरेट गीत आपको सुनवाते हैं अब से लेकर 4 बजे तक। तो अभी तो शुरुआत है और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट के गाने हमें लिखकर भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, और उन्हें हम जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे, उन रिक्वेस्ट को, यानी कि आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाएंगे एफएम गोल्ड के जरिए। तो हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। जब तक आप हमें करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी और ऐसे करते करते 100 ईमेल, मैं आपको सुनवाती हूं जवानी दीवानी से किशोर कुमार की आवाज में ये गाना।

बहुत सारी ईमेल्स आपके हमें मिल गए हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने पसंदीदा गाने की। तो पहली ईमेल माहिरा मलिक की आई है, आप कनॉट प्लेस से प्रोग्राम सुन रही हैं। आपके साथ हैं हीबा, आयशा, जोया, जैनब और मरियम। आप कोई भी गीत सुनना चाहती हैं हमारी पसंद का, आर्यन वर्मा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ये प्रोग्राम में, इस गाने की फरमाइश हमें भेजते हैं सनावत मध्य प्रदेश से। आपके साथ हैं अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।

भी आपके साथ हैं। अनिल मोहन का मैसेज हमें मिलता है, नमस्कार जी लिखकर भेजते हैं आप, और आप कह रहे हैं हमारे यहां से धीमी गति से बारिश का आगमन हो गया है। बिल्कुल, हमारे यहां भी मौसम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मौसम बना हुआ है बारिश का, बिल्कुल सही ये लाइन जो है आज फिट होती है। अगर मैं स्टूडियो से बाहर देखती हूं, बिल्कुल मौसम बना हुआ है, और वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके यहां बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो खूबसूरत है ये मौसम। आप उषा मोहन और टिल्लू नायक के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। कैथल हरियाणा से मधु नायक भी आपके साथ है। बोधराज खोरवाल का भी मैसेज हमें मिलता है, साधना गोयल रजनीकंदा फिल्म से एक गाना सुनना चाहती हैं श्रीपाल गोयल के साथ, और बहादुरगढ़ से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें संदीप मकड़ का मिलता है, संदीप ज्योति मन्नत भरत कमल साहनी के साथ हमें मैसेज करते हैं जालंधर से, और दुलारी फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। यूनिस खत्री भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपके साथ हैं शबनम अकरम तबरेज, सच्चा झूठा फिल्म से आपने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है, और मोहम्मद सईद अब्बासी भी आ गए हैं अपनी ईमेल के साथ। आशा फिल्म से आप उसका टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं, बुलंदशहर से आपके साथ हैं निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और आपके परिवार के सभी सदस्य। मोहम्मद कमर का मैसेज हमें मिलता है, आप गुन्नौर से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, आप सब भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। और अनूप कौर का भी मैसेज आता है, सरोज बंसल के साथ आप गुरुग्राम से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अगर आर्यन वर्मा के मैसेजेस से मैं आगे बढ़ पाऊं तो मैं कुछ मैसेज पढ़ती हूं, क्योंकि आर्यन आपने हमें लगभग आप अगर कहें कि ईमेल का एक पेज जो हमारे सामने खुला होता है उसमें 90% मैसेजेस आपके हैं और बाकी 10% और लिसनर्स के हैं। तो अगला मैसेज हमारे पास बोधराज खोरवाल का आता है, और आप दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ डॉन फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं लता जी और किशोर कुमार की आवाज में। मैं अब तक वो गाना पहुंचा रही हूं, खूबसूरत ये गाना और खूबसूरत मौसम आप सबके यहां भी हो रहा है जैसे आपकी ईमेल मुझे बता रही है। तो गाने और मौसम का साथ हो तो बस मुझे लगता है कि चाय का टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी जल्दी चाय पी जा सकती है क्योंकि मौसम जो सुहाना हो गया है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन भावन सुन रहे हैं आप अपराजिता के साथ आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं बता दूं कि ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldaiadelhi@gmail.com पर और हम आपकी पसंद के आपके फेवरेट गाने यहां आपको सुनवा रहे हैं। तो जान लेते हैं कि अगला मैसेज किसका है, किसकी पसंद होने वाली है अब पूरी। तो बहुत सारे मैसेजेस

हमारे पास, जैसा कि आप पहले से भी इस बात को मानते आए हैं कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अब इसी तरीके से हरजिंदर सिंह भाटिया ने भी हमें बहुत सारे मैसेजेस एक साथ भेज दिए हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप एक या दो मैसेज भेजें। इससे ज्यादा मैसेजेस भेजेंगे तो दिखता तो है, लेकिन हो सकता है कि आप जब इतना बल्क में मैसेज भेजेंगे तो बाकी मैसेजेस छुप जाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैसेज लिया जाएगा, है ना। अल्तमश खत्री ने हमें संदेश लिखकर भेजा है, राजा और रंग से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। खंडवा से आप हमारे साथ हैं, आपके साथ है समीना, मुदस्सिर और फिरदौस। किशोर गुप्ता का मैसेज हमें मिलता है, आई मिलन की बेला फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं साधना रानी के साथ, और अमरावती से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। गिरीश बम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, हीरा पन्ना फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ हैं वैशाली, मुकुंद बम और जी लता और किशोर की आवाज में गाना है ये आप बताते हैं। और आप वडोदरा से हमारे साथ हैं, जय का हमें मैसेज मिलता है होली चौक उत्तम नगर से, जयराम खोरवाल, सचिन, अमन खोरवाल, दीपांशु और फिल्म रफू चक्कर आप उसका एक गाना सुनना चाहते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया का मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ है एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। अगला मैसेज हमें आया है दिग्दर्शन गौर का, और आपने भी हमें कई सारी रिक्वेस्ट लिखकर भेजी हैं। आप कहते हैं या तो ये वाला गाना सुना दें हम आपको या वो वाला गाना सुना दें, ऐसे आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेज दी हैं। और इसके बाद हमें तुलसी मस्कीन का मैसेज मिलता है, आप गाइड फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ हैं वीना मस्कीन, और आप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से हमारे साथ हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगला जो गाना है वो किसकी पसंद का है, तो सरगम फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट आई है पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग, आप सब डफली वाले ये खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं। लता जी और रफी साहब की आवाजें आप इसमें सुन पाएंगे, तो ये प्यारा सा गाना हमारे सभी सुनने वालों के लिए।

तो अगला मैसेज किसका आता है हमारे पास, ये जान लेते हैं। और अगले मैसेज भेजने वाले हैं कौशल्या देवांगन, और बड़ा ही कलरफुल मैसेज आपने हमें लिख भेजा है। और कारवां फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं रोशन लाल देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन के साथ। अगला मैसेज जगन्नाथ पटेल का है और आप मोरटका माफी जिला खंडवा से हमारे साथ हैं। आपके साथ हैं कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। और आप हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। ताज मोहम्मद भी प्रोग्राम सुन रहे हैं लक्षर हरिद्वार से। आपके साथ है गुलाम साबिर राही मेराज जहां। और इसके बाद पुनाजी नवांकर क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। एक नजर फिल्म से आप पत्ता पत्ता बूटा बूटा सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र से। आपके साथ है निर्मला नवांकर, विशाल मलकापुर से, नारायण इंगले, मंगला, आशीष मुर्रेकर। तो आप सभी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं ऐसा आपकी ईमेल बताती है। मोयासिन हाशमी का भी मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ हैं नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी और कलीम अंसारी। और आप भी हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। अशोक डाले प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपके साथ हैं सविता, अनिकेत, रोहिणी दले, ऋषिकेश, जीविका पुनावले, अजय सोनवने और करिश्मा सोनवने और अविका भी हैं आपके साथ। प्रेम भरा नमस्कार आप भेजते हैं हमें और प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। स्वर्ण सिंह का भी मैसेज आया है, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज के साथ। आप लोहगढ़ ठाकुरावाला से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इशाक मोहम्मद जो हैं वो दाग फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ छत्तीसगढ़ से हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा। और छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसैया फातिमा का भी ईमेल में नाम है। संदीप सिंह का मैसेज हमें मिलता है और आप चूरू राजस्थान से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आपके साथ हैं प्राची सोनगरा, सोमल कार्तिक और मिलोसुर बिकान से अंबिका भाटी, नयागली राजगढ़ से संदीप स्वामी और सचिन चौहान, प्रकाश जी राणा और शिव धोरा रतनगढ़ से। तो भाई बहुत सारे नाम एक ही ईमेल में। अगला जो गाना है वो मेला फिल्म से है, इसे मेरठ से सुनना चाहते हैं दिग्दर्शन गौर, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। रफी साहब जी, रफी साहब तो हैं ही इस गाने में, रफी साहब के साथ लता जी भी हैं, तो इस गाने को एंजॉय करते हैं।

बहुत सारी आपकी ईमेल्स हमारे पास अभी बाकी हैं और समय भी है, लगभग 13 मिनट, तो सुनवा सकते हैं आपको हम अच्छे से कुछ गाने जो आपने हमें रिक्वेस्ट में लिखकर भेजे हैं। जान लेते हैं कि किस किस ने क्या डिमांड किया है, यानी कि कौन सी रिक्वेस्ट लिखकर भेजी है। तो मनमौजी फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल सिक्का, नानू और भाविक सिक्का। हरजिंदर शिंडा भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आप पंजाब से हमारे साथ हैं, आपके साथ है जसवीर, जसी, सीता और गीता, और खुश रहो खुशियां बांटो ऐसा आपने लिखकर भेजा और हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज आपका, छोटा क्रिस्प और एक जो है मोटिवेशनल भी। मोहम्मद यूनिस खत्री प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सादिक आयूब खत्री और यूसुफ खत्री के साथ खंडवा से, और आपके साथ आप हमें कहते हैं कि किशोर कुमार का गाना आप सुनना चाहते हैं। सतीश और बिमला अनेजा का भी मैसेज हमें मिला है, और आपके साथ निखिल, बबीता बोट, सीताराम कांगड़ा और तन्वी बोट भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, ज्वार भाटा फिल्म से ये गाना आप सबके लिए।

तो बिगला है, बना लेंगे। वो तो लोता है, हंसा लेंगे।

प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं लाजवंती फिल्म से एक बड़ा ही प्यारा सा गाना। आशा जी की आवाज में कोई आया धड़कन कहती है, तो आपकी ही पसंद का अगला गाना होगा। कुछ और नाम हमारे दोस्तों के हम शामिल कर लेते हैं और फिर ये गाना आपको सुनवाएंगे। साहिल धर प्रोग्राम को सुन रहे हैं कश्मीर से, और आपके साथ है उर्फी जान, यूसरा जान, इम्तियाज, मुस्ताक दार, और आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। नवी हसन का मैसेज हमें मिलता है, बहुत सारे गुलाब वाले इमोजीज आपने हमें एटा से ईमेल की है उसमें बनाकर भेजे हैं। नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ, और बहुत खूबसूरत सा ईमेल बन गया है रंग बिरंगा। स्वर्ण सिंह का मैसेज हमें मिलता है, आपके साथ दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। भारत भूषण प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपके साथ है अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु, संस्कृति पौरुष, और आप साथी फिल्म से बेंगलुरु से इस गाने की फरमाइश लिखकर भेजते हैं, और आपकी भी ईमेल उतनी ही खूबसूरत है जितनी अभी हमने एक और श्रोता की बात की। खूबसूरत आपने जो है गुलाब हमें भेजे हैं, उन्होंने लाल भेजे थे, आपने गुलाबी भेजे हैं। अल्तमश खत्री प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपके साथ खंडवा से हैं उजैफ लाला, और राशिद हुसैन अंसारी का भी ईमेल हमें मिला है, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी के साथ। कुरावली से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं,

सुमेरा परवीन है हमारे साथ और आपने हमें संदेश लिखा है बुलंदशहर से। साथ ही राजकुमार डूडी का भी मैसेज हमें मिलता है गांव फ्रांसी से और आपके साथ है प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आप कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। डीकेपी परिहार का मैसेज हमें मिलता है यानी कि धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान छीपा। आपके साथ पूजा परिहार भी हैं और आप राजस्थान से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। बहुत बड़ा आपने जो है ईमेल लिखा है, बस मैं जो जल्दी से पढ़ सकती हूं वो ये है कि नाराजगी मिलती है, यानी कि एक घंटे का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है आखिर में नाराजगी मिलती है। तो आप कहना चाहते हैं, आपने मैसेज भेजा, आपका मैसेज शामिल नहीं हुआ, लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूं कि अब आपका मैसेज शामिल हो गया है, तो आप नाराज ना रहें और खुशी खुशी जो है इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। बिल्कुल। सुधाकर जाधव का भी हमें मैसेज मिलता है जाफराबाद से। आपके साथ हैं प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित और प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख। आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और किशोरदा की आवाज में गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमें फैज अहमद खत्री का मिलता है। आप गायत्री कॉलोनी खंडवा से हमारे साथ हैं और आपके साथ अफसाना हुरैन फातिमा भी हैं। और उमेश कुमार साहब हमें क्या कहते हैं, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सुनीत कुमार के साथ आप ख्याला से हमें मैसेज भेजते हैं और आप फिल्म 10 लाख का ये गाना सुना दो। आपको इस गाने की आपने रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। और अगला ईमेल जो आता है वो राम शरण विश्वकर्मा का है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, इस फिल्म से आप ये गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ है मंजू, रंजना, बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा और सुन साहिबा सुन, इस गाने को आप सुनना चाहते हैं। फिलहाल मैं लाजवंती से आपको गाना सुनवा रही हूं जिसकी मैंने जो है बात की थी और बताया भी था कौन कौन इस गाने को सुनना चाहता है। वैसे हम सब इस गाने को सुनेंगे, बहुत ही प्यारा गाना है आशा जी की आवाज में।

जी, अगले जो मैसेजेस आए हैं वैसे तो बहुत सारे आ गए हैं। मैं ये बता दूं कि अगला जो गाना मैं आपको सुनवा रही हूं वो है जॉन पर्ल विलिस और रोजी डिकोस्ट्रो की पसंद का। जनकपुरी से आपने हमें इस गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है। गोरा और काला फिल्म से आप ये गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल आप सुन पाएंगे। लेकिन कुछ नाम मैं जल्दी से जरूर यहां शामिल करना चाहूंगी, और भगवती सिंह, बिट्टू गगनेजा, सुरेश नारंग, अनिल जैन, बबलेश पवार, उत्तम कुमार भगत, सुनील पाठक और अभिजीत ग्वांकर, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा, आप सब प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और साथ ही फैज अहमद खत्री का भी संदेश मिलता है। चंपा देवांगन हमारे साथ हैं, राधेश्याम देवांगन, राजू जगदीप देवांगन के साथ, और कमलकांत गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता, अदिति गुप्ता, मुकेश गुप्ता नवापारा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और मैसेज आता है भारत भूषण का, अल्तमच खत्री, स्वर्ण सिंह, साहिल धार, लालगिरी, अहमद फूलवाले, मोहम्मद यूनिस खत्री, सुनील पाठक, आप सब प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जगराओं से सुनील पाठक हमारे साथ हैं। आफताब अंसारी का मैसेज मिलता है, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी हमारे साथ हैं गंज डुंडवारा से। और भगवती सिंह दिल्ली से प्रोग्राम को सुन रही हैं। तो ये गाना आप सबके लिए है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जल डमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी है। तमिलनाडु में टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी नेता जोसेफ विजय ने द्रविड़ राजनीति के संस्थापक सीएन अन्नादुरई को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवनिर्वाचित टीवीके विधायक चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय को अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए एकत्रित हुए। पार्टी राज्यपाल से संपर्क कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहा है। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य देखभाल पर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा जापान में स्वास्थ्य देखभाल नीति प्रभार के मंत्री किमी उनोदा ने किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह बैठक सहयोग को और सुदृढ़ करने में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में नई भागीदारी को मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। यह मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the Central University of Rajasthan has invited online applications for various non-teaching and contractual posts, including senior technical assistant, lower division clerk, multitasking staff, library attendant, medical officer female, nursing officer female, junior engineer electrical and law officer. The age limit ranges from 30 to 40 years depending on the post, with application fee of 750 rupees for SC/ST and PWBD candidates. The last date for online submission is 8th May 2026. Hard copy submission is 13th May 2026. Detailed information is available on the official website. Kindly visit www.curaj.ac.in. I repeat the website, it is www.curaj.ac.in. The Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited has invited applications for backlog reserve posts with a disability category. The posts include Assistant Manager Milk Plant in Group B Level 6 and Plant Operator Milk Plant in Group C Level 4. Eligibility ranging from relevant science or dairy qualifications to ITI with experience in plant operation. The last date for submission of applications is 15th May 2026. The detailed vacancy information and application format is available at www.andamannicobar.gov.in, or you could also go on to https://ainidco.and.nic.in. The National Biodiversity Authority, NBA Chennai, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, has invited applications on deputation basis for one post each of Accounts Officer Level 10 and Private Secretary to Member Secretary Level 7. Eligible officers from central or state governments with prescribed experience in accounts, administration and computer knowledge may apply. The last date for receipt of applications is 11/5/2026. For details, kindly visit the website at www.nbaindia.org. I repeat, www.nbaindia.org. Office of the Director General Assam Rifles, Shillong, invites applications under the Compassionate Ground Appointment Scheme 2026 for eligible dependent family members of personnel killed in action, died in service, medically discharged or missing. The last date to apply is 11th May 2026. Recruitment rally is tentatively scheduled between July to August 2026 at Lokra, Assam, or with updates on www.assamrifles.gov.in. I repeat the website, that is at www.assamrifles.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए लीड कंसल्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन NHSRC एक रिक्ति उपलब्ध है। आयु 55 वर्ष अथवा उससे कम होनी चाहिए। वेतन 1,30,000 रूपये प्रति माह से 1,70,000 रूपये प्रति माह के मध्य रहेगा। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के लिए देखिए नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर की वेबसाइट www.nhsrcindia.org तथा www.mohfw.gov.in। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किया जाना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 12 मई 2026। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर कंसल्टेंट सर्विलांस M&E एंड रिसर्च के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु सीमा 45 वर्ष है, जबकि वेतन 60,000 रूपये से 1,20,000 रूपये प्रतिमाह के बीच रहेगा। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखने के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.nhsrcindia.org। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किए जाने चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 12 मई 2026। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दो पद जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं, तथा उप पुलिस अधीक्षक तीन पद ये भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। योग्यता और अन्य शर्तों के लिए देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की वेबसाइट www.nia.gov.in। उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान शिलांग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यहाँ निदेशक के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल 17 में आता है और ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mohfw.gov.in। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस रिक्ति के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर है। पटना उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट समूह सी के 48 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र तथा टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र, अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 मई 2026 और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 19 मई 2026। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in। नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विज्ञान नगर विशाखापत्तनम आमंत्रित कर रहा है इन विभागों के लिए आवेदन। मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कुल 10 पद। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन DCCP कुल 10 पद तथा डिजिटल फोटोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, डीजल और मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग 22 पद। कुल 42 पद उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं नौसेना

0: विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की वेबसाइट अथवा मेल कर सकते हैं इस पते पर admin2.department.nstl@gov.in। विभाग की वेबसाइट है www.nats.education.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स, खेल के मैदान की गतिविधियों की भी देंगे जानकारी और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। कार्यक्रम में के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय।
4: हेलो विशाल, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय and with me of course is my co-host Vishal. Well listeners, he is known for his grounded approach, physical prowess and bringing a modern intensity to the character of Superman in the film Man of Steel, the 2018 movie. Yes, we are talking about Henry Cavill, who played Superman in the DC Extended Universe. Today we celebrate his birthday. We will talk about him in some detail later in our program. But first, we start with the news headlines first.
3: जी अभिषेक, मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजराह हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान।
4: यूएस एंड ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक्स इन गल्फ एज टू साइड्स रेसल कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान।
4: पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिगिन फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन तमिलनाडु एंड केरलम आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ असेंबली पोल्स रिजल्ट्स।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर।
4: एंड इन आईपीएल क्रिकेट दिल्ली कैपिटल्स टू टेक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स इन दिल्ली दिस इवनिंग। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Hand Hygiene Day.

0: हैंड हाइजीन डे 2026।
1: जी, और इस साल की थीम है एक्शन सेव्स लाइव्स, हाथों की सफाई जैसा एक छोटा काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है और लोगों की जान बचा सकता है।
0: Absolutely, and this campaign led by the World Health Organization highlights how proper hand hygiene helps prevent infections, especially in healthcare settings.
1: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाथों की स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम को लोगों के ध्यान के केंद्र में रखने तथा सुधार के समर्थन में संस्थानों और समुदायों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 2009 में शुरू किया गया था।
0: And in 2026, as the campaign marks 18 years, its theme, Action Saves Lives, gives the observance renewed relevance. Awareness alone is no longer enough.
1: स्वच्छ हाथ, सफाई व्यवस्था, साफ सफाई का जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार और संक्रमण रोकने के मजबूत सिस्टम अस्पतालों और स्कूलों से लेकर घरों, काम करने की जगहों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की जगहों और सामुदायिक स्थलों तक हर जगह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने चाहिए।
0: एंड दैट्स वेयर द मैसेज बिकम्स अर्जेंट। डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स, विजिटर्स, एवरीवन प्लेज अ रोल। क्लीन हैंड्स आरंट जस्ट अ हैबिट, दे आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: जी, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। और ये सिर्फ अस्पतालों की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खाने से पहले, शौचालय के बाद या खांसने छींकने के बाद हाथ धोने से कीटाणुओं को उसी समय खत्म किया जा सकता है।
0: एंड हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू लिसनर्स, डू यू वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स?
1: जी बिल्कुल, इसमें बहुत कम समय लगता है, उतना ही समय लगता है जितना हमें अपने पसंदीदा गाने का कोरस दो बार गुनगुनाने में लगता है।
0: नाइस टिप देयर विशाल, एंड डोंट फॉरगेट, यूज सोप एंड वाटर व्हेनेवर पॉसिबल, इफ नॉट एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर वर्क्स टू।
1: यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि हाथों की सही सफाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने में भी मदद करती है।
0: राइट, दैट्स व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू मेडिसिंस। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस इन द फर्स्ट प्लेस मींस फ्यूअर एंटीबायोटिक्स आर नीडेड।
1: भारत ने ऐसी पहलों के जरिए एक मजबूत नींव रखती है जो साफ सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ती हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने इसे खुले में शौच यानी कि ओपन डिफेकेशन से आगे बढ़ाकर एक व्यापक स्वच्छता एजेंडा की ओर बढ़ाया है, जिसमें कचरा मुक्त शहर, टिकाऊ स्वच्छता, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी शामिल है।
0: And for citizens, the action agenda begins with simple but consistent practices, washing hands with soap at critical moments, before eating, after using the toilet, after coughing or sneezing, after handling waste and before caring for the sick remains one of the most effective everyday habits. Food hygiene, safe drinking water, clean household surfaces, responsible waste disposal and menstrual hygiene must also be understood as part of the same wellness framework. Hygiene is not a one-day campaign, it's a daily discipline.
1: अभिषेक, बहुत पते की बात आपने कही कि एक डिसिप्लिन, अनुशासन में शामिल होना चाहिए हाथों की सफाई। संस्थानों पर इस मामले में ज्यादा जिम्मेदारी और आ जाती है। स्कूलों को साफ शौचालय, हाथ धोने की सुविधाएं और साफ सफाई की शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अस्पतालों को संक्रमण की रोकथाम को एक ऐसा मानक बनाना चाहिए जिस पर कोई भी समझौता न किया जा सके। कार्यस्थलों को साफ वॉशरूम उपलब्ध कराने चाहिए और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए। बाजारों में मिलने वाली खाने पीने के सामान तैयार करते समय साफ सफाई के जरूरी मानकों का पालन आवश्यक है। स्थानीय निकायों को सार्वजनिक साफ सफाई पर नागरिकों के भरोसे को बनाए रखना चाहूंगा। बदले में नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन एक जिम्मेदारी की भावना के साथ, और स्वच्छता से जुड़ी कमियों की जानकारी रचनात्मक तरीके से लोगों को दी जानी चाहिए।
0: सो इन कंक्लूजन, इट कैन बी सेफली सेड दैट क्लीन हैंड्स मे सीम सिंपल, बट दे रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शील्ड्स इन हेल्थ केयर। एंड एज द वर्ल्ड मार्क्स वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे टुडे, द मैसेज इज क्लियर। Small actions can save countless lives. World Hand Hygiene Day 2026, therefore, arrives with a message that is simple yet urgent. Clean hands save lives, but action saves them consistently.
1: स्वच्छता को केवल जागरूकता तक सीमित न रखकर इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हम सभी को बनाना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण साफ, स्वच्छ हाथों, स्वच्छ परिवेश और साझा जिम्मेदारी से ही होगा।
0: So to wrap up our discussion on the World Hand Hygiene Day, Vishal, Well, hand hygiene day is a powerful reminder that one of the simplest actions, cleaning your hands, can

0: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि आज उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले चल रहे हैं हिमालय की वादियों में। अभिषेक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,00,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी, आइए सुनते हैं।
1: हिमाचल सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में शुरू की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को रासायनिक खाद के बजाय देसी गाय के गोबर, गोमूत्र तथा स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और खेती की लागत को कम करना है। प्रदेश में अब तक 2,22,000 से अधिक किसान व बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। ये पद्धति राज्य की 99% पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। कृषि व बागवानी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और करीब 94% लोग सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि व बागवानी पर निर्भर हैं। ये क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान देता है। राज्य में किसानों को बेहतर व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का और गेहूं के आटे का विपणन हिम ब्रांड के तहत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
2: The much-awaited direct regular Vande Bharat train service between Jammu and Kashmir commenced on May 2nd, 2 days after its formal flagging off by the Union Railways Minister Ashwini Vaishnav from Jammu Railway Station. And earlier, Railways Minister Ashwini Vaishnav, Union Minister Dr. Jitendra Singh, Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah flagged off the extended Srinagar-Katra Vande Bharat Express from Jammu Tawi Railway Station on April 30. The train, which earlier ran between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra, is now operating up to Jammu Tawi. We have more from a correspondent.
3: The Vande Bharat train service launched on June 6 last year after the inauguration of the Jammu-Srinagar rail line by the Prime Minister Narendra Modi has now been upgraded from 8 to 20 coaches. Earlier, around 500 passengers could travel. Now, nearly 1,400 people can travel between the two capital cities of Jammu and Kashmir, Delhi. The service has been extended from Katra to Jammu to meet rising demand. The first commercial run of the Vande Bharat Express between Jammu and Srinagar on Saturday recorded an encouraging passenger response with around 70% occupancy and widespread satisfaction among travelers. Around 3,925 passengers travelled on the train on its inaugural day, while the number crossed 5,000 on the second day of operations. Train number 26401 carried nearly 940 passengers from Jammu to Srinagar, while another service on the same route transported close to 1,000 passengers. On the return leg, over 1,990 passengers travelled from Srinagar to Jammu, marking a

0: strong turnout on the inaugural day. The passengers are paying ₹730 excluding catering charges for the journey. The service reduced travel time between the two cities as compared to road journeys along the often unpredictable Jammu-Srinagar National Highway. The semi-high-speed train covers the distance between Jammu and Srinagar in about 4 hours and 45 minutes, offering a faster and more convenient alternate to road travel. The rail route is emerging as an affordable and comfortable travel option as airfares between the two cities range from ₹4,000 to ₹6,000. Positive response is being seen as a boost to railway connectivity on Jammu-Srinagar route, with the service offering a cheaper and convenient alternative to air travel. The specially designed all-weather trains are equipped with advanced electronics suited for height, altitude and extreme weather conditions, including temperatures up to minus 10 degrees. The rail link has opened new avenues for transporting goods such as cement, automobiles, food grains, cars and fruits, giving a major boost to trade and business. Passengers, including tourists, need not worry as robust security measures are in place and the system will be strengthened further. A 1+20 guard system led by an inspector with RPF commandos are ensuring security along the route. Around 3,000 CCTV cameras are monitoring the track and guard rooms established along the route. Besides, drone surveillance and peripheral guarding have been deployed across all the stations. The launch of Vande Bharat Express train will further enhance connectivity between Jammu and Srinagar. The development is also expected to benefit the pilgrims of Shri Amarnath Ji starting on July 3. The rail link will provide major relief in case of highway disruptions. When the Jammu-Srinagar National Highway gets blocked, the train service will be a great source of help and immense benefit for the commuters, people across the country as well as civil secretariat employees. Part of the Jammu-Srinagar-Baramulla rail link, the service is being seen as a major milestone in integrating the Kashmir Valley with the national rail network. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from Akashvani Jammu.
1: गोवा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के समग्र विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर काम करना शुरू किया है। वर्ष 2037 तक के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में विकास की दिशा तय करेगा। अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: गोवा के जनजाति कल्याण विभाग ने एसटी समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से विजन डॉक्यूमेंट 2037 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना जनजाति अनुसंधान केंद्र, राज्य के जनजाति कल्याण विभाग और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से तैयार की जा रही है। इस संबंध में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए मडगांव के रविन्द्र भवन में एक बैठक आयोजित की गई। जनजाति कल्याण के लिए 2220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके प्रभावी उपयोग पर विचार विमर्श जारी है। इस डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, खेल, भूमि अधिकार, संस्कृति और साहित्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए 100 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और 15 मई तक प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप देने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 महीनों में इस विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करना है। इसके अलावा जिन पंचायत क्षेत्रों में जनजाति आबादी 35% से अधिक है, वहां जनजाति सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: Farmers in Barak Valley now got a new digital tool to help them grow better crops. We have more from a Silchar correspondent.
4: Assam University Silchar teacher created a mobile app called Krishi Bikash Barak Valley for the farmers. This new app gives farmers instant expert advice right on their phones. Dr. Somnath Mukhopadhyay of the Assam University has built the platform with help from the central government. It is easy to use because it can speak to the farmers in their own local languages. The app helps bridge the gap for rural communities by offering tips on specific crops and soil health, live weather updates for the Barak River area and tools to find and fix pest problems quickly. Project leader Dr. Somnath Mukhopadhyay says the app works great even on cheap phones or with slow internet. Since it can use as voice commands, even farmers who struggle with reading can use it easily. Anyone can download the Krishi Bikash app from the Google Play Store. Experts believe this will lead to better harvests and higher profits for farmers across the region. Shashwati Bhattacharji, Akashvani Silchar.
1: बात खेलों की दुनिया की। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया था और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने जरूरी जीत के लिए जो लक्ष्य था वो 18 ओवर और 4 गेंदों में

0: ही हासिल कर लिया और उसके अभी केवल 4 विकेट ही खोए गए थे।
1: Yes, and in some business news, benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The Sensex dropped 252 points to close at 77,018, while the Nifty dipped 87 points to settle at 24,033. And for more updates about market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
0: और आइए अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
2: आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था।

0: ज़ैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजा मंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई।
1: सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर ज़ैल कर लिया था।
2: सिख

0: 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने।
1: 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे।
2: हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं।
0: 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
1: हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे।
0: नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
1: जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं।
0: हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे।
3: इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
0: मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था।
1: 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं।
0: हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया।
1: रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में काला पानी की कठोर सजा सुनाई गई।
0: 5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई।
4: और आज ही जयंती है बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार की। एक प्रतिभावान छात्रा थी प्रीतिलता वादेदार, ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की थी। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना से प्रभावित होकर इन्होंने क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के दल की सदस्यता ले ली थी। 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता वादेदार ने ही सूर्य सेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था।
5: Yes, and Adele was born on this day 1988. She is an English singer, songwriter and actress. Regarded as a British cultural icon, she is known for her mezzo-soprano vocals and sentimental songwriting. Her accolades include 16 Grammy Awards, 12 Brit Awards, an Academy Award, a Primetime Emmy Award and a Golden Globe Award. In 2012, Adele released Skyfall, a soundtrack single for the James Bond film Skyfall, which won her the Academy Award for Best Original Song. Let's listen to it.

और आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार नौशाद अली की। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या से कहीं आगे होती है। और ये नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग जैसी फिल्मों उन्होंने दी और इनका जो संगीत दिया वो हिट भी हुआ और कालजयी भी बना। और इन्हीं की एक फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था, दर्द, और उसी का ये सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: help them accomplish wonders. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you when the sun comes. In time, you will help them accomplish wonders.
1: आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक गायक और टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का। टी सीरीज की स्थापना इन्होंने की थी, एक म्यूजिक कंपनी थी, और गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शामिल है जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इन्होंने टी सीरीज कैसेट्स के माध्यम से देवी देवताओं के भजन और गीत जनता के बीच प्रस्तुत किए। गुलशन कुमार ने टी सीरीज के जरिए संगीत को लोगों के घर घर पहुंचाने का काम किया और यही इनका सबसे बड़ा योगदान भी माना जाता है।

0: और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो श्रोताओं दीजिए इजाजत विशाल शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
1: नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल का नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी में मनादीपेट में निर्वाचित विधायक ए नमशिवम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सावरगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स सीपीआर के प्रमुख उपयोगों और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

न जाने किस हुनर को शायरी कहते हो तुम, न जाने किस हुनर को शायरी कहते हो तुम, हम तो वो लिखते हैं जो तुम्हें कह नहीं पाते। स्वागत करती हूं मैं अपराजिता एक बार फिर आप सभी का गाते गुनगुनाते में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हम आपसे कहेंगे भी, आप सुनेंगे भी और जवाब भी लिखकर भेजेंगे, क्योंकि गाते गुनगुनाते में जब तक सवाल ना पूछे जाएं तब तक ये जो शो है ना, इसकी शोभा और नहीं बढ़ती। तो ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आई हूं, लेकिन पहले सुनवा रही हूं आपको साजन फिल्म से ये बहुत ही प्यारा गाना। इसके बाद आपसे पूछूंगी कुछ सवाल जिनके जवाब यानी कि फिल्म के नाम आप हमें लिखकर भेजेंगे हमारे ईमेल आईडी पर। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही प्यारा गाना।

तो पहला सवाल जो आप सबके लिए है वो 1994 में आई हैरी बवेजा की एक फिल्म से है जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया, और इस साल में जब उनकी फिल्म आई तो ये सबसे ज्यादा जो है बिजनेस करने वाली फिल्म भी बन गई। इस फिल्म के गीत सभी एक से बढ़कर एक हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं।

सुनाएं तो ऐसा लगता है जैसे आज का ही म्यूजिक है। सभी गाने जो हैं इस फिल्म के वो समीर द्वारा लिखे गए हैं और गीत जो हैं उन्हें कंपोज किया है नदीम श्रवण ने। अगर आप पहचान चुके हैं मैं किस फिल्म की बात कर रही हूं तो आपको करना है क्या, आपको एक ईमेल करनी है। अच्छा एक हिंट चलिए और दे देती हूं, इस फिल्म का नाम सिर्फ एक शब्द का है तो आपको टाइप करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप हमें इसका फिल्म का नाम लिखकर भेजें ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में और नाम आपका सेंडर्स में आ ही जाता है। और मैं सिर्फ इस शो के लिए ऐसा क्यों कहती हूं, ताकि अब जल्दी से जल्दी जो है अपने आंसर्स हम तक पहुंचा सके, क्योंकि पहले दूसरे और तीसरे सही जवाब को हम जो है उनका नाम अलग से अनाउंस करते हैं और बताते हैं, और आप अगर उसके बाद भी सही जवाब देते हैं तब भी आपका नाम लिया जाता है। लेकिन क्योंकि एक थोड़ा क्विज टाइप का शो है तो इससे थोड़ा और जो है ना रोमांच बना रहता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। अगर फिल्म का नाम आपने पहचान लिया है तो आपको अपने जवाब जो है वो लिखकर भेजने हैं इसी ईमेल आईडी पर। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं जंगल फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गाना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में। याद रहे 90s में आई फिल्म से मैंने आपसे सवाल पूछा है जिसका आंसर आप मुझे जल्द से जल्द टाइप करके भेजेंगे, यानी कि इस गाने के खत्म होने से पहले। कहीं आप जंगल में तो नहीं पहुंच गए?

जी, तो अब आपके जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। पहला सही जवाब देने वालों में सबसे पहला नंबर आता है नवीन किशोर साहब का दौलापुरा गांव से, और उसके बाद बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। और तीसरे स्थान पर आते हैं हमारे मोहम्मद सईद अब्बासी, ये बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। निगत परवीन शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, इनके परिवार के सदस्य हैं ये सब। और आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने सबसे जल्दी जो है वो ये जवाब दिया। और अगर मैं आपको टाइम के हिसाब से बताना चाहूं तो तीनों ने जो है, तीनों के जवाब जो हैं वो 1, 2, 3 ऐसे आए हैं। और टाइम जो है सेकंड्स का तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन 17:19 यानी कि 5:19 पर आप तीनों के जवाब हमारे ईमेल आईडी में पहुंचे हैं। गिरीश बम है, इन्होंने भी बिल्कुल सही पहचाना है आपके बाद। और अनु बड़जात्या, शमशूल खान, अनुराज बेनारा, आप मुंबई से बिल्कुल सही पहचानते हैं। और सुदर्शन, अनीता, सिमरन, मुखी, शांतिनगर, सोनीपत से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। नागेंद्र ठक्कर हैं, आपने भी बिल्कुल सही सही फिल्म का नाम पहचाना है। और सही जवाब देने वालों में हैं फारूक अली खान, फैजी फरहास, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा, आप सबने भी पहचान लिया है कि फिल्म है दिलवाले। और अजीत भावसर ने भी हमें सही उत्तर जो है वो लिखकर भेजा है। तो दिलवाले जो फिल्म है, इसमें एक्टिंग की अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और गुलशन ग्रोवर और परेश रावल भी इसमें रहे। और अजय देवगन ने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई और सुनील शेट्टी इंस्पेक्टर विक्रम का रोल प्ले करते हुए नजर आए। साथ ही अगर हीरोइन की बात करें तो रवीना टंडन जो है उन्होंने सपना की भूमिका निभाई। और गानों की मैंने तारीफ वैसे तो की थी, पर मैं कुछ गानों के जो है ना आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से गाने हैं इसमें। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, पर आपको एक गाना सुनवाऊंगी मैं इनमें से, कितना हसीन चेहरा, ये तो है ही बहुत बढ़िया गाना, इसी को मैं सुनवाने वाली हूं। जीता हूं जिसके लिए, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, जो तुम्हें चाहे, सातों जन्म में तेरे, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, ये बहुत ही खूबसूरत गाना। एक और तो एक से बढ़कर एक गाने, क्योंकि मैंने जिक्र भी किया पहले जब आपको हिंट्स दिए कि जो म्यूजिक है इस फिल्म का वो नदीम श्रवण ने दिया, तो बिल्कुल गाने भी सुनेंगे, यानी कि एक गाना इस फिल्म से सुनेंगे और बाकी जैसे जैसे आप उत्तर देते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको गाने उन फिल्मों के सुनवाती रहूंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगली जो पहेली है आपके लिए वो है 1991 में एक फिल्म आई जो एक रोम कॉम थी, यानी कि रोमांटिक कॉमेडी थी। गुलशन कुमार इस फिल्म के निर्माता रहे और फिल्म का जो निर्देशन है वो किया महेश भट्ट साहब ने। ये फिल्म एक अंग्रेजी फिल्म से प्रेरित है और इस फिल्म में हिंदी में जब ये फिल्म बन चुकी थी तो उसके बाद तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में भी इसका रीमेक जो है उसे बनाया गया। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया और इसकी अदाकारा जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में नई थी, उनके करियर को इस फिल्म के बाद बहुत जो है बढ़ावा मिला और काफी ऊंचाइयों को उनके करियर ने छुआ। फिल्म का एक सीन मैं आपके साथ जरूर उसका जिक्र करना चाहूंगी, शायद आपको फिल्म के और करीब ले जाए। और इस सीन में ऐसा होता है कि बस में हीरोइन की जो है वो मुलाकात हीरो से होती है, और हीरो जो हैं हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और अभी अभी उनकी जो है वो नौकरी चली गई है, तो वो जो है वो हीरोइन के बारे में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के बदले में उनकी मदद करने की जो है वो पेशकश रखते हैं। तो ऐसे ही ये इस फिल्म की

कहानी आगे बढ़ती है। अगर आप पहचान चुके हैं फिल्म का नाम तो जल्दी से आपको वही काम करना है, fmgoldairdelhi@gmail.com पर फिल्म का नाम सब्जेक्ट कॉलम में लिखकर जल्दी से सेंड कर देना है। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं दिलवाले फिल्म से ये गाना। कौन सा गाना? कितना हसीन चेहरा। और आवाज आप पहचान लेंगे, वैसे मैं बता देती हूं कुमार सानू की आवाज है।

वैसे मैंने पहला सवाल जो आपसे पूछा था उसमें एक नाम मुझसे छूट गया, जगदीश बजाज हैं विकासपुरी से। आपने भी बिल्कुल सही पहचाना था फिल्म का नाम दिलवाले, तो मैंने आपका नाम अभी शामिल किया। और अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा था यानी कि दिलवाले फिल्म के गाना जो है इसे सुनाने से पहले जो सवाल पूछा था उसका जवाब आ गया है हमारे पास। तो नवीन भाटिया साहब ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, इसके बाद नवीन किशोर ने हमें सही जवाब लिखकर भेजा दौलूपुरा से, और राहुल सक्सेना ने भी बिल्कुल सही सही फिल्म का नाम लिखकर भेज दिया है। इसके बाद बारी आती है भगवती सिंह की, बबलेश पवार, पंकज कुमार, जगदीश बजाज, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, नागेंद्र ठक्कर, अजीत भावसर गुजरात से प्रमिला भावसर के साथ सही फिल्म का नाम लिखकर भेजते, अनु बड़जात्या, शमशूल खान और अनुराज बेनारा मुंबई से, गिरीश बम का भी हमें सही जवाब मिलता है वैशाली बम के साथ वडोदरा से, और राजा बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। इसी के साथ सही जवाब लिखने वालों में एक और नाम आ जाता है, फारूक अली खान, फैजी फरहास, फरीन, फाहिरा ताहिरा का। तो आप सबने बिल्कुल सही सही पहचान लिया है, फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। हाँ, बहुत ही प्यारी ये फिल्म है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और इसमें पूजा भट्ट हैं एक्ट्रेस के तौर पर, और इन्होंने पूजा का किरदार इसमें निभाया है। आमिर खान है वो जर्नलिस्ट जिनकी मैंने बात की, और इन दोनों का ही जो वो सीन है उसको मैंने आपके समक्ष बताया। रघु का नाम जो है वो आमिर रघु के नाम से हैं इस फिल्म में, और इसमें अनुपम खेर भी हैं सेठ धर्मचंद के नाम से, और बड़ी ही खूबसूरत ये फिल्म है। और अगर मैं इस फिल्म के अवार्ड्स की बात करूं तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है वो अनुराधा पौडवाल को दिया गया, दिल है कि मानता नहीं, यानी कि ये गाना मैं अभी आपको सुनवाऊंगी, फिल्म का टाइटल ट्रैक है, इसके लिए इन्हें जो है फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। बाकी फिल्म के अलग कैटेगरीज में नॉमिनेशन यानी कि नामांकन भी हुए फिल्मफेयर अवार्ड में, जैसे कि बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट लिरिसिस्ट, लेकिन अवार्ड जो जीता वो अनुराधा जी ने जीता, और वो गाना आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि दस्तूर कहता है और समय भी ये कहता है कि अगला सवाल आपसे पूछ लेना चाहिए। 90 के दशक में एक और रोमांटिक कॉमेडी आई, एक और मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी हमने जिक्र किया दिल है कि मानता नहीं का, ये भी एक रोम कॉम है, और इस फिल्म ने भी ऑडियंस को जो है अपने से बहुत बांध कर रखा। इस फिल्म ने फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में 5 नॉमिनेशंस हासिल किए और एक फिल्मफेयर पुरस्कार जीता भी, और वो था सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में। अरे वाह, क्या बात है, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है दोनों फिल्म में। अभी हमने आपके सामने जिक्र किया कि जो दिल है कि मानता नहीं उसमें भी अनुराधा जी को अवार्ड मिला, और इस फिल्म में भी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की कैटेगरी में जो है अवार्ड फिल्मफेयर इस फिल्म ने जीता। फिल्म का जो हीरो है वो एक महत्वाकांक्षी युवक है जो जिंदगी में बहुत सारे जो है वो धन कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, और फिर बड़ा आदमी बनना चाहता है, और फिर इसी जो है जद्दोजहद में वो अपने मालिक के द्वारा कही गई हर बात को जो है मान लेता है या सही कह देता है, चाहे वो गलत हो या सही। तो इस तरीके से ये फिल्म है, इसकी

जो स्टोरी है उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया। अगर आप पहचान चुके हैं मैं कौन सी फिल्म की बात कर रही हूं और ये कौन सी फिल्म है जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है, यानी कि एक और हिंट है आपके लिए, और फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया है। अगर आप पहचान चुके हैं तो फिल्म का नाम जल्दी से fmgoldairdelhi@gmail.com पर लिखकर भेजिए। तब तक मैं दिल है कि मानता नहीं से उसका टाइटल ट्रैक सुनवा रही हूं आप सबको।

वैसे क्या म्यूजिक दिया है ना नदीम श्रवण ने, बिल्कुल आप भूल नहीं सकते। अगर एक बार मुझे ऐसा लगता है जैसे आज ये गाना सुन लिया तो ये आपके जहन में कहीं ना कहीं चलता रहेगा, बजता रहेगा या रह रह के आपको याद आता रहेगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूं कि किसने हमारे पिछले सवाल का सही जवाब सबसे पहले दिया है। तो पहला सही जवाब आता है नवीन भाटिया साहब का मोतीनगर दिल्ली से, दूसरा नागेंद्र ठक्कर ने दिया है और तीसरा नवीन किशोर साहब ने दिया है। तो भाई तीनों जो हैं, जिनका तीनों का नाम जो है वो न से शुरू होता है। तो आपने फिर से बाजी मार ली है, मुबारकबाद। इसके बाद हर्षरण गुप्ता हैं, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है, हर्ष आर गुप्ता ये आपका नाम है। और मणिराज ने भी बिल्कुल सही जो है जवाब लिखकर भेजा है फिल्म का नाम, यानी कि मनीषा नागपाल हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। कुशाग्र अग्रवाल हैं और गोविंद मेहरा बिल्कुल सही बताते हैं, अनिल सरोड़े हैं। और मैं देख पा रही हूं, मुझे इस बात की खुशी भी है कि बहुत से नए नाम जो हैं वो इस सवाल के साथ हमारे साथ जो है इस शो में जुड़ गए हैं। तो आप सभी का स्वागत बहुत बहुत गाते गुनगुनाते में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। और इसके बाद सही जवाब दिया है उमेश कुमार ने खयाला से। और इसके बाद सही जवाब देने वालों में नाम जो अगले हैं वो सही नहीं है, इसलिए मैं उनको शामिल नहीं कर रही। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, आपने बिल्कुल सही पहचाना। गिरीश और वैशाली बम ने वडोदरा से बिल्कुल सही पहचाना। और भारती बिल्कुल सही पहचानती हैं। इसके बाद फारूक अली खान, फैजी फरहाज, फरहीन, फाहिरा ताहिरा, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है। मुल्ला हेड़ा गांव एनसीआर से। और जो फिल्म है उसका नाम है यस बॉस। जी बिल्कुल सही आपने इस फिल्म को पहचाना है। इस फिल्म में एक्टिंग की है शाहरुख खान, आदित्य पंचोली और जूही चावला ने। और बड़ी ही खूबसूरत ये फिल्म है, एक बार फिर मैं यही कहूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। और आदित्य ने इसमें सिद्धार्थ की भूमिका निभाई, शाहरुख ने राहुल जोशी की और जूही चावला सीमा कपूर के रोल में इसमें नजर आई हैं। बहुत ही खूबसूरत इस फिल्म के भी गाने हैं और आपको एक गाना जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगला सवाल आपसे जरूर पूछ लेती हूं। 1991 की ये फिल्म है जिसका मैं अब जिक्र कर रही हूं, इसका जो है डायरेक्शन किया कुक्कू कोहली ने। फिल्म में हीरो की एंट्री बहुत ही लाजवाब है। ये स्टंट इतना फेमस हुआ कि बाद में इसी स्टंट को कई फिल्मों में दोबारा देखने को हमें मिला, दोहराया गया यानी कि। हालांकि इस फिल्म के साथ ही लम्हे भी रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी यानी कि लम्हे बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली फिल्म रही। उसके बावजूद इस फिल्म ने अपने लिए एक अलग जगह बनाई, अलग मकाम बनाया। तो अगर आप पहचान चुके हैं इस फिल्म को जिसकी मैं बात कर रही हूं, और एक बार फिर ये जो फिल्म है जिसकी मैं बात कर रही हूं इसमें नदीम श्रवण का जो है वो संगीत रहा, तो अगर आप पहचान चुके हैं तो अपने जवाब हमें fmgold@gmail.com पर लिखकर भेजिए। मैं फिलहाल अभिजीत की आवाज में आपको सुनवा रही हूं यस बॉस।

जी, तो जाने से पहले आपके सही जवाब जो है वो मैं शामिल कर लेती हूं। और पहला सही जवाब हमें इस सवाल के लिए किसने लिखकर भेजा है, पहला सही जवाब लिखकर भेजते हैं अमित नरूला, इसके बाद पंकज कुमार, गोविंद मेहरा। ये तीनों, आप जो तीनों हैं आपने सबसे पहले इसी क्रम में यानी कि इसी ऑर्डर में सही जवाब दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो आप सबको शुभकामनाएं। इसके बाद नागेंद्र ठक्कर ने भी सही जवाब लिखकर भेजा, मनीराज गांधी चौक बाड़मेर से, बबलेश पवार, मिलिंद खड़के और मोहम्मद सईद अवासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, मिलिंद खड़के, मनीषा नागपाल, मधुस्मिता सोमारे, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है, गिरीश बम और वैशाली बम वडोदरा से बिल्कुल सही सही पहचानते हैं, और सही जवाब दिया है अभिषेक भारद्वाज ने, अजीत भावसर ने वीरमगाम से, आपके साथ है प्रमिला भावसर भी, अनु बड़जातिया और आपके साथ हैं शमशुल खान, अनुराज बेनारा, आप सबने बिल्कुल सही सही पहचाना है, और जगदीश बजाज, कुशाग्र अग्रवाल, नागेंद्र ठक्कर, भगवती सिंह, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी ने सोनीपत से बिल्कुल सही पहचाना है, और फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फाहिरा ताहिरा, मीनाक्षी गौतम और उमेश कुमार, आपका नाम मैंने शामिल कर दिया है, हालांकि कोशिश के लिए चलिए इस नाम को मान लेते हैं, लेकिन आपका जवाब सही नहीं है। तो सही जवाब है फूल और कांटे, जिसमें एक्टिंग की अजय देवगन, मधु ने और अरुणा ईरानी, जगदीप और अमरीश पुरी भी इस फिल्म में रहे। अजय देवगन ने अजय का ही किरदार निभाया और मधु पूजा के किरदार में इसमें नजर आई। मैं आपको इस फिल्म से एक बहुत ही प्यारा गाना सुनवा रही हूं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। इस गाने के साथ आपको मैं छोड़े जा रही हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अगर कहीं किसी की मदद करने की जो है आपको मौका मिलेगा तो उस मदद से आप हिचकेंगे नहीं, है ना, कुछ अच्छा काम जरूर करते चलना चाहिए जीवन में। तो इसी के साथ मुझे यानी अपराजिता को दीजिए वदा, ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए, आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। इस गाने के बाद आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स सीपीआर के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना

अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणाम

0: खरा सोना।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी कि खरा सोना, जो अपनी पीली चमक से आपकी जिंदगी में भी सुनहरे रंग बिखेर देता है। और सुबह से लेकर शाम तक काम करते हुए हमारे आज के जो मुसाफिर घर की ओर चल दिए हैं, जानते हैं साहब, दिन भर की थकान उतारने के लिए आपको बस यही मन में बात आती है कि जल्द से जल्द घर पहुंचे। चलिए थोड़ी सी थकान आपके हम भी उतार देते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में शांति चाहिए तो दूसरों से शिकायत करने से बेहतर खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते आप, हाँ खुद के पैरों में चप्पल जरूर पहन सकते हैं।

इस गीत को सुनकर घर पे इंतजार में जो लोग आपके बैठे हैं, कहीं वो अपने गोरे हाथों पर जुल्म न करने की नठान बैठे, हालांकि इस वक्त आपकी थकान उतारने के लिए उन्हें थोड़े से उन गोरे हाथों को कष्ट तो देना पड़ेगा, यानी आपके लिए चाय बनानी पड़ेगी, शाम के वक्त कुछ हल्के स्नैक्स की जरूरत भी पड़ती है जो कि आपकी थकान को रफू चक्कर कर देती है ना।

आया पहला पहला ओ जाने माने सुन ले ये दिक्षा कुमारी है ये दिक्षा कुमारी हसीनों की सवारी है हसीनों की सवारी।

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र का समस्त परिवार आपका अभिनंदन करता है। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की संजीदा चाल पर चर्चा करेंगे और अर्थव्यवस्था की भी विवेचना करेंगे। श्रोताओं, इस विषय वस्तु पर विवेचना करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, आपका मार्केट मंत्र में बहुत बहुत
0: वेलकम। सुषमा,
2: थैंक यू राजेश, थैंक यू प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: Benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 250 points, Nifty settles below 24,050. European stock markets display mixed trend and global crude oil prices fall.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 250 से ज्यादा गिरा, वहीं निफ्टी 24,050 के नीचे बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में रहा मिश्रित रुझान और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, रुख करते हैं शेयर बाजार की हलचल की तरफ। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप 100 में लगभग 0.2% की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.3% का उछाल आया। इससे पहले बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और भू राजनीतिक तनाव के बीच पूरा कारोबारी सत्र दबाव में नजर आया। निफ्टी वायदा और विकल्प अनुबंध की साप्ताहिक समाप्ति ने बाजार में उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया। हालांकि दोनों सूचकांकों में दिन के दूसरे सत्र में अपने कुछ तेजी देखने को मिली।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड विद मॉडरेट लॉसेस टुडे। The Sensex dropped 252 points to close at 77,018, while the Nifty dipped 87 points to settle at 24,033. However, the broader market on the National Stock Exchange managed to close with gains. The mid-cap 100 rose nearly 0.2% and the small-cap 100 added almost 0.3%. Earlier, the market opened lower and continued to trade under pressure

0: has managed to recoup some of the losses in the latter half.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक में 1.5% से अधिक, एटर्नल लगभग 1.4% और टेक महिंद्रा लगभग 1.3% गिरा. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.4%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.6% और बजाज फिनसर्व में 1.1% की बढ़त हुई.
0: In the sectoral indices at the BSE, 14 out of 25 sector edged downward. Among the top losers, realty dropped 1.4%, top 10 banks lost 0.8%, and the consumer durables as well as services fell more than 0.6%. In the top gainers, FMCG gained 0.6%, auto climbed over 0.5%, and power added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,181 companies declined, 1,998 advanced and 176 remained unchanged.
1: और अब रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.47 पर चल रहा था. सुषमा, हमने दो सत्र देखे अभी इस हफ्ते, आज दूसरा है. तो आज हमने देखा कि जो सेकंड हाफ है, अगर हम कल के सेशन को देखें तो उसमें बिकवाली हुई और आज हम देखते हैं तो लिवाली हुई. इसे आप कल को लेते हुए और आज की ट्रेजेक्ट्री को अगर मैं मिला करके आपसे पूछना चाहूं तो आप कैसे देखते हैं कि किस तरफ बाजार जो है अभी रुक किए बैठी है?
2: देखिए, कल की ट्रेजेक्ट्री काफी फर्क थी क्योंकि उसका ये डोमेस्टिक जो डेवलपमेंट्स हैं उसका असर पड़ा था मार्केट के ऊपर. खैर, जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आ गए थे और काफी पेचीदा थे, काफी हमें अजीब और गरीब कुछ रिजल्ट्स आए थे. खैर, ये जो तमिलनाडु में सबसे खासकर कि एक जो बहुत ही नई पार्टी आ गई है और उन्होंने स्वीप किया. अब वेस्ट बंगाल में तो खैर काफी सर्वेज ने कहा ही था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी उसमें, उसमें इतना आश्चर्य नहीं था, लेकिन ज्यादातर ये तमिलनाडु का ही था. लेकिन फिर भी ये जो मार्केट्स जो हैं वो ज्यादातर खुश होती हैं जब स्टेटस को रह जाता है. तो स्टेटस को माने जो सेंटर में पार्टी है वो ही अब स्टेट्स में भी धीरे धीरे आ रही है. तो उसका जो असर था सुबह की जो आपने बताया, उसके बाद बिकवाली के बाद, उसके बाद जब मार्केट सेटल हुई, तो मेरे ख्याल बाक जो ग्लोबल जो इवेंट्स हैं उनका असर पड़ा था ये मार्केट के ऊपर. और आज की जो जो जो वॉलिटिलिटी दिखाई दी सुबह के और शाम में, तो ये वॉलिटिलिटी एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से और दूसरा जो जैसे आपने बताया ये जो निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी हो रही है तो उसका भी असर है. लेकिन ज्यादातर कल के बाद मेरे ख्याल ज्यादातर अब आज के बाद अगर जो हम देखेंगे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का बहुत असर होगा और हमें तैयार होना चाहिए. हालांकि अभी भी हुआ है, पिछले महीने दो महीने से ये जो वॉलिटिलिटी चल रही है ये इन्हीं टेंशन्स की वजह से हो रही है.
1: कल की जो अनिश्चितता को लेकर के आपने बात की जिसमें कि आपने चुनाव का जिक्र किया, कल एक और चीज देखने को मिली, एक और आंकड़े हमें देखने को मिले, वो थे एफआईआई के आंकड़े कि 9th स्ट्रीट सेलिंग सेशन, उसके बाद हमने देखा कि खरीदारी जो है वो हुई है. तो
2: है,
1: ये भी एक अच्छी बात है. क्या इसका कोई सहयोग है बाजार का जो एक मनोबल है उसे उठाने में?
2: हाँ, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स. देखिए, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, जैसे मैंने कहा वो स्टेटस क्वो को बहुत अच्छा मानते हैं. तो स्टेटस क्वो माने जो पार्टी सेंटर में है अगर वो स्टेट्स में आ जाए तो इसका मतलब कि इस देश में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कि एक ही एक जो पार्टी है वो राज करेगी और उसमें इतने कोई तनाव नहीं होंगे, टेंशन नहीं होंगे और डेवलपमेंट का जो पेस है वो भी बढ़ जाएगा. तो इसका इसका आउटलुक मेरे ख्याल एफ आई आई इसका

0: Russia. Of course, Russia is a very large country and very important, and Ukraine. But it didn't involve anybody else. And the prices shot up for about a month and then they came down. That is crude oil prices I'm talking about. In this case, we have had this situation for over 2 months now and prices have gone up and we do not gone up beyond $100 and we do not know when they are going to come down. So I would say, and we do not know when the conflict is going to end. So this is a far larger and more difficult crisis than the one of Russia and Ukraine.
1: धीरे धीरे रे मना अभी देखने वाली बात है
0: जी,
1: कि
0: बिल्कुल
1: किस सूरत जो है किस तरीके की तब्दीलियां जो है वैश्विक स्तर पर होती है. लेकिन अगर मैं आपको आपका ध्यान आकृष्ट करूं घरेलू बाजार की तरफ हमारे इंडियन मार्केट की तरफ तो क्षेत्र विशेष की अगर हम बात करें सुषमा उसमें आप अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं कौन से ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनमें आप काफी संभावनाएं देखती हैं.
0: देखिए इस वक्त जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए. तो इस वक्त खैर अगर आप मार्केट देखें तो काफी बेरिश ट्रेंड्स हैं बैंकिंग क्षेत्र और ऑटोमोटिव सेक्टर. लेकिन यही दो क्षेत्र हैं जिनकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. तीसरा एरिया है जिसके जहां मार्केट गिर रही है वो है आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर में अभी लोगों को का ध्यान इसके ऊपर नहीं आया है लेकिन जो रूपी डिप्रिसिएशन है उसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है. इन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है क्योंकि ये सर्वाइव करती हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के ऊपर. तो एक्सपोर्ट्स में जब अगर रूपी डिप्रिशिएट होता है तो उनको बहुत रेवेन्यूज उनके बहुत बढ़ जाते हैं. तो इस वक्त आईटी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई. हालांकि इस वक्त ये भी कहा जाता है कि एआई का जमाना है और आईटी कंपनीज कैसी एडजस्ट करेंगी तो ये इस वक्त अगेन थोड़ी बेरिश ट्रेंड्स हैं आईटी कंपनीज पर. लेकिन मैं समझती हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत है.
1: सुषमा क्योंकि आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तीन अगर मैं उंगलियों पर गिनना चाहूँ कि आपकी नजर में आपकी राय में वो कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आप सलाह देंगी आपके अनुभव के हिसाब से कि एक निवेशक को अभी अपना पैसा लगाना चाहिए.
0: देखिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है एक वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स हैं
1: जी
0: और दूसरा कंज्यूमर गुड्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इस वक्त बहुत तेजी से चल रही हैं और तीसरा बड़ा मुश्किल है तीसरा
1: क्योंकि इतनी अनिश्चितताओं से हम लोग
0: तीसरा तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हुए वो मेरे ख्याल बैंकिंग है.
2: जी सुषमा रूपी वी मेंशन्ड एट 95 प्लस अगेंस्ट द डॉलर क्रिएट्स अ विशियस साइकिल. इट रेजेस इंपोर्ट कॉस्ट लिफ्ट्स इन्फ्लेशन ट्रिगर्स फर्दर एफआईआई सेलिंग एंड वीकन्स कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस. व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू द आरबीआईज रियलिस्टिक इंटरवेंशन कैपेसिटी and is there a risk of disorderly currency depreciation if the Hormuz situation deteriorates further?
0: The RBI of course is being very careful in interventions. They are allowing the currency to depreciate and but making sure that it does not, as you say, depreciate in a disorderly fashion. The impact, of course, the resources of the RBI are large, but obviously they would not like to draw upon those resources to a large extent simply to prop up the currency. One of the myths or the perceptions about depreciation is that it's very bad for the economy. Yes, in a sense, it is bad if we are buying, if you look at the aspect that we are buying crude oil and therefore our currency depreciation becomes, you know, buying becomes more expensive. But if you are looking at what I talked about IT companies, if you're trying to export, this is a situation that, you know, makes our exports competitive, which is why the RBI is not intervening very strongly in this. If you you must recall that countries like China deliberately depreciate their currencies to make their exports competitive, and in fact this has been one of the areas of dispute and contention between the US and China, that they continue to depreciate their currency and you

0: issued by the government-backed entities. Sushma, how good is it for the consumers?
1: Of course, this is very good. The more investment products that we are available to provide to investors, especially these are from the GIFT City, which is, regulated by international financial systems. These are obviously going to be attractive. And it adds to the bouquet of investment options that are available.
2: National Stock Exchange of India NSE ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR को जारी करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता, कुशलता और औपचारिकता लाना है. एक वक्तव्य में NSE ने कहा कि EGR के जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा. EGR में वास्तविक रूप से खरीदे हुए सोने का ब्यौरा भी मौजूद होगा. ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपोजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है. सुषमा, मैं आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी इस पर कि ये कितना महत्वपूर्ण है और कितनी अच्छी बात है. इससे कितना ट्रस्ट, एक विश्वास जो है वो निवेशक और जो उपभोक्ता है उनके मन में पैदा होगा.
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारे देश में लोगों को सोना खरीदना बहुत शौक है, उत्सुकता है. तो इससे ये फायदा है कि भाई आपको ये सोना घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है. आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली आपके हाथ में है. इसका इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा
2: और जरिया है. एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप इसे खरीद बिक्री जो है बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं.
1: बिल्कुल हाँ, ये तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही बढ़िया तरीका है सोना रखने का.
2: जी.
0: Moving on, the International Monetary Fund has said that the global economy could face far more severe consequences if the West Asia conflict extends into 2027, potentially driving oil prices to around $125 per barrel. Managing Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, said current conditions, including a prolonged conflict, oil prices remaining at or above $100 per barrel, and rising inflationary pressures have already triggered the IMF's adverse scenario. Under the adverse scenario, global growth is expected to slow to 2.5% in 2026, while inflation could rise to 5.4%. Sounds very pessimistic.
1: Yes, but as I said, unless this war ends, we have to take a kind of pessimistic outlook on the future.
0: Global crude oil prices fell today. Brent crude was trading over 1.5% down at $112.65 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading over 2.3% lower at $103.96 per barrel when reports last came in very quickly. In the event of the prolonged blockage, Sushma, what alternative energy sourcing, we were discussing that we have to go and look for alternative sources. What strategies could India have, and are Indian oil refineries and the strategic petroleum reserves sufficient to weather such a disruption?
1: On the diversification, the government has already done a lot. We are buying from 40 countries. We've already diversified. You talked about Russia. I told you about Guyana and all these other countries. But I think the area that we need to improve is on our strategic petroleum reserves, which are just not large enough, and we really need to build them up.
0: In the Indian bullion markets, 24-carat gold was trading around 0.3% up at 1,50,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.8% higher at 2,46,330 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 0.3% बढ़कर 1,49,843 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और मई अनुबंध वाली चांदी 0.9% बढ़कर 2,46,064 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. श्रोताओं, क्योंकि समय की बाध्यता है तो मुझे और राजेश को दीजिए इजाजत. सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए.
0: थैंक
1: यू
0: राजेश. We close the headlines once again. Benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 250 points. Nifty settles below 24,050. European stock markets display mixed trend, and global crude oil prices fall. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow.

0: और गुड बाय।
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32,00,000 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा।

और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लिम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश और सरकार गठन की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव।
1: देश में हुए 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के नतीजे जो हैं अब हमारे सामने हैं। कल इन सारे असेंबलीज में गणना हुई है। हम आज बात कर रहे हैं 2 खास राज्यों की जिनका डिसाइसिव मैंडेट है, एक हिस्टोरिक मैंडेट भी है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की यदि बात करें, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये अब नंबर्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और आज उसके पास 206 सीटें उन्होंने जीती हैं। ये 2/3 का बहुमत है उनके पास जिससे वो इंडिपेंडेंटली सरकार वहां बना सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस जो अभी तक वहां पावर में थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उनके 80 सीटें हैं। एक असेंबली की 294 सीटें हैं टोटल पश्चिम बंगाल में। एक में फाल्टा में जो है इलेक्शन कमीशन ने रीपोल ऑर्डर किया है, वो बाद में होगा कुछ दिनों के बाद। अदिति जी, मैं आपसे 2 चीजें जानना चाह रहा था। हम तमिलनाडु पर इसके बाद जाएंगे, हम दोनों ही राज्यों के बारे में बात करेंगे, बट जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका क्या मायने हैं इस जीत के बीजेपी के लिए और क्या मायने हैं इस हार के टीएमसी के लिए।
2: देखिए, भाजपा के लिए इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं 2 वजहों से। पहली वजह यह है कि उनका सारा जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है वो बंगाल और बंगाल की जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म है उससे जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ की स्थापना हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे। भाजपा को जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल प्लेज और कमिटमेंट सालों साल रहा आर्टिकल 370 हटाना JNK से, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था जिसको भाजपा ने 2019 में पूरा किया। तो एक तो ये, दूसरा ये कि भाजपा की राजनीति में नेशनलिज्म का बहुत बड़ा महत्व है, हम सब जानते हैं। उनके जो आइकॉन्स हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम के लिरिसिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या श्री अरबिंदो हो, ये सब बंगाल से आते हैं। और हम सब जानते हैं कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो ब्रिटिश ने इसलिए किया था क्योंकि बंगाल की जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है उसको तोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने स्पीचेस में बहुत बार किया है। तो एक तो ये, और दूसरा कारण ये है कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसका सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है हर भारतीय स्टेट में, अगर आप देखें कंपेयर करके करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश से है जहां से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब जब भाजपा यहां जीत चुकी है तो अपने तरीके से इस स्टेट को चला सकती है और उनकी पहली जीत है बंगाल की हिस्ट्री में, तो इसलिए इसका महत्व है।
1: मैं बंगाल पे फिर आपको लेकर आऊंगा, बट उसके पहले हम तमिलनाडु की भी बात करना चाहेंगे, जहां पर टीवी के जो विजय हैं, विजय जो एक्टर हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने 2024 में ये पार्टी लॉन्च की थी और आज इस चुनाव में उनके पास 108 सीटें आ गई हैं। ये एब्सोल्यूट कंप्लीट मेजोरिटी तो नहीं है, वहां 118 सीटों की दरकार है सरकार बनाने के लिए, 234 सदस्यों की असेंबली है, और DMK जो वहां पावर में थी वो 59 सीट्स और AIADMK और उनके एलाइज 47 सीट्स हैं। तो वहां पर जो विक्ट्री है, आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का कुछ अंत जैसा दिखता है, तो इस राज्य के और इस विक्ट्री का आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है अदिति जी कि ये किस तरह की विक्ट्री है, इसके मायने क्या हैं?
2: देखिए, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और एक टेक्टोनिक शिफ्ट है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। अगर आप 1957 से लेकर आज तक की राजनीति तमिलनाडु में देखें तो 2 द्रविडियन पार्टीज ने उसको डोमिनेट किया है। द्रविडियन पॉलिटिक्स क्या है नीलाभ? द्रविडियन पॉलिटिक्स के 2 पिलर्स हैं। पहला तो ये पिलर है कि रीजनल आइडेंटिटी, तमिल आइडेंटिटी की ये लोग बात करते हैं, ये एंटी हिंदी इम्पोजिशन की बात करते हैं, तीसरा सोशल वेलफेयर की बात करते हैं।

0: लार्जली एंटी ब्राह्मणिज्म, एंटी सनातन एंड एंटी जिसको कहते हैं हिंदी पॉलिटिक्स
1: हाँ,
0: रहती है।
1: पश्चिम बंगाल पे वापस आते हैं और तमिलनाडु पर, दोनों पर ही इनफैक्ट, कि अब दोनों ही जैसा है कि अब एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो तो हो गया, इलेक्शंस कैंपेन हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ गए, अब है गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार की बनाने की प्रक्रिया। तमिलनाडु में तो एक दूसरा डायनेमिक्स है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वहां पर सरकार के पास एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, बट पश्चिम बंगाल के बारे में यदि बात करें तो प्रोसेस चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही अनाउंस कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो इसके सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं, साथ ही साथ उनके को ऑब्जर्वर भी हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी जी। तो ये प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट किया है। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव की रैली में भी कहा था कि यदि हमें मैंडेट मिलता है तो हम 10 मई के पहले सरकार बनाएंगे। तो मेरा आपसे ये समझना था कि क्या किस तरह की प्रोसेस होगी, अब क्या कैसे एक चीफ मिनिस्टर के नाम को फाइनलाइज किया जाएगा, और कौन प्रोबेबल है, शुभेंदु अधिकारी जिनके बारे में हम सब जानते हैं, क्या वो इसके सबसे प्रबल दावेदार हैं?
0: जी, शुभेंदु अधिकारी इसलिए दावेदार हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में वो तृणमूल कांग्रेस से आए ममता बनर्जी के बहुत

0: से अच्छे से पहचानते थे और टीएमसी की राजनीति को तोड़ने के लिए कोई अंदर का स्ट्रेटेजिस्ट जरूरी था। जो काम हेमंत बिस्व शर्मा ने भाजपा के लिए नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में किया है, वो भी कांग्रेस से आए थे, आपको याद है, वही काम शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से भाजपा में आए उन्होंने सैफरन फोर्सेस के लिए किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के ज्यादा चांसेस।
1: और जैसा कि अब सरकार बनने की प्रक्रिया है तो जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद नाम फाइनलाइज होंगे और उस तरह से ये प्रोसेस जाएगा, और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंस है इस काम में, तभी शायद गृह मंत्री खुद सेंट्रल, और मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता है कि कभी वो शायद पहले एक किसी इलेक्शन में थे, आप बेहतर बता पाए।
0: नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमित शाह जी को वहां सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाना एक सिग्नल देने के इक्वल है लोगों को कि बंगाल उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कितनी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि अमित शाह पर्सनली लीड कर रहे थे बंगाल कैंपेन को। नीलाब, आप जानते हैं कि वहां स्टेशन थे, पार्क स्ट्रीट में उन्होंने घर ले रखा था, वहीं रह रहे थे, और उनका वहां रहना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो लोगों को ये सिग्नल और ये संदेश देना चाहते थे कि वो बिना किसी भय के बाहर निकलकर वोट करें। और आप जानते हैं कि 90% से ज्यादा बंगाल में जो वोट पड़ा उसका क्लियर बेनिफिट कल भाजपा को देखने को मिला है।
1: तमिलनाडु में जैसा कि हम बात कर रहे थे मैम कि 118 का वहां पर मैजिक फिगर है या सिंपल मेजोरिटी 118 सदस्यों के आने पर होती है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या एफर्ट होगा टीवीके का? आज टीवीके ने सरकार बनाने का क्लेम भी प्रस्तुत किया है, गवर्नर को लिखा है विजय ने, उन्होंने ईमेल किया है उनको एक पत्र और कहा है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है। और मैं कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स को सुन रहा था जहां उनका कहना था कि कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है, कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, IUML, CPI, CPIM और VCK, इनके पास 2 विधायक हैं और DMDK के पास 1, तो क्या यहाँ पर डिले हो सकता है? क्या आपको लगता है ये सरकार आसानी से बन जाएगी?
0: देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति उत्पन्न हुई है तमिलनाडु में। जैसा आपने कहा कि एक्टर विजय, जिनकी सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी है, उन्होंने द्राविडियन पार्टीज को हराकर अब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये जाहिर है। अब उन पर निर्भर है नीलाब कि वो किसका समर्थन लेना चाहते हैं, उनको कोई भी समर्थन देने को तैयार होगा, या अन्ना डीएमके लेड बीजेपी एनडीए अलायंस भी तैयार होगी, कांग्रेस भी तैयार होगी, और जैसा आपने कहा बाकी दल भी तैयार होंगे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विजय एनडीए अलायंस के साथ जाते हैं तो सेंटर में भाजपा रूल होने की वजह से उनको फायदा हो सकता है गवर्नेंस को आसान करने में। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि विजय की जो राजनीति है वो थोड़ी एंटी बीजेपी, एंटी अन्ना डीएमके, उन्होंने अपनी रैलीज में भी इन लोगों के खिलाफ बयान दिए थे, तो आसान नहीं होगा इनके साथ जाना। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस, जिसके पास 5 सीटें हैं, एक VCK पार्टी है तमिलनाडु की, उनके पास 2 सीट्स आई हैं कल, और CPI के पास भी 2 सीट्स हैं, और CPIM के पास भी 2 सीट्स हैं, तो अगर ये चारों इकट्ठे हो जाएं, अपने आप को सेक्युलर ब्लॉक बता रहे हैं ये लोग, ये इकट्ठे होके 11 सीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और TVK को मेजोरिटी लाइन के पार कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
1: बिल्कुल अदिति जी, फिर से आपको बंगाल की एक बात पे ले जाना चाहूंगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि मुद्दे बहुत सारे थे वहां, और बंगाल में हमने देखा SIR का बिल्कुल लास्ट समय तक वहां ट्राइब्यूनल्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है, आपने बॉर्डर का बात किया, पश्चिम बंगाल का, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल दोनों ही का बहुत लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, इन्फिल्ट्रेशन का इशू रहा है, रिवराइन बॉर्डर्स हैं, कई पोरस गैप्स हैं जो आज भी फेंस नहीं है, तो इसके कारण से ये भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की बात है, 15 साल की MC सरकार थी, नौकरियों की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, बिजनेस की हो, सारी बातें हैं। वैसे तो एक ही दिन हुआ है, अभी तो बहुत सारा एनालिसिस फिगर्स का और क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स का बकाया है, बट आपको क्या लगता है, कैसा आप समझते हैं इसको, कि किस तरह से ये मुद्दे लोगों के दिमाग में और उनके एक्चुअल टर्नआउट पे इफेक्ट किए होंगे?
0: देखिए नीलाब, जब इतना बड़ा जनादेश मिलता है किसी पार्टी को तो वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से कभी नहीं मिलता है, हर फैक्टर का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहता है। SIR ऑफकोर्स एक फैक्टर था बंगाल में, कोई उसको नकार नहीं सकता है, और हम सब जानते हैं कि 20 लाख के करीब लोग अभी एडजुडिकेशन में हैं, और बहुत सारे जो बोगस वोट्स थे वो हटाए भी गए हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है जो बहुत पीरियड्स पे होती रही है और ओवर ड्यू थी, और इसलिए हर जगह हुई है और भी स्टेट्स में हुई है। सेकेंड जो फैक्टर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ गया है, वो महिला सेफ्टी को लेकर जो टेंशन थी महिला के बीच, RG कार में जो रेप केस हुआ था उसमें जो ममता बनर्जी का रुख रहा था, वो सिंडिकेट राज जो है, लोगों को पैसा देना पड़ता है काम करवाने के लिए, उससे भी लोग दुखी थे। एक टीचर स्कैम वहां बहुत बड़ा मुद्दा बना, उससे भी दुखी थे। प्लस जो भाजपा ने इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन की बात कही और ये भी प्रॉमिस किया कि 6 महीने में सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, इन सब बातों का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और प्राइमा फेसाइड जब हम डेटा को देखते हैं तो

0: ये पाते हैं नीला कि न सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन भाजपा के पीछे नजर आ रही है, महिलाओं ने भी भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दिया है और ट्राइबल वोट भी बहुत हद तक भाजपा को पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट जो ऐसा माना जा रहा था कि एन ब्लॉक टीएमसी को जाएगा, वो नहीं गया है, तो वो एक विश्लेषण का विषय है।
1: मैं आपसे तमिलनाडु के बारे में भी एक सवाल करना चाहूंगा, बट मैं वो अंत में पूछता हूँ, हम बंगाल पे हैं तो उसी पे। मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि अब उनको मैंडेट आ गया है, 5 साल सरकार उन्हीं ने चलानी है, आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं आप, क्या प्रायोरिटीज होंगी, बीजेपी ने क्या कमिट किया था और अब आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से, जिस तरह से अपनी डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं, सेंटर में भी है, तो ये भी आरोप था केंद्र सरकार का कि जो कई सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको लागू नहीं किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, तो आप मैनिफेस्टो और जो केंद्र सरकार का अपना पॉलिसी है उसको कैसे देख रहे हैं कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा अब बंगाल में?
0: देखिए, सबसे पहली बात जो भाजपा करने जा रही है वो प्रधानमंत्री ने कल अपनी विक्ट्री स्पीच में ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत स्कीम लागू हो जाएगी बंगाल में। सबसे पहला तो वो वेलफेयर स्टेप हो जाएगा लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीच को कल सुने, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कल कि भारत जब गोल्डन एज में था उस वक्त अंग बंग और कलिंग, ये तीन प्रदेश और ये तीन सेगमेंट्स भारत की विकसित यात्रा में बहुत बड़े स्तंभ थे। अंग से मतलब बिहार, बंगाल और कलिंगा ओडिशा। अब इस वक्त एक ऐसा संयोग है कि इन तीनों स्टेट्स में भाजपा की सरकार है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा था कि इन तीनों सेगमेंट्स को हम दोबारा उनकी प्रिस्टीन ग्लोरी, जो प्रीवियस ग्लोरी है, वहां तक लेके जाएंगे, जिसका जाहिर सा मतलब ये है कि इंडस्ट्री को भी लौटाएंगे, इकोनॉमिक रिजुविनेशन करेंगे इन रीजन्स की। क्योंकि आप जानते हैं नीला कि जो बंगाल है वो इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस होता था ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इनरोड्स जो भारत में बनाए थे वो कलकत्ता से ही बनाए थे। कलकत्ता के ट्रेडर्स को ही उन्होंने कोल्यूजन में भारत में एंट्री की थी। तो कलकत्ता एक बहुत रिच रीजन होता था हमारे देश का, इतना रिच होता था कि 10.5% भारत की जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन होता था, जो आज की डेट में 5% से नीचे चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा एक तो इलीगल जितने भी लोग हैं उनको डिपोर्ट करेगी, दूसरा यूसीसी कायम करेगी, वेलफेयर पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेगी, उन्होंने जितने भी ममता बनर्जी के प्रोग्राम्स चलते हैं, लक्ष्मी भंडार स्कीम वगैरह, उनका डबल अनाउंस किया था फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। जैसे अगर ममता बनर्जी 1500 दे रही हैं तो भाजपा ने 3000 का प्रॉमिस किया है, वो सब भाजपा को देना होगा। और मुझे लगता है इकोनॉमिक रिजुविनेशन एक बहुत बड़ा प्लान बीजेपी सरकार का वहां होने वाला।
1: तमिलनाडु पे जाते हैं, टीवी के 2024 की स्थापित की हुई पार्टी है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आम आदमी पार्टी जो न्यूली फॉर्म हुई और उसके बाद तुरंत सत्ता में आई, तो अदिति जी कैसे देखते हैं आप, क्या ये नई पार्टियां एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग विद ब्यूरोक्रेट्स, अफसरों के साथ काम करना, कर्मचारियों के साथ काम करना, तो कैसे देखते हैं आप कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन कर पाएगी एक नई पार्टी, क्या ये बहुत मुश्किल होता है?
0: नीलाब, अगर आप तमिलनाडु की गवर्नेंस देखेंगे तो ज्यादातर वहाँ ब्यूरोक्रेसी ही सरकारें चलाती आई है, और विजय को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करके, और अपनी सूझबूझ से अगर वो चलेंगे तो तमिलनाडु की राजनीति को अच्छे से चला पाएंगे और गवर्नेंस को भी।
1: इन सारे ही मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश और सरकार गठन की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

प्रोग्राम सांझ ढले और सांझ ढले में आपके साथ मैं सुनील।

आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढले। दोस्तों, सदाबहार गीतों की जब बात होती है तो संगीत निर्देशन ज्यादातर पुरुष कलाकारों द्वारा ही किया गया, और जो अभी आपने गीत सुना ये एकमात्र संगीत निर्देशिका रही उषा खन्ना। इनके संगीत निर्देशन में उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आपने आओ प्यार करें फिल्म से गीत सुना आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

प्यार बना अफसाना 1968 में आई ये फिल्म लता ताई, माफ कीजिएगा आशा ताई और रफी साहब की खुरखशिश आवाज में आपने अभी गीत सुना। बस इस छोटे से अंतराल के बाद पुनः आपसे मिलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। दिल्ली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े निर्माताओं, डीलर्स और रिपेयरर्स के लिए लाइसेंस की वैधता अब आजीवन कर दी है, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार है जो माप तौल के नियमों को आसान और कारोबार के अनुकूल बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। श्री सिरसा ने बताया कि इस सुधार के अंतर्गत दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस देने से पहले बहुत स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस स्व घोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे। श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर और भरोसे पर आधारित सिस्टम लाकर जमीनी स्तर पे कारोबारियों को राहत दे रही है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वो आबकारी नीति मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से पेश होने के लिए वरिष्ठ वकीलों को सहायक वकील एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगा। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की अदालत में सुनवाई का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि न्यायाधीश को मामले से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें हितों के टकराव और पक्षपात की आशंका है, लेकिन न्यायाधीश ने स्वयं को अलग करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 8 मई तक के लिए टाल दी है। उन्होंने कहा कि पहले इन नेताओं का प्रतिनिधि

0: प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। इससे पहले केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि वे ना तो खुद अदालत में पेश होंगे और ना ही कोई वकील भेजेंगे। इसका कारण ये था कि न्यायाधीश ने पिछले महीने उनकी स्वयं को मामले से अलग करने की मांग को खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश के बच्चे ऐसे वकील हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सूची में शामिल किया गया है और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए काम मिलता है, जिस मामले में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं। न्यायाधीश ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल किसी पक्ष के शक के आधार पर न्यायाधीश खुद को मामले से अलग नहीं कर सकते। एमिक्स क्यूरी ये व्यक्ति या संस्था होती है जो मामले का पक्षकार नहीं होती, लेकिन अदालत की मदद के लिए जानकारी या विशेषज्ञ राय देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राज्यतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
2: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: दिल्ली नगर निगम की उप महापौर मोनिका पंत ने आज एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कालकाजी वार्ड में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा और समस्याओं का समाधान करने के लिए निरीक्षण किया। श्रीमती पंत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अग्रवाल धर्मशाला रोड के किनारे अवैध अतिक्रमण को मौके पर ही हटा दिया गया। उन्होंने अनधिकृत स्ट्रीट वेंडिंग और सार्वजनिक स्थानों को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती पंत ने अतिक्रमण को और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने और किसी भी चूक के लिए जवाबदेही तय करने की बात कही। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज कहा कि दक्षिण दिल्ली के अनेक इलाकों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीनों को मिली जमीन पर बनी कॉलोनियों को नियमित किया जाए। श्री बिधोड़ी ने इस संबंध में दिल्ली के उद्योग और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भेंट की। बैठक के दौरान श्री बिधोड़ी ने दिल्ली के जौनपुर में सिंगापुर की मदद से बनने वाली वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के संपूर्ण खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेन ने 3 करोड़ यात्रा का आंकड़ा पार कर लिया है। एनसीआरटीसी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अपनी उत्कृष्ट यात्रा सेवा से नमो भारत ट्रेन ने यात्रियों के विश्वास को लगातार जीता है, जो यात्री संख्या में भारी वृद्धि के रूप में साफ दिखाई पड़ता है। एनसीआरटीसी ने बताया कि तेज गति के साथ साथ नमो भारत में यात्रा के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5,650 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
3: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
5: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में आज सीआर पार्क स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने इस जीत को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता का विश्वास विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में ही है। श्रीमती गुप्ता ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का विरोध किया था, बंगाल की माताओं बहनों ने उन्हें अपने वोट की ताकत से हराया है।
6: सही मायने में यह मानती हूँ कि जिस जिस नेता ने जिस जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुट्ठी खानी पड़ी। चाहे वो डीएमके के स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है। ये जीत महिलाओं की जीत है, माँ काली के आशीर्वाद से बंगाल की जीत है, देश की जीत है, देश के विकास की जीत है, और इस सब के कारण से विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि इस जीत से बंगाल की विरासत और संस्कृति को आगे ले जाया जाएगा।
7: पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
1: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक झालमुड़ी कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का उत्सव मनाया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि झालमुड़ी अब केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की विजय का प्रतीक बन चुकी है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जन भावनाओं के सम्मान और लोकल के लिए वोकल के संकल्प की विजय है।
8: पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है, और इस विजय में हम सबका ऐसा मानना है कि झालमुड़ी का अपना एक विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल उत्पादों को बहुत प्रमोट करते हैं। जब वो बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो उन्हें झालमुड़ी की दुकान दिखाई दी, और वहां जाकर के उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक बहुत छोटे से व्यक्ति से झालमुड़ी मांगी, और ममता बनर्जी ने इस झालमुड़ी का उपहास किया, और आज इसी झालमुड़ी ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और कार्य आधारित धोखाधड़ी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे साइबर ठगों के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में शामिल थे। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज नई दिल्ली में मातृत्व और शिशु देखभाल संबंधी कानूनों पर एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
9: बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने की। आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस परामर्श बैठक का उद्देश्य मातृत्व अधिकारों का समर्थन करने और सुरक्षित, समावेशी तथा उत्तरदायी शिशु देखभाल से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें तैयार करना है। इसके साथ ही बैठक में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण उपायों पर भी चर्चा की गई। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के विवेक विहार में हुई अग्नि दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस दुखद घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने भलसवा डेयरी के मुकुंदपुर क्षेत्र में एक खुले नाले में गिरने से हुई बच्ची की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए श्रीमती

ने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अनुबंध पर रखे जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने छठे ओवर में 2 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं। दिल्ली और चेन्नई ने अब तक प्रतियोगिता में 9-9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5-5 मुकाबलों में दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेली जा रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के महिला वर्ग में कल राजस्थान की अंजलि शेखावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा हरियाणा की कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर महिला वर्ग और 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ विमेंस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राजधानी में आज दिन के समय धूप के साथ धीमी हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और सुबह तथा दोपहर के समय हल्की बारिश होने की भी आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मिशन सरकार के 5F विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइंस क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं, वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों से गुजरात में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी ने सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमसिस्वयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। पार्टी नेता बिमल शंकर नंदी ने आकाशवाणी से कहा कि ममता बनर्जी गतिरोध पैदा करने और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी अवांछित स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान मौजूद है। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। वियतनाम के राष्ट्रपति ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of 5,660 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision.
1: 5,660 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना. ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F. फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना.
2: The minister said it aims to develop high-yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests, while promoting the large-scale adoption of modern crop production technologies. These efforts will be implemented through state government's Krishi Vigyan Kendra and state agricultural universities. The mission also seeks to ensure the supply of low-contaminant cotton to the industry and promote high-quality cotton exports. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. Political activities have intensified for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal assembly elections, preparations are in full swing for the formation of the new government and the oath-taking ceremony in the state. The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the ceremony. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. In Kerala, the Congress-led UDF is holding informal discussions on the formation of a government.

0: कोट खरा सोना।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम मधुरिमा के साथ पुनः आपसे हम जुड़ रहे हैं। रात के 8:11 और 4 सेकंड। हमारे सभी सुधी श्रोता इस प्रोग्राम का करते हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार, क्योंकि इसमें संगीत के साथ साथ जिन रागों पर वो गीत पिरोए गए हैं उनकी भी हम बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं राग यमन की।

राग यमन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय कल्याण थाट का संपूर्ण और शाम के समय गाया जाने वाला राग है। जिसमें तीव्र म का प्रयोग होता है और अन्य सभी इसके जो स्वर हैं वो शुद्ध होते हैं।

राग यमन की बात हो रही है आज कार्यक्रम मधुरिमा में। और जैसा कि हमने बताया आपको कि कल्याण थाट का हिंस

पुराने शास्त्रीय संगीत का यह अत्यंत लोकप्रिय राग है। इसमें तीव्र म का प्रयोग होता है और अन्य सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध होते हैं। वादी स्वर इसका ग है और संवादी स्वर नी है। ये प्रसन्न और रोमानियत से भरा हुआ राग है।

रागमन में आरोह नी रे ग म प ध नी सा और अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। इसमें पकड़ नी रे ग प म ग रे सा है। यह यमन शुद्ध म का अल्प प्रयोग किया जाता है जो इसे यमन कल्याण कहला जाता है। इसके गायन का जो सबसे उपयुक्त समय है वो रात्रि के शुरुआती घंटों में किया जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा और आज बात राग यमन की। राग यमन को कल्याण थाट और ईमान और कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। राग यमन की मुख्य पहचान इसमें प्रयुक्त तीव्र म है, जबकि अन्य स्वर इसमें शुद्ध होते हैं। इसकी पकड़ नीरेगा रेगा पमागा रे नीरे सा की स्वर संगति इस राग को बहुत ही खूबसूरत बढ़ा देती है। ये एक शांत और सुखद राग माना जाता है, तो शुरुआती संगीतकारों के लिए सबसे पहले सीखे जाने वाले रागों में से एक है।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति, और श्रोताओं को नमस्कार।
0: इसके बाद नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। कल मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। भारत आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर कायम। यश खंडागले ने आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2 रजत 1 कांस्य पदक समेत कुल 3 पदक जीते। और एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंडर 15 और अंडर 17 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है।

0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 12 ओवर में 5 विकेट खोकर 73 रन बना लिए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें स्थान पर है, तो शबाब अनवर ये मुकाबला जो है ये तय करेगा कि छठे स्थान पर किसकी दावेदारी अधिक मजबूत होने जा रही है।
1: जी हाँ बिल्कुल, और देखिए किस तरह से ऊपर में भी जो चार टीमें हैं अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है, तो बहुत जबरदस्त कशमकश है। और आज की जीत किसी न किसी का कहा जाए कि काम खराब तो करेगी ही।

0: और ज्यादातर चांस तो अभी यही लग रहा है पहली नजर में कि चेन्नई सुपर किंग जिस तरह से बिना महेंद्र सिंह धोनी के मैदान में उतर रही है और तब तक उतरती रहेगी, जो खेलती रहे महेंद्र सिंह धोनी बाहर रहेंगे तब तक जीतती रहेगी टीम। और आखिर के कुछ मुकाबलों में आप देख सकते हैं जरूर, जब क्वालिफिकेशन राउंड हो जाएगा तो एक बाहर से बैठ करके जो आशीर्वाद महेंद्र सिंह धोनी का मिला है इस टीम को, वो उसके बदौलत टीमें जा रही हैं आगे, टीम जा रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, उनके जो स्पिनर्स हैं खास तौर से किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज पहली बार पूरे आईपीएल में ये देखने को मिला कि शायद बॉलर्स भी डोमिनेट कर रहा है। अभी तक तो बॉलर्स की हालत बड़ी खराब थी गेंदबाजों की इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज लगा कि हाँ गेंदबाजी भी है। और ये गेंदबाजी खास करके स्पिनर्स अगर आपके पास है अच्छे, आपने अकील को भी शामिल कर लिया और उसके बाद नूर और बहुत सारे और भी नाम है जो कोई मध्यम गति की भी तेज गेंदबाजी करते हैं विकेट कीपर को करीब में रख करके, तो वो जो पैनापन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बल्लेबाजी तो आप जानते ही अच्छी है, ये दो शतक नाम है संजू सैमसन के सीजन में, तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से कम बैक किया है इस टीम ने वो काबिले तारीफ है।
1: जी बिल्कुल, आपने महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र किया यहाँ पे, इसी तरह मुंबई इंडियंस के लिए फैक्टर रोहित शर्मा बनकर उभरे और कल जिस तरह रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की शानदार पारियों ने मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पर एक शानदार जीत दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: अब तक सीजन में अपनी लय तलाश रही मुंबई इंडियंस के लिए कल का दिन राहत की खबर लेकर आया। सबसे पहले वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा की टीम में वापसी ने टीम को मजबूती तो दी ही, साथ ही टीम के समर्थकों को भी खुश कर दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एलएसजी ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए। निकोलस पूरन ने सर्वाधिक 63 रन बनाए, जबकि मिचेल मार्श के 44 और हिम्मत सिंह के नाबाद 40 रन ने टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कॉर्बिन बोश ने मुंबई के लिए सर्वाधिक 2 विकेट लिए। 229 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई में रोहित और रिकल्टन की सलामी जोड़ी ने 11 ओवर में 143 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी कर टीम के लिए जीत की राह आसान कर दी। रिकल्टन 32 गेंदों पर 83 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरे छोर से हिटमैन के बल्ले ने रनों की बारिश जारी रखी। रोहित ने 44 गेंदों पर 84 रन की पारी खेलकर न सिर्फ टीम की जीत की स्क्रिप्ट लिखी बल्कि एमआई की प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जीवित रखा। मुंबई ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। रियान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स।
1: शबाब, आपकी टीम के सबसे बड़े चेहरे का, सबसे बड़े खिलाड़ी का पवेलियन में होना, डगआउट में होना और फील्ड में होना, क्या अंतर होता है? कल नजर आया,
0: क्या साफ तौर पर नजर आया। 5 मैच में मैं क्यों नहीं, रोहित शर्मा को खिलाया गया तो उनका टीम मैनेजमेंट ही जानता है। और एक बड़े मुकाबले का बड़ा खिलाड़ी

0: लेकिन यहां पर जिस तरह की मुंबई इंडियंस की बात है, फ्रेंचाइजी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है, क्रिकेट कमेटी ही सारे फैसले लेती है। रोहित शर्मा को आप बैठाते हैं और फिर ये कहिए कि जब सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जब अच्छा नहीं कर रहे थे, आखिरकार हार्दिक पांड्या नहीं खेले कल के मुकाबले में, तो रैकेल्टन निरंतरता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों ने चार बार इस तरह का की साझेदारी की है, पहले विकेट के लिए ये चौथा मौका है। तो इन दोनों की जोड़ी काफी फिट थी, रैकेल्टन और रोहित शर्मा की, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें विश्राम दिया गया। कल रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि वो अभी इस मूड में नहीं है कि वो बैठे बाहर।
1: जी बिल्कुल, एक फ्रेश लग की तरह आए और उसी तरह की पारी, और कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि ये खिलाड़ी 39 वर्षों का था और एक शानदार पारी बिल्कुल युवाओं को टक्कर देती हुई।
0: बिल्कुल,
1: भारत ने आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर आ गई है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए टी20 विश्व कप खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था, साथ ही रिकॉर्ड तीसरी बार भारत ने खिताब अपने नाम किया था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। अगर आज हम देखते हैं कि भारत टी20 की इतनी सफल टीम बना है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रेडिट इस लीग को जाता है, जिसने भारत को, हम कार्यक्रम से पहले बात भी कर रहे थे कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, इतनी टीमें तैयार करके दे दी हैं आज के वक्त पे।
0: जी हाँ, उनका नाम लेकिन बहुत कम लिया जाता है। आप जो पहले आप देख सकते थे, जो आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अब बन चुका है बेंगलुरु में, वहां पर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने जो मेहनत की है नई पौध के साथ, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की क्रिकेट अब भारत के पास तीन तीन टीम एक साथ तैयार है। तो ये इन दोनों की मेहनत है और इसमें बीसीसीआई ने निश्चित रूप से काफी अच्छा काम किया है, खास करके अभी जो उनकी बॉडी है, और इन खिलाड़ियों को खोजना और सिर्फ टीम बनाने से काम नहीं चलता है। देखिए एक्सपोजर कितना मिला है इन लोगों को, विदेशी दौरे लगातार जूनियर टीम के होते रहते, इस बार जो भी जब भी मौका मिलता है किसी न किसी टीम को भेज दिया जाता है, एशिया कप आप देख लीजिए, फिर उसके बाद अभी ओलंपिक में भी टीम जाएगी। तो टीम खिलाड़ी जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से निकल रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं कि बैठे हुए हैं, बल्कि एक तो उनको लीग खेलने का मौका मिल रहा है, आईपीएल के अलावा भी कई ऐसी लीग है हमारे देश में जहां कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, तो वो लगातार उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है। तो यही कारण है कि ये जो रिपोर्ट आई है, रैंकिंग आई है, ये वार्षिक है एक तरह से अगर देखा जाए। आपने कितने इंटरनेशनल आईसीसी खिताब जीता, फिर उसके बाद आपने खास करके बायलेटरल सीरीज से कितनी जीती है, जिसमें बायलेटरल आप जानते हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है, तो उन सबको मिला करके सारे अंक इकट्ठा करके ये एक वार्षिक रिपोर्ट एक तरह से आईसीसी तैयार करता है। वो दर्जाबंदी होती है टीमों की, जिसमें भारत इंग्लैंड से काफी आगे है।
1: जी बिल्कुल, काफी आगे है और उम्मीद होगी कि भारत इसी बढ़त को, इसी प्रदर्शन को आगे भी बरकरार रखे। यश खंडागले ने मिस्र में आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में दो रजत और एक कांस्य पदक समेत कुल तीन पदक अपने नाम किए। 18 वर्षीय यश ने पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। एक रिपोर्ट।
2: यश खंडागले ने सभी उम्मीदों को धता बताते हुए 309 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाया, जो हाल के वर्षों में जूनियर स्तर पर किसी भारतीय भारोत्तोलक द्वारा किए गए सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक है। उनके पदकों में स्नैच में 140 किलोग्राम के भार के साथ रजत पदक, क्लीन एंड जर्क में 169 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक और कुल भार को मिलाकर एक रजत पदक भी शामिल है। ये तीनों पदक इस युवा खिलाड़ी की निरंतरता और प्रतिस्पर्धी परिपक्वता को दर्शाता है। खंडागले ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कुल भार में 9 किलोग्राम का सुधार किया, जो इस खेल में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जहां मामूली प्रगति को अक्सर एक एक किलोग्राम में मापा जाता है। पहले 65 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले खंडागले ने 2025 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 273 किलोग्राम का कुल भार दर्ज किया था, जिसमें 123 किलोग्राम स्नैच और 150 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क शामिल था। भार वर्ग में ऊपर जाना और एक साल के भीतर अपने कुल भार में 30 किलोग्राम से अधिक की वृद्धि करना की ताकत और फिटनेस में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: पिछले दो वर्षों में इस खिलाड़ी का वजन 6 किलो बढ़ा, लेकिन इसने जो भार उठाया वो उससे भी 5 गुना अधिक था और वो 30 किलो था।
0: जी बिल्कुल, ताकत और वजन जो रिपोर्ट में बताया गया बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और देखिए 2030 में जो कॉमनवेल्थ या फिर उससे पहले जो एशियन गेम्स होने हैं उसमें इस खिलाड़ी का काफी दबदबा रहेगा, क्योंकि वेटलिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल मिलते रहे हैं।

0: और अब बारी तो नई पौध की है, नए एथलीटों की है, नए खिलाड़ियों की है, तो इसमें से एक उभरता हुआ नाम निश्चित रूप से।
1: जी बिल्कुल, हमें उम्मीद होगी कि यश नाम का ये खिलाड़ी आने वाले समय में और भी बड़ी प्रतियोगिताओं में इसी तरह
0: बिल्कुल
1: अपना जोहर दिखाता हुआ नजर आए। एशियन मुक्केबाजी अंडर 15 अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने उज्बेकिस्तान में शानदार प्रदर्शन के साथ अपना अभियान जारी रखा। अंडर 17 लड़कों की प्रतियोगिता में यश यादव ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि करुण एल्बर्टसन कोम ने 4-1 से जीत दर्ज की। गोपाल रामेश्वर गणेशन ने भी अपना मुकाबले में जीत दर्ज की। प्रशांत मिश्रा को चीन के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। वहीं लड़कियों के अंडर 15 क्वार्टर फाइनल में खुशी राणा ने वियतनाम की नाओ ट्रू गेन के खिलाफ पहले ही राउंड में जीत हासिल की, जबकि हंसिका अत्री ने उज्बेकिस्तान की विसोला को 5-0 से हराया। लड़कों के अंडर 15 वर्ग में समीर बोहरा ने 5-0 की शानदार जीत दर्ज की है। वहीं अंडर 17 महिला मुक्केबाजों ने काफी शानदार प्रदर्शन जारी है और पहले ही दिन 5 शानदार जीत इन खिलाड़ियों के हिस्से आई है। तो भारतीय सीनियर टीम में जिस तरह से इसके पहले देखा जाए एशियन चैंपियनशिप निकली है, ये टीम भी उसी रास्ते पर नजर आती हुई बिल्कुल शबाब।
0: यह बहुत जल्दी और सीनियर लेवल पर अगर देखा जाए तो इसमें से कई खिलाड़ी नजर आएंगे और ये एक तैयारी है आने वाले वर्षों में। जैसा कि हम भारोत्तोलन की बात कर रहे थे, तो ये भी एक ऐसा खेल है जिसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतता रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी या फिर जो संबंधित खेल संघ हैं नई पौध को अच्छी तरीके से तलाश कर रहे हैं। और आपको जब तक पूरी तरह से उत्साह नहीं आपका बढ़ाया जाता, सिर्फ ऐसा नहीं कि जबानी ही बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है, खेल के बजट में काफी वृद्धि की जा रही है और खेलो इंडिया जैसा मंच, फिट इंडिया जैसा मंच खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, तो उससे काफी आप देखिए जूनियर खिलाड़ी कितनी संख्या में निकल रहे हैं। और पहले यह होता था कि जूनियर खिलाड़ी जूनियर वर्ग में रहकर ही आमतौर पर रिटायर हो जाए करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि उनका प्रदर्शन इतना अच्छा है कि वो बहुत जल्दी सीनियर वर्ग में जाकर के अच्छा प्रदर्शन वहां भी कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर वर्ग में भारत के लिए पदक जीत रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ा परिवर्तन।
1: जी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन और ऐसा खेल जहां पे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी स्किल दोनों का एक तालमेल देखने को मिलता है, ये खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा बीडब्ल्यूएफ महिला सिंगल्स विश्व रैंकिंग के शीर्ष 20 में पहुंच गई हैं। उन्होंने 19वां स्थान हासिल किया है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद वो ये कीर्तिमान रचने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। तो हम लगातार कुछ ऐसे खिलाड़ियों की उम्मीद कर रहे हैं बैडमिंटन में जो वापस आए, उस बैटल को नई आग दें, खिलाड़ी वो काम कर रही है।
0: उन्नति देखिए एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनकी हार से दुगनी उनकी जीत है। अगर आप उनका कैरियर स्टेट से देखें तो 77 जीत अभी तक उनके कैरियर में, हारी केवल 40 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 सुपर 100 का खिताब उनके नाम है, फिर उसके बाद 2 इंटरनेशनल खिताब उनके नाम है और लगातार निरंतरता के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, केवल 18 वर्षीय, और जिस प्रकार से उन्होंने 2 महान खिलाड़ियों के बाद ये तीसरी खिलाड़ी बनी है टॉप 20 में आने वाली, तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। 17वीं फिलहाल उनकी ये रैंकिंग है जो सर्वश्रेष्ठ है उनके लिए अभी तक।
1: जी बिल्कुल, और उम्मीद होगी कि आने वाले समय में ये रैंकिंग थोड़ी थोड़ी और घटे जिस तरह उनके किताबों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में 16 सदस्यीय भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। इस प्रतियोगिता का समापन 10 मई को होगा। दूसरे चरण में 44 देशों के 300 से अधिक तीरंदाज निशाना साधते हुए नजर आएंगे और क्योंकि एशियाई खेल ही होने हैं तो ऐसे में ये टूर्नामेंट की महत्व और भी बढ़ जाता है। सीजन के पहले टूर्नामेंट में भारत को खाली एक महिला कंपाउंड टीम के मेडल से संतोष करना पड़ा था, तो उम्मीद होगी कि इस बार भारत अपने मेडलों की संख्या को बढ़ाएगा और उस चमक को भी और धारदार करने की कोशिश करेगा।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। शबाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2024

0: 26-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय

0: मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
3: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
5: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। यह सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity.

0: 만탄.
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है और आज के इस नए अंक में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, विश्व में एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभरता भारत। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परीक्षित निर्भय जी जुड़ चुके हैं। परीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
1: परीक्षित जी, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल या मेडिकल टूरिज्म है, इसके पूरी दुनिया में बढ़ने के ट्रेंड को देख सकते हैं कि पूरा जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का एक बाजार है, वो आंकड़ा कहता है कि 2022 में जो 115 अरब डॉलर था, वो 2030 तक संभावना है कि 270 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के तौर पर उभर रहा है लगातार। और एक आंकड़ा ये है कि 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म का पूरा अनुमान है वो लगभग 8 अरब डॉलर के आसपास था, जो उम्मीद है कि 2030 तक

0: 16 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच सकता है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की तरक्की को और किस तरह से भारत एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है?
1: जो आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो बहुत स्पष्ट है, और जिस तरीके से हम अपना इतिहास देखेंगे और पिछला कुछ दौर देखेंगे उसका कंपेयर करेंगे, तो ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये आंकड़ा हम तय समय में हासिल कर पाएंगे।
0: जी,
1: चिकित्सा पर्यटन की बात है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का जो इतिहास है वो हम तीन भाग में देखते हैं। पहला भाग है साल जो 2000 है उससे पहले का, उसके बाद का जो इतिहास आता है वो 2000 से 2014 के बाद का आता है, और 2014 के बाद का एक अलग इतिहास रहा है हमारे देश का। चिकित्सा का इतिहास चूंकि हमारे सदियों पुराना है, आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, हम इसमें हमेशा से आगे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने ही सर्जरी के लिए कल्पना दी, सर्जरी का आचार्य सुश्रुत हमारे ही हैं। एक जब साल दर साल हम इसकी स्थिति देखते हैं तो 1960 से शुरू होता है, मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है, 2001-2002 के आसपास, तब तक चिकित्सा पर्यटन अपनी एक गति से चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा ऐसी गति नहीं थी, चल रहा था, लोग आते थे, बहुत लिमिटेड आते थे। मुझे याद है 1990 के बाद भारत में सबसे जल्दी से अस्पताल बनना शुरू हुए, उससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने इंडिया में नहीं थे, सबसे बड़ा दिल्ली में अपोलो बना था 99 के आसपास, उसके बाद ये चीजें बढ़ी। तो 2002 के आसपास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने मिलकर, और भारतीय उस समय ये था भारतीय उद्योग परिसंघ, इन लोगों ने मिलकर उस समय एक मुद्दा उठाना, पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट से अपील करना शुरू किया कि भाई चिकित्सा पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब किन्हीं कारणों के चलते सरकार ने उस पर संज्ञान तो लिया, पर वो जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं हुई। अब बात आती है 2014 की, धीरे धीरे जब वक्त 2014 का आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले क्या किया कि हेल्थ के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा, एक आयुष मंत्रालय शुरू किया। आयुष मंत्रालय शुरू करते करते इनका एक दो साल बाद ही इन्होंने चिकित्सा पर्यटन पे काम करना स्टार्ट किया। चिकित्सा पर्यटन पे काम इस कदर इनका शुरू हुआ कि आज आप देखिए कि भारत जो है वर्तमान में टॉप 10 शीर्ष जो देश हैं चिकित्सा पर्यटन के उनमें से एक है। इसी तरीके से आंकड़े जो आपने बताए, इसमें कुछ आंकड़े मैं भी अगर जोड़ू आपसे बताऊं, तो दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस जो पर्यटन बाजारों में भारत 12वें स्थान पर है। एशिया प्रांत क्षेत्र में बात करें तो टॉप 10 शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से 5वें स्थान पर भारत है। भारत की आज स्थिति यह है कि तकरीबन 80 से ज्यादा देशों के मरीज हर साल आ रहे हैं और उपचार करा रहे हैं यहाँ पर। भारत के लगभग जितने भी शीर्ष प्राइवेट अस्पताल की जो चयन है, इन सबके लगभग सभी जगह पर इंटरनेशनल पेशेंट को लेकर रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंटेड है। हम दिल्ली में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां पर ये लोग कई तरीके की फैसिलिटी हैं, इंश्योरेंस से लेके और सारी चीजें हैं। सरकार भी कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे आपको पता हो हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले आयुष वीजा हुआ था, ई मेडिकल वीजा हो गया, जो इनका वीजा का प्रोसेस या बाकी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है पेशेंट की, वो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो है वो भी काफी आसान किया है भारत सरकार ने। साथ के साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें और उनका इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको स्वीकारता बने, उसके लिए भी सरकार ने गुणवत्ता और मानकीकरण पे काम किया।
0: बिल्कुल,
1: आज इसका जो परिणाम है वो ये कि अधिकांश हॉस्पिटल के पास में NABH यानी इसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, इनका प्रमाण पत्र हासिल है। ये प्रमाण ये बताता है कि ये अस्पताल ए ग्रेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था से लेके उपचार तक सबसे बेहतर ये व्यवस्था है।
0: परीक्षित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं मेडिकल टूरिज्म में, एक तो होता है डायग्नोस एडवांस सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और दूसरा है जैसा कि आपने बात की वेलनेस, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों में भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो जिसमें जटिल से जटिल इलाज लेने की ओर लोग भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया भारत लगातार आयुष को बढ़ावा दे रही है, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसमें कि होम्योपैथी, यूनानी पद्धति, अलग अलग पद्धतियां शामिल हैं, तो हर स्तर पर मेडिकल और वेलनेस पर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो कैसे आप देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो रहा है?
1: बिल्कुल हो रहा है, उसकी वजह ये भी है, देखिए स्वास्थ्य को या चिकित्सा को आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से नहीं देख सकते, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें चिकित्सा उपकरण भी आते हैं, इसमें इलाज भी आता है, इसमें जांच भी आती है, इसमें इलाज के भी कई सारी विधियां आती हैं, और बात यहाँ सिर्फ एलोपैथी या आयुर्वेदा की नहीं है। आप ये देखेंगे कि भारत

0: सरकार ने होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, आयुष को मतलब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत अप्रोच के साथ में जो पहल की है। आज हम किसी भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ एलोपैथी नहीं, हमको आयुष का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हमको हर तरीके की पैथी है एक ही छत के नीचे। चूज हमें करना है कि हमको किस पैथी में जाके अपना उपचार करना है। ये अप्रोच बहुत ही अच्छी अप्रोच है और मुझे नहीं लगता, मैं इतनी कंट्री में मैंने देखा है कि इस तरीके की अप्रोच दूसरे देशों में है। दूसरी बात, सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाई थी चिकित्सा पर्यटन को लेकर, मुझे बहुत वो पसंद आई। उसका था हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, मतलब भारत से मरहम लीजिए और भारत में मरहम लीजिए, दोनों बात है। तो चिकित्सा पर्यटन के नाते आप भारत में आइए, यहाँ उपचार कराइए, अच्छा गुणवत्ता वाला उपचार लीजिए। और भारत से मरहम का मतलब भारत के जो स्टाफ है, भारत का जो डॉक्टर है, भारत के जो नर्स हैं, उनके देशों में अपॉइंट करने के लिए, तैनात
1: बिल्कुल
0: करने के लिए उन देशों से वो करा। तो ये योजना जो है कि मतलब सिर्फ हम अपने घर में ही नहीं दे रहे हैं, हम आपके घर में आके भी आपको इलाज देने की
1: बिल्कुल
0: व्यवस्था कर रहे हैं।
1: निश्चित तौर पर। और भारत में जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका एक और अहम कारण ये माना जाता है कि भारत में चिकित्सा को लेकर एक बहुत पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने भी अस्पतालों, डॉक्टरों का जिक्र किया, तो आंकड़ा कहता है कि भारत में लगभग 70,000 के आसपास अच्छे अस्पताल हैं, जिसमें कि लगभग 43,000 के आसपास निजी अस्पताल और 25 से 26 हजार के आसपास सरकारी अच्छे अस्पताल हैं। और डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से ऊपर है जो प्रशिक्षित और सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा भारत में जो चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, उसका भी एक बहुत भरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कैसे भारत का जो
0: बिल्कुल
1: पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इकोसिस्टम है, वो भारत को एक दुनिया में बड़े मेडिकल हब के रूप में बनाता है और आगे आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना है। जैसा कि सरकार भी मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो कैसे आने वाले समय में इस इकोसिस्टम के और मजबूत होने से जो भारत का एक मेडिकल हब बनना है, मेडिकल टूरिज्म बनने की दिशा में एक कदम है, वो और आगे बढ़ेगा।
0: जी। देखिए, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आजाद भारत का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमें आज आजाद हुए 70-75 साल हुए हैं और हमने जो अप्रोच ली है ये पिछले 10-12 साल की अप्रोच है। और इस 10-12 साल की अप्रोच में हम देखिए कहाँ आके खड़े हो गए, टॉप 10 शीर्ष 10 देशों में हम शामिल हो गए। इसी अप्रोच के साथ अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो ये पूरा भरोसा है कि हम पहले या दूसरे स्थान पर होंगे। उसकी वजह, हमारे पास में क्वालिटी है, हमारे पास में क्वांटिटी है यानी संख्या है डॉक्टरों की, हमारे पास में इंस्टीट्यूट है। देश में जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 750 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी, जो कि ये शायद दूसरा या तीसरा स्थान आता है पूरे दुनिया में भारत का। जो हम डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज्यादा MBBS सीटें हमारे पास में है और आयुष और इसको लेके भी हमारे पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो कहने का मतलब हम स्टाफ में भी ध्यान दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू वो पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं जिससे बाहर के मरीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको सहूलियत हो। जैसे कई देशों में अभी देखते हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, है ना। ईरान और इराक और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री ऐसी हैं, यहाँ के लिए हमने हमेशा ही अपना दरवाजा खोल के रखा है। और जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें 2014 के बाद से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जो मेजर सर्जरी हुई है, जो मतलब करिश्माई सर्जरी बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा इराक और ईरान और अफगानिस्तान के लोगों की हुई है। किसी मैंने देखा था, ये दिल्ली में महसूस भी किया है कि कोई वहां पर जब जंग हुई, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, जब वो लोग आए और उनको हमने वो सब चीजें दी है, नए ऑर्गन डेवलप करके उनको दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और वैसी सर्जरियां शायद कभी हुई भी नहीं थी वर्ल्ड में, तो हमारे पास वो क्षमताएं हैं।
1: और अभी अगर हम इस बार के बजट की ही बात करें परीक्षित जी, तो भारत सरकार ने भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से या भारत में जो चिकित्सा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसमें सबसे बड़ी घोषणा तो ये थी कि भारत में 5 बड़े रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जिसमें कि रिहेबिलिटेशन से लेकर रिसर्च और इलाज तक की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे ही बड़े अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र की भी शुरुआत करने की घोषणा है। और साथ ही सरकार ने जो अलग दूसरे देशों से आने वाले नागरिक हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने की जो घोषणाएं की हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं और जो भी तमाम प्रयास हैं, उनसे कैसे आने वाले समय में और भी ये मेडिकल टूरिज्म का एक पूरा ढांचा है और मजबूत हो रहा है।
0: बाहर से जो पेशेंट आ रहा है वो इंडिया आ रहा है, तो उसको हमें एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि उसके लिए सुरक्षित, गुणवत्ता वाला, आसान भरा और सस्ता, ये एक मैसेज देने की सरकार कोशिश की और सरकार सक्सेस भी रही, सफल भी हुई है इसमें। जो बजट में जिस तरीके की उन्होंने घोषणाएं की हैं, इससे बहुत फायदा भी मिला है। इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि more than 40% इंक्रीज हुआ है इनका चिकित्सा पर्यटन का जो डेटा है, और मतलब 40% से ज्यादा

0: इजाफा हुआ है बाहर से आने वाले मरीजों के संख्या में। तो जब सहूलियत होती है तो हर बंदा उसको अप्रोच को स्वीकार करता है, सरकार भी उसी दिशा में जा रही है और बहुत अच्छी दिशा है ये। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी, मतलब 2030 तो मैं बहुत ज्यादा आगे बता रहा हूँ, ये 2027-28 तक ही आप देखिएगा कि हमारा जो डाटा होगा, हमारे पास जो पेशेंट की संख्या होगी, हमारे पास जो सुविधाएं होंगी, उनमें बहुत तेजी से बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि अलग अलग कंट्री में अपने सेंटर भी खोले हैं, चाहे वो सरकार के जरिए हो या प्राइवेट हॉस्पिटल खुद डायरेक्ट वहां सेंटर खोल रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि हम आपके घर पहुंच गए, वहां वो अप्रोच कर रहे हैं, वहां वो बता रहे हैं देखिए आप भारत आइए तो ये तरीके का आपको इलाज मिलेगा, इतना सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में अमेरिका या बाकी कंट्री का तुलना करेंगे तो भारत में इलाज वाकई सस्ता है। डॉलर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो भारत का इलाज बहुत सस्ता है। आज भी भारत में 3 से 4 लाख रुपए में हार्ट की सर्जरी हो रही है, जो कि अमेरिका में उसी हार्ट की सर्जरी का, मुझे अच्छे से याद है कि इसके लिए 12 से 15 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन पेशेंट के लिए भारत सबसे सस्ता और किफायती है।
1: और इसका एक आर्थिक पक्ष भी अगर हम परीक्षित जी देखें, तो जब एक पर्यटक आता है तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ऐसे ही अगर मेडिकल टूरिज्म
0: बिल्कुल
1: भारत में बढ़ता है तो उससे निश्चित तौर पर भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। और पर्यटन मंत्रालय का आंकड़ा भी है 2024 का कि मेडिकल टूरिज्म की भारत में जो जीडीपी में योगदान है वो 5% से ज्यादा रहा है। तो कैसे आगे आने वाले समय में आर्थिक तौर पर भी भारत का बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म फायदा पहुंचाएगा?
0: देखिए, इस आंकड़े को अगर सजीव तरीके से देखना है तो खास तौर पे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं आपको गुड़गांव का बता सकता हूँ, दिल्ली का बता सकता हूँ कि गुड़गांव में अगर मेदांता अस्पताल है तो उसके आसपास जब
1: जी
0: भी आप जाएंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कई तरीके के पीजी, कई तरीके के जो है रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: किराए पे दिए
1: बिल्कुल।
0: जा रहे हैं, कई तरीके के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, और वहां पे इंटरनेशनल पेशेंट रहते हैं और
1: रहते हैं
0: बाकायदा सेफली है, सुरक्षा महसूस करते हैं। प्लस वहां जो आसपास के जो दुकानदार हैं उनका खाना पीना, वो सारी चीजें जो वो लोग आते जाते हैं, ऑटो वगैरह, तो मतलब कुल मिला के अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो जीडीपी को बहुत तेजी से फायदा हो
1: इसीलिए सरकार ने हील इन इंडिया नाम से भी पूरा मिशन चलाया हुआ है कि
0: राइट।
1: भारत ग्लोबल हीलिंग हब बने, यानी लोग यहाँ आकर न सिर्फ
0: जी
1: अपना इलाज करवाएं बल्कि अपने शरीर को तरोताजा करके मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ करके
0: बिल्कुल
1: लौटें।
0: बिल्कुल
1: तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमने इस चर्चा में बात की भारत के बढ़ते मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की, तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले समय में जिस गति से हम सरकारी योजनाओं और सरकार के समर्थन से भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसमें और आगे आने वाले समय में एक बहुत सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। और अभी जैसा कि हमने कार्यक्रम में चर्चा भी की कि भारत 10वें पायदान पर आता है मेडिकल टूरिज्म में, जो आगे आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म के पायदान में और ऊपर आएगा और भारत इस दिशा में और अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, बहुत सारी जरूरी जानकारियां भी साझा की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी

0: मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा है कि चाहे वे इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीगे के नव निर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपये का अनुबंध किया। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has also approved a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for the 2026-27 sugar season, based on a basic recovery rate of 10.25%. Mr. Vaishnav said the decision will benefit around 5 crore sugarcane farmers, along with nearly 5 lakh workers employed in sugar mills and related ancillary activities. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride or GaN technology, along with a semiconductor packaging facility. The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnav said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanction strength of judges in the Supreme Court by 4 from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to 3 Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. Mr. Modi emphasized that ensuring safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability, and global energy security. Several countries, including Japan, Ireland, Austria, Saudi Arabia, and Jordan, today condemned the recent attack carried out by Iran on UAE. Meanwhile, addressing a press briefing at the Pentagon, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth today said that the U.S.-Iran ceasefire is not over as tensions rise in the Strait of Hormuz. Political activities have intensified for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala after the declaration of assembly poll results. Following BJP's sweeping victory in the West Bengal assembly elections, preparations are in full swing for the formation of the new government and the oath-taking ceremony in the state. The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the ceremony. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilag Vethri Karagam, TVK, has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. A day after the decisive victory of the National Democratic Alliance in Puducherry Assembly elections, hectic consultations on the formation of the new government have begun. In Kerala, Congress-led UDF is continuing its informal discussion to form the government. And India has retained its position at the top of the ICC Men's T20 rankings, showcasing their dominance in the cricketing world. India had created history by becoming the first team to successfully defend the T20 World Cup title and also win it for a record-extending 3rd time in March. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हमले की निंदा की इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच अमरीका ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद रोमानिया की सरकार गिरी और भारत का आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार अब समाचार विस्तार से पश्चिम एशिया में ईरान के संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद युद्ध विराम के बीच आज फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अमरीकी नौसेना हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अभियान को आगे बढ़ा रही है। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायु रक्षा प्रणालियां लगातार दूसरे दिन भी सक्रिय रहीं। हमले में किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ईरान के संयुक्त अरब अमीरात पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी कड़ी निंदा की है। खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मिस्र ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जॉर्डन और खाड़ी सहयोग परिषद और अरब लीग ने भी इसे संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी औपचारिक रूप से हमलों की निंदा की है। एक रिपोर्ट।
3: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका ईरान युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है। श्री हेक्सेथ ने वाशिंगटन में संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका खाड़ी में संघर्ष नहीं चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि वाणिज्यिक जहाजों या उनकी सेना पर ईरान के किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने कैरेबियाई सागर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक और संदिग्ध नौका को निशाना बनाया है, जिसमें 2 लोग मारे गए। अमरीकी प्रशासन ने पिछले वर्ष सितंबर में अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत लातिन अमरीकी जलमार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी वाले संदिग्ध जहाजों को निशाना बनाया गया। इसमें अब तक 188 लोग मारे जा चुके हैं। रूस के यूक्रेन के गैस उत्पादन संयंत्रों पर आज मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरगई कोरत्सिकी ने बताया कि रूस की सेना ने पोल्टावा और खार्कीव क्षेत्रों में स्थित गैस उत्पादन संयंत्रों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 3 कर्मचारी और 2 आपातकालीन सेवाकर्मी मारे गए, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की निंदा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के नेतृत्व वाली सरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गई, जिससे देश में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। पिछले महीने वित्त कटौती के कारण सोशल डेमोक्रेट्स गठबंधन से अलग हो गए थे। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 464 सीटों वाली संसद

0: में इस प्रस्ताव के पक्ष में 281 मत प्राप्त हुए। नेशनल लिबरल पार्टी के सदस्य बोलोजान ने जून 2025 में पदभार संभाला था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉ जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व की पुष्टि की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये यात्रा भारत और वियतनाम के बीच बहुआयामी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करेगी। श्री तो लाम कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में टी20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार ये खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच अमरीका ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद रोमानिया की सरकार गिरी और भारत का आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंखार में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। वक्त हो गया है 10:31:04। तो चलिए आज के हर श्रृंखार की शुरुआत करते हैं सड़क फिल्म के गीत के साथ, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज के साथ। एक बार फिर से आपको बता दूं, हर श्रृंखार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

हाय, प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। अगर कोई चांद से दिखने वाला महबूब आपकी जिंदगी में ना होता तो ये प्यार से रूबरू कौन करवाता। दोस्तों, चांद को चाहने वाले वैसे हजारों हैं, पर देखना ये है कि ये चांद किस पर फिदा है। अगला गीत जख्म फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में।

ऐसा ही कुछ होता है जब आप अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने देखते हैं और वो भी बहुत वक्त के बाद, तो आपको लगता है कि बस आज तो गली में चांद निकल ही आया। करवटे बदलते रहे यूं ही रात भर, करवटे बदलते रहे यूं ही रात भर, पलकों से लिख रहे थे तेरा नाम चांद पर। एक बार फिर से अलका याग्निक की आवाज होगी, साथ होगा अभिजीत का फिल्म धड़कन से गीत।

10:51 और 12 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

हरिहरन की आवाज लम्हे फिल्म से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, लम्हे पल मौसम जब गुजर जाते हैं तो हम सिर्फ फरियाद करते हैं। वैसे भी ये नीला आसमां और चांद, उसकी चांदनी, खामोशी किसी की मुस्कान की याद दिलाते हैं। नीले आसमान में चांद उतर आया है, फिजाओं में चांदनी का रंग छाया है। ना यूं खामोश रहो, अब तो मुस्कुरा दो, एक मुस्कान के लिए आपने हमारा दिल तरसाया है। उदित नारायण की आवाज में अगला गीत होगा अनाड़ी फिल्म से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर होगा गीत मेरे मनमीत, संग रहूंगी आपके मैं अर्पना। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए और 11 बजे एफएम गोल्ड पर आप जरूर सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है।

0: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह को, केन्द्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनैना म्यांमा के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रूपये मिलेंगे। भारत ने आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए टी20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. This project is worth 5,660 crore rupees and consists of three components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
2: Foreign shores tak cotton ka puri supply chain ko maintain karna.
1: The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on

0: गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। 11:11 हो चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं गीत मेरे मनमीत की राजेश रोशन के संगीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज है, साथ है अमित कुमार का, फिल्म का नाम है बातों बातों में। इसके बाद अगला गीत आप सुनेंगे आरडी बर्मन का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा, आशा जी की आवाज है, साथ है मोहम्मद रफी का, पद्मनी कोल्हापुरी का और ऋषि कपूर का। तो समझ गए ना, जी हाँ, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। 11:11:44 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।
1: सबके कदम देखो रंग।

वक्त मिला ले 11:22 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं। अगला गीत है आशा जी की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म का नाम है डॉन और इसके बाद होगा कारवा। फिल्म से गीत लता जी की आवाज है और एक बार फिर से आर डी बर्मन का संगीत है और आज गीत मेरे मन मीत में आपके संग है अर्पणा।

गीत मेरे मनमीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:32 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आर डी बर्मन का ही संगीत है और आर डी बर्मन की ही आवाज है। फिल्म शोले से गीत होगा और उसके बाद बप्पी लहरी के संगीत से सजा हुआ गीत होगा और फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर। आज आपके संग है अर्पना और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

11:45 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत।

11:56 हो चुके हैं। ये गीतों का जादू छाया रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा आर डी बर्मन का संगीत होगा, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में, फिल्म हम किसी से कम नहीं। और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनिएगा समाचार। गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित।

0: होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। यह अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. following the BJP's

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 10 सेकेंड। निशिगंधा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना चेहरे का जादू सच में कोई जादू नहीं होता, बस हमारी नज़र का धोखा होता है। मतलब सामने वाला वही होता है पर हम उसे ज़्यादा खास बना देते हैं अपनी सोच से या फिर अपने प्यार से। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वही चेहरा होता है जो जादू लगता है, बिल्कुल साधारण वही चेहरा जो हमें पहले जादू सा लगता था बिल्कुल साधारण सा लगने लगता है। होता है आपके साथ ऐसा? अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

ये गाना सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी थोड़ा स्लो मोशन में चलने लगी है। ना कोई भाग दौड़ है, ना कोई टेंशन लग रही है, बस बारिश है, आपका साथ है और साथ में है कुछ प्यारे प्यारे गाने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

एक के बाद दो आता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, और बहुत गिनने के बाद शायद अनंत आता होगा। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे बाद क्या आता है। सफर मंजू, वक्त हुआ है 12:34 और 25 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। मेरी

वैसे मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात का समा है, चांदनी रात है और ऐसे में दिल अक्सर थोड़ा सा शायर हो ही जाता है। और जब दिल शायर हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर होती हैं बहुत सारी बातें, पर बातें वही रहती हैं, लफ्ज बदल जाते हैं। अगला गीत अभी के लिए।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 12:50 और 30 सेकंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा।

ये तो सच बात है कि जब भी हम आपसे बातें करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो लाखों ख्वाब निगाहों में सिमट कर आ जाते हैं, और उन लाखों ख्वाबों में सारे जो ख्वाब होते हैं वो खुशियों वाले हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। उसमें से कुछ उदासी वाले भी होते हैं, मायूसी वाले भी होते हैं। तो थोड़ी सी बात रियलिटी की भी कर ली जाए। किसी भी इमोशन का असर हमारे दिलो दिमाग पर तब पड़ता है, तब तक ही पड़ता है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या हो अगर हम उसे एक्सेप्ट ही ना करें? शायद हम पर कोई असर ही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव थॉट एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हम कभी उदासी नहीं होंगे। मैं ऐसे थोड़ी कहती हूँ कि मुस्कुराओ, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं, और जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं तो फिर मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज़ के साथ।

रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद, संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने, निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद ये फिल्म गुरुदत्त साहब के लिए कामयाब फिल्म रही थी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज थी लता मंगेशकर की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1960 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण किया था एस ए बागर ने और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। इस फिल्म की कहानी एक सर्जन के इर्द गिर्द घूमती है और ये फिल्म जो है वो अभिनेत्री मीना कुमार के करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हम सुनवाते हैं अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 10 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

नीलकमल फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था रवि का और ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1968 में और इस फिल्म में वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार और ललिता पवार मुख्य भूमिका में थे। और अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत रफ़ी साहब और आयशा जी की आवाज़ में, फिल्म तुमसा नहीं देखा।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ।

जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

वक्त हुआ है 1:51 और 30 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक

इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें। पेड़ों के बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करें। शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात क्या करें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 42 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ।

इश्क में ऐसा ही होता है, दिल घर बन जाता है और आंखें संसार। इश्क में कभी कभी पागलपन भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये पागलपन इस गाने तक पहुंच जाए तो फिर सोने पर सुहागा। फिलहाल तो कार्यक्रम और इस पागलपन को, दोनों को आगे बढ़ाने का टाइम है, और सुनते हैं अगला गीत मुकेश, और मुकेश की आवाज़ में।

पर मुझे लगता है पूछना चाहिए, क्योंकि पूछने और बताने से दर्द कम हो जाता है। जब बात दीवानगी की चली है तो ये गाना सुनना तो बनता है।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

0: की चाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया।
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे।
0: इसके दांत तो देखो।

0: चेहरा किसी का खिलता है, हमको है मालूम किसी से किसी से किसी से छुप कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं

फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। अल्फाज परखता रहता है आवाज हमारी तोल कभी। अनमोल नहीं लेकिन फिर भी, पूछ तो मुफ्त का मोल कभी। खिड़की में कटी हैं सब रातें, कुछ चौरस थी कुछ गोल कभी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:34 और 45 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: आज की रात कभी

कोई भी इंसान हमें अच्छा या बुरा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें ज़रूरत है तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा, और हमें ज़रूरत ना हो तो वही हमारे लिए बुरा हो जाता है। क्योंकि सूरज हमेशा वही रहता है जो सर्दियों में तो हमें बहुत अच्छा और गर्मियों में हमें उतना अच्छा नहीं लगता। 3:44 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। किसी की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:56 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम TVK के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने C. Joseph Vijay को अपना नेता चुना है। विदेश मंत्री S. Jayshankar ने कहा है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और नई तकनीकों के कारण हालात जटिल हो गए हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,000,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंगनबा मेईती, पारशांत, मोहम्मद यासिर और निवेश पाल ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। रणवीर को वॉक ओवर से जीत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

आशा भोसले जी की आवाज में जिंदगी इत्तेफाक है। ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में की तेरे साज का। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए, किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना

कीजिए, कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। गम है दुनिया में कितने हैं गमगीन, यहाँ पर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लीजिए। 4:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में दूरियां नज़दीकियां बन गईं। 4:30 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं कुछ और प्यारे प्यारे से गीत।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:36 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में अभी अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना जिसके बोल हैं, कोरा कागज़ था ये मन मेरा।

मुकेश जी की आवाज में चल अकेला। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो। बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो। परेशानियां तो होती ही हैं सभी के पास दो चार, परेशानियां तो होती हैं सभी के पास ही दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों दिखते हो। 4:49 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में दिल ने दिल को पुकारा। 4:54 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

जन्म जन्म का साथ है। जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए, जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए, निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। 5:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में ये दुनिया वाले पूछेंगे। किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए। किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए। उसके सफलता के शिखर पर पहुंचने का इंतजार ना करें, क्योंकि आप उगते हुए सूरज से तो नजरें मिला सकते हैं, पर दोपहर के तेज सूरज से नहीं। 5:22 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

निकलोगे बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, निकलोगे बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, घर पर बैठे सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाओगे। दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, लगातार चलते रहो एक न एक दिन मंजिल पर पहुँच ही जाओगे। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।